FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह के 21 तारीख, तदनुसार 12 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:58 और 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज की सभा आरंभ होती है। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर

0: बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारत।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही आनंद से भरी होगी। इसीलिए कभी भी कठिन परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। ये था आज का चिंतन। वंदनवार में आइए सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए पेश अजरों का हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रोग्राम श्री रामचरितमानस सुबह 6:35 पर। संगीत सरिता का समय रहेगा सुबह 6:45। सुबह 7 बजे सुनिए प्रोग्राम भूले बिसरे गीत हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 7:30।

8 बजे होगा समाचार प्रभात, 8:15 पर सुनवाएंगे प्रोग्राम त्रिवेणी। चित्रलोक प्रोग्राम प्रस्तुत किया जाएगा 8:30 पर। प्रोग्राम आज का अखबार पेश करेंगे सुबह 9:30 पर। 10 बजे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे। उसके बाद लाइव फोन इन प्रोग्राम सुनिएगा हेलो चंडीगढ़ 10:05 पर। आज इंटरनेशनल यूथ डे के अवसर पर हमारा टॉपिक रहेगा स्वस्थ युवा सशक्त समाज।

11 बजे स्पॉन्सर प्रोग्राम हमारी बेड़ियां प्रस्तुत करेंगी। 11:15 पर सुनिए प्रोग्राम सुरबहार। प्रोग्राम संजीवनी का प्रसारण समय रहेगा 11:30। प्रोग्राम में आज का विषय रहेगा बरसात के मौसम में बीमारियों से बचाव। 12 बजे हिंदी में समाचारों के बाद 12:05 पर सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 1:05 और 6:10 पर, और पंजाबी में समाचार हम आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से रिले करेंगे 1:10 और 6:20 पर।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे दोपहर 1:15 और शाम 5:05 पर। 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। सदाबहार नगमे प्रोग्राम सुनिए 2:30 पर। 3:00 कार्यक्रम होगा सखी सहेली। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत सुनिए प्रोग्राम आज के मेहमान। स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे का समय रहेगा 5:20। स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग का समय रहेगा 5:30। शाम 6:30 पर आनंद लीजिए पंजाबी गीतों का।

शाम 7 बजे प्रोग्राम जयमाला प्रसारित किया जाएगा। शाम 7:45 पर प्रादेशिक मुख्य समाचारों के बाद सुनिए प्रोग्राम रेडियो डायरी। हवा महल प्रोग्राम का प्रसारण समय रात 8 बजे 8:15 पर, स्पॉन्सर प्रोग्राम फार्म टू सिटी।

आज के फनकार प्रोग्राम सुनिए 9:30 पर 10 बजे प्रोग्राम होगा छाया गीत। रात 10:30 पर प्रादेशिक मुख्य समाचारों के बाद आनंद लीजिए पंजाबी गीतों के प्रोग्राम सुर सांझ का।

और श्रोताओ, रात 11 बजे सुनिए हिंदी में समाचार, जो कि हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये था झरोखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस।

आज से आरंभ होता है श्री रामचरितमानस के पांचवें सोपान सुंदर कांड का संगीतबद्ध पाठ। मंगलाचरण के श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्भरा अर्थात पूर्ण भक्ति की याचना करते हुए जगदीश्वर के राम रूप की वंदना की है। माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले रघुकुलमणि शांत चित्त शाश्वत शांति देने वाले सर्वव्यापी और सभी प्रकार के प्रमाणों से परे हैं। इस वंदना के पश्चात भक्त कवि ने अतुलित बल वाले पवनसुत हनुमान को प्रणाम निवेदित किया है, जिन्हें सुमेरु पर्वत के समान कांति प्राप्त है, किंतु जो दैत्यों का विनाश करने के लिए अग्नि रूप धारण कर लेते हैं। सागर तट पर रीछराज जांबवान के प्रेरणा भरे वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान को अपनी क्षमता और सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त हुआ।

0: अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस का भाग 278।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में हम सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, और कल की कड़ी में हमने शुभाजीत से सुनी थी कजरी। और जैसा मैंने कहा था कि एक और कजरी सुनने का मन है तो शुभाजी आज फिर से कजरी हो जाए।
1: जी ज़रूर, और कुछ ऐसी कजरी सुनाना चाहूँगी आपको और उनके बारे में बात भी करना चाहूँगी जो हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि से जुड़ी हुई बातें हैं। काशी के एक विख्यात साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी,
0: इनको और इनके नाम को कौन नहीं जानता
1: है? तो उनकी बहुत सारी कजरी जो हैं वो उन्होंने प्रकाशित भी की, और हमने उनकी रिकॉर्डिंग्स भी सुनी हैं। जैसे एक बहुत उनकी जानी मानी कजरी, उनकी लिखी हुई, कहनवा मानो हो दिल जानी, ये इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनी है। और विख्यात गायिका से श्रीमती गिरजा देवी जी, उनसे भी हमें सुनने को मिलती हैं ये चीज़ें। तो भारतेंदु जी ने तो बहुत कुछ लिखा, और हर ऋतु के लिए लिखा, हर उत्सव के लिए लिखा, दीपावली के लिए भी लिखा सब, लेकिन जो कजरी का उनका संग्रह है वो कुछ विशेष है। और वो उनके मित्र और अन्य जो साहित्यकार थे उनके साथ वो एक मैगजीन भी निकालते थे जिसमें कि प्रेम घन इत्यादि जो लोग थे उनकी भी कजरियाँ प्रकाशित होती थी, और उनकी भारतेंदु बाबू की स्वयं जो कजरियाँ थी वो भी प्रकाशित होती हैं।
0: शुभा जी, जैसा आपने कल बताया कि कजरी के दंगल होते थे
1: जी,
0: तो उसके लिए भी तो ये चीज़ चाहिए, किसे गाया जाए?
1: जी बिल्कुल।
0: तो तब ये जो प्रचलन था
1: जी
0: कि कजरी के अखाड़े, कजरी का दंगल, एक दल सुनाएगा फिर दूसरा दल सुनाएगा, तो इसमें कुछ और शब्दगत खासियत भी होगी, विशेषता होगी, जो आप आज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही कजरी सुनाने जा रही हैं?
1: जी, आज उन्हीं की कजरी सुनाऊंगी।
0: तो
1: और वैसे तो उनकी एक बहुत ही मतलब प्रख्यात कजरी है जो कि झूले के बारे में है, कि राधे झूलन पधारो झुकी आई बदरा, वो बहुत प्रचलित है। लेकिन मुझे लगा कि एक कुछ दूसरी कजरी सुनाई जाए आपको भारतेंदु बाबू की। तो बिन सांवरे पियरवा जी की जरन न जाए। वैसे तो भारतेंदु बाबू की जो ये पंक्तियां मिलती हैं वो केवल चार पंक्तियां हैं उनकी इस कजरी में, प्यारी झूलन पधारो झुकी आए बदरा।
0: वो कैसे हैं?
1: एक सेकंड आपको पूरी रचना सुनाती हूँ, फिर उसके बाद क्या हुआ है वो भी देखते हैं। तो ओढ़ो सुरख चुनरी तापे श्याम चदरा, ये लिखते हैं वो, देखो बिजुरी चमके बरसे अदरा, हरिचंद तुम बिन पिय अति कदरा। ये जो चार पंक्तियां हैं ये उनकी उनके संग्रह में मिलती हैं। लेकिन अब जैसे वृंदावन यदि आप जाएं, या ब्रज का जो ब्रज में अगर आप जाएं, तो ब्रज भाषा की में भी ये बहुत प्रचलित है, उस एरिया में भी बहुत प्रचलित है ये, और वहां

पाठ भेद और पाठांतर काफी मिलता है। तो मंदिरों में जो कजरी गाई जाती है वो कुछ इस प्रकार की है, जिसमें कि पहली जो पंक्ति है वो तो भारतेंदु बाबू वाली ही है, लेकिन उसके बाद काफी कुछ अलग हो गया है वो इस प्रकार।

0: बदरा, ऐसे करके और भी अंतरे जोड़ दिए गए हैं, तो ये पाठ भी हिदा गया है
1: जी। लेकिन आज जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कजरी आप सुना रही हैं वो ये नहीं है कुछ?
0: नहीं, ये तो बहुत सुनने में आती है, मुझे लगा कि एक दूसरी कजरी आपको सुनाऊं। बिन सांवरे पियरवा जी की जरन न जाए, जिया नहीं बहलत प्राण पिया बिन, कीने लाख उपाय, बिन सांवरे पियरवा जी की जरन न जाए।

0: ये थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना। हमने शुभा जी से कजरी सुनी। शुभा जी, कजरी को लेके मेरे मन में कुछ एक सवाल हैं, लेकिन आज हम यहीं रुकते हैं। श्रोता मित्रों से आज्ञा चाहते हैं और आपसे भी मैं आज्ञा चाहूंगी। नमस्कार।
1: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

0: यह है विविध भारती। प्रोग्राम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

हेमंत कुमार, सुधा मल्होत्रा और मन्ना डे की आवाजों में गीत अभी आपने सुना, नरसी भगत फिल्म का नाम था। जी एस नेपाली ने इसे लिखा, रवि का संगीत।

मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में गीत अभी आपने सुना। नया दौर फिल्म का नाम था। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। ओपी नैयर का संगीत।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे। भरत व्यास ने इसे लिखा, एस एन त्रिपाठी का संगीत।

0: आ रही हैं महबूबा महबूबा महबूबा विविध भारती पर। सुन जरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे।
1: वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का।

0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।
1: Malish, tell Malish, jump in. Malish, tell Malish, jump in.

चंडी पूजा इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत। प्रदीप ने इसे लिखा, अजीत मर्चेंट का संगीत।

0: हम पंछी एक डाल के इस फिल्म से अभी आप आशा भोसले और सखियों की आवाज़ों में गीत सुन रहे थे। पीएल संतोषी ने इसे लिखा, एन दत्ता का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम भूले बिसरे गीत यहीं संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
2: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत जीवन मृत्यु फिल्म से अभी आपने सुना। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज़।

छोटी सी बात, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, योगेश ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।

फिल्म धरती से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़ों में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था। और इससे पहले जो आपने गीत सुना छोटी सी बात, उसके गायक कलाकार थे येसुदास और आशा भोसले। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: एड्स HIV ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स

0: और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: काहे को होवत है रे लैला।

0: मस्ताना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहासे हुजूर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम है राही प्यार के।

मुझे कुछ हो गया, ये गया वो गया, हर डस गई डस गई। नागन सी जुल्फें तेरी, बस जान निकल गई।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को इस वक्त आप सुन रहे थे हिम्मत फिल्म से। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

रातों का राजा, इस फिल्म से अभी ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, आरडी बर्मन की तर्ज। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम हम है राही प्यार के यहीं संपन्न होता है।

यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
1: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
2: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी

0: गौतम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बेछोरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांति मोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोक झोंक। और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोक सत्य की पहली सुर्खी है, पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है, संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है, मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है, एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है, टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा, हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है, कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार

0: प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान और आज त्रिवेणी में बातें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत साल 2000 में हुई थी, यानी 26 बरस हो गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के। वैसे आपको बता दें कि पूरी दुनिया में 15 से 24 साल की उम्र के लोगों का जो प्रतिशत है वो 16% है, और अगर भारत का देखें तो 15 से 25 साल की उम्र के लोग भारत की कुल आबादी का तकरीबन 54% हिस्सा हैं, यानी कि भारत एक युवा देश है और दुनिया में भी युवाओं की अच्छी खासी तादाद है। ये युवा ही हैं जो दुनिया को बदलते हैं, तरक्की के रास्ते पर ले जाते हैं, नई खोजें करते हैं, नए रास्ते निकालते हैं, नई व्यवस्था बनाते हैं, और ये युवा ही हैं जो दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। पर युवाओं को एक दिशा देने की और जिम्मेदारी का बोध कराने की जरूरत है।

इत्तेफाक की बात है कि 12 तारीख को ही भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, पर अगस्त के महीने में नहीं बल्कि जनवरी के महीने में, क्योंकि वो दिन जो है वो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। यानी राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 अगस्त को। जैसा कि मैंने कहा कि ये युवा ही हैं जो बेहतर दुनिया बना सकते हैं, लेकिन किसी भी पीढ़ी के बुजुर्गों से पूछें तो वो यही कहेंगे कि हमारे ज़माने के युवा जिम्मेदार हुआ करते थे, आज के युवा तो दिशाहीन हैं। सवाल ये है कि बदलती हुई इस दुनिया में कितने तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं जो ध्यान भंग कर रहे हैं, पर इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर आप तमाम क्षेत्रों में उपलब्धियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि युवा आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं। खेलों में हर रोज बनते हुए रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटीज में लगातार ऊंचे अंक प्राप्त करने वाले युवा, इसके अलावा विज्ञान, दर्शन।

जो ध्यान भंग कर रहे हैं। पर इन तमाम चीजों के बावजूद अगर आप तमाम क्षेत्रों में उपलब्धियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि युवा आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं। खेलों में हर रोज बनते हुए रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटीज में लगातार ऊंचे अंक प्राप्त करने वाले युवा, इसके अलावा विज्ञान, दर्शन, इतिहास, हर क्षेत्र में युवा नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, नए कीर्तिमान बना रहे हैं, नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि हम इन युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हों, हम उन पर इल्जाम ना लगाएं, हम उनकी गलतियां ना निकालें, बल्कि हम उन युवाओं को एक नई चेतना की तरफ आगे बढ़ाएं।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम एक बात और कहना चाहेंगे, और वो बात ये है कि हम सब के भीतर थोड़ा न थोड़ा युवा मौजूद होता है। हम सब के भीतर एक जोश है, जुनून है कुछ कर गुजरने का, और इस युवा तरंग में ही दुनिया उपलब्धियां हासिल करती है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम है वो है विभिन्न परिस्थितियों को पहचानना और युवाओं के जरिए वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना। ये युवा ही हैं जो दुनिया को एक सूत्र में बांध सकते हैं, ये युवा ही हैं जो हर तरह के भेद की दीवार तोड़ सकते हैं, ये युवा ही हैं जो विश्व व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं।

ये थी आज की त्रिवेणी और इसमें हमने बातें की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। अब यूनुस खान को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास
1: HP TDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
0: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
1: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
0: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
1: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
0: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
3: आपको मालूम है ना, आज बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रोग्राम FM लाइफलाइन की रिकॉर्डिंग होगी। बिल्कुल सही। और इस प्रोग्राम में इस बार हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर दीपक बंसल, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी PGI चंडीगढ़। विषय रहेगा बच्चों में अनीमिया और थैलेसीमिया से जुड़ी

समस्याएं, इससे जुड़े आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो उठाइए ना अपना फोन, डायल कीजिए हमारे नंबर्स। बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।

0: मेट्रो इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे सोहम की आवाज में। सईद कादरी, संदीप श्रीवास्तव और अमिताभ वर्मा ने इसे लिखा। प्रीतम का संगीत।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर

स्टूडेंट ऑफ द ईयर इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे शेखर रावजियानी, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन की आवाजों में। अन्विता दत्त ने इसे लिखा, विशाल शेखर का संगीत।

SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.

0: टाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।

0: करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

बैनी दयाल की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, टू स्टेट्स फिल्म का नाम था। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत। आपको बता दें कि आज है इंटरनेशनल यूथ डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। हर साल 12 अगस्त को इसे मनाया जाता है। इसका मुख्य मकसद युवाओं से जुड़ी समस्याओं, अधिकारों और उनकी शक्ति पर ध्यान देना है। आज इस दिन दुनिया भर में युवाओं के विकास पर चर्चा होती है।

0: दिल धड़कने दो, ये था फिल्म का नाम। याशिता शर्मा, शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा हुजूर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

Name samcha, name jana. जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये था फिल्म का नाम। फरहान अख्तर और साथियों की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में गीत दिल चाहता है फिल्म से हमने आपको सुनवाया। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत। वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की आवाजों में गीत वजीर फिल्म से अभी आपने सुना। रोचक कोहली का संगीत था, गुरप्रीत सैनी और दीपक रमोला ने इसे लिखा।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले।

हाफ गर्लफ्रेंड, ये था फिल्म का नाम। ऐश किंग और साशा तिरुपति की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे।

शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में गीत आप पी के फिल्म से सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा, शांतनु मोइत्रे का संगीत। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: अब पेश है प्रोग्राम आज का अखबार।
2: आज का अखबार।
0: हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अखबार प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ मैं रूही। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी सुबह की अच्छी सी शुरुआत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज युवाओं का दिन है, यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे। हर साल 12 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। ये युवा ही हैं जो समाज को तरक्की के रास्ते ले जाते हैं और बेहतर समाज की

रखते हैं। तो आज के दिन को मनाने का जो मुख्य मकसद है वो है युवाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं जैसे शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी, उन पर ध्यान केंद्रित करना, युवाओं की आवाज और उनके अधिकारों को वैश्विक स्तर पर मंच देना, बेरोजगारी, मानसिक सेहत और असमानता जैसी जो समस्याएं हैं उनके समाधान ढूंढना। और सबसे पहले आपको बता दें कि युवा दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया था साल 2000 में। तो सभी युवाओं को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

श्रोताओं प्रोग्राम में लीजिए अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस। पहले नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज हेडलाइंस। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

और चांद पर इंसानों का स्थायी ठिकाना बनाने की तैयारी में भारत भी भागीदार बन सकता है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के भारत को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास प्रस्तावित मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया है। ये थी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज हेडलाइंस।

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
0: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ, बिकॉज दिस इज योर मोमेंट।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1-3 minute का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स ओटीटी ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31st अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
1: दोस्तों, प्रोग्राम आज का अखबार इस वक्त आप आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुन रहे हैं। अब पेश है रीजनल और लोकल न्यूज हेडलाइंस। पहले रीजनल न्यूज हेडलाइंस। पंजाब में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में भी 8 जिलों में बरसात के आसार बने हुए हैं। हिमाचल में बारिश के कारण 2 national highways समेत 204 सड़कें बंद पड़ी हैं।

पंजाब में धार्मिक स्थलों, पर्यटन केंद्रों, बड़ी भीड़ वाले स्थानों पर अब सिर्फ सफाई कर्मचारी लगाकर कूड़ा उठवा देना काफी नहीं होगा। जारी की गई नई एसओपी के तहत कूड़ा पैदा होने से लेकर उसके निपटारे तक पूरी व्यवस्था तय होगी।

और हिमाचल में मंगलवार मध्यरात्रि से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगा हो गया है। पेट्रोल डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर सेस लगाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये थी रीजनल न्यूज हेडलाइंस, अब लोकल न्यूज हेडलाइंस। चंडीगढ़ में पीयू के 25 कर्मचारी स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित होंगे। चंडीगढ़ में सेक्टर 17 से 2.5 किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब स्कूल बैग हल्का होगा और नई व्यवस्था लागू होगी। सीसीपीसीआर ने स्कूल बैग पॉलिसी 2020 पर जागरूकता कार्यक्रम में सुझाव मांगे हैं और प्रशासन को इसकी जल्द ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

चंडीगढ़ में बादल छाए रहे और हल्की बारिश से मौसम सुहावना हुआ है। मौसम विभाग ने 14, 15 और 17 अगस्त का येलो अलर्ट जारी किया है। और चंडीगढ़ में 12-12 घंटे पैदल यात्रा कर पहुंचे कांवड़ियों ने भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक किया। सावन शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भगवान शिव की पूजा के साथ साथ हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। ये थी लोकल न्यूज हेडलाइंस।

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
0: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, प्रोग्राम में अब सुनिए स्पोर्ट्स हेडलाइंस। पहली बार 23 अगस्त से शुरू हो रहे टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी खेलने की तैयारी में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी जुटे हुए हैं। वो जिम्बाब्वे दौरे के बाद राजस्थान रॉयल्स की एकेडमी में रेड बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने 5 वनडे की सीरीज के तीसरे मैच में आयरलैंड को 3 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। इस जीत के साथ अफगान टीम ने अगले साल अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर मोसेस हेंड्रिक्स टी20 वर्ल्ड कप 2028 के क्वालिफायर में पुर्तगाल क्रिकेट टीम की कप्तानी करेंगे। 39 वर्षीय हेंड्रिक्स ने पिछले महीने ही घरेलू क्रिकेट से संन्यास लिया था। यूएई की इंटरनेशनल लीग टी20 ILT20 का 5वां सीजन 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर गल्फ ज्वाइंट्स टीम से अपना ILT20 डेब्यू करेंगे। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते।

0: इसी के साथ प्रोग्राम आज का अखबार अब समाप्त होता है।
1: आज का अखबार।
0: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 10 बजने को हैं, अब से कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन और संघर्षों का उल्लेख किया। श्री मोदी इस समय सभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: साथियों, बचपन के इन संघर्षों के बीच कोविंद जी ने शिक्षा को अपने सामर्थ्य को बढ़ाने का मार्ग बनाया। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने संसाधनों की कमी को कमजोर नहीं बनने दिया है।

0: और एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे जिसकी कल्पना भी तब लोगों ने नहीं की होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के अंतर्गत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। जम्मू कश्मीर में भी आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। मुंबई के विले पार्ले में कल रात आग लगने की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार विले पार्ले पश्चिम में एक भूतल और 12 मंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर आग लग गई थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। इस पद के लिए 5,200 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से अंतिम चरण की जांच के बाद 18 उम्मीदवारों को चुना गया है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। रांची में जिला प्रशासन के देर रात विरोध स्थल पर पहुंचने के बाद तनाव बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक मसौदा विधेयक तैयार किया जा चुका है। श्री अधिकारी ने आरोप लगाया कि धार्मिक संस्थानों की स्थापना के नाम पर विदेशों से धन प्राप्त हो रहा है और इस धन का उपयोग धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। सीनियर महिला स्पर्धा में भारतीय महिला फेंसरों ने फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास।
2: HP TDC के प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
1: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
2: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
1: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
2: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
1: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।
2: अब पेश है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी। आपके

0: सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ
1: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
0: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
1: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
2: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
3: हेलो
4: हेलो,
3: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
4: हेलो चंडीगढ़।

0: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज का ये प्रोग्राम आप सुनेंगे रूही के साथ। और श्रोताओं, आज इंटरनेशनल यूथ डे है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इस दिन को इसलिए मनाया जाता है ताकि समाज के विकास में युवाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ावा दिया जाए, और साथ में युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। और बात की जाए तो युवाओं में ही समाज और राष्ट्र को बदलने की पूरी ताकत होती है, पूरी क्षमता होती है। आज भारत के युवा साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर सोशल वर्क, हर फील्ड में देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि वो तन और मन से स्वस्थ हैं। जी हाँ, अगर युवा तन और मन से स्वस्थ होता है तभी तो वो समाज को नई ऊर्जा, नई पॉजिटिविटी और नई दिशा देता है। स्वस्थ युवा ही मजबूत, सुरक्षित और जागरूक समाज की नींव रखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमारे प्रोग्राम का जो आज का टॉपिक है वो है स्वस्थ युवा, सशक्त समाज। कैसे एक स्वस्थ युवा जो है एक मजबूत, एक सशक्त समाज की नींव रख सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। अगर आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, अपने विचार साझा करना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172 0172। तो चलिए पहले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। हेलो चंडीगढ़।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन सा बात कर रहे हैं?
1: धीरज रबारी बात कर रहा हूँ, आपका नेम छोटा
0: जी। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के टॉपिक पर?
1: युवा स्वस्थ और समाज सशक्त, ऐसा ही विषय है
0: जी। हमारा आज का टॉपिक है स्वस्थ युवा, सशक्त समाज।
1: बिल्कुल, आज हमें इस दौर से हम प्रसार हो रहे हैं जो जहाँ हमारे युवा धन है उनको स्वच्छ रहने की जरूरत, उनका स्वास्थ्य स्वच्छ है तो भारत स्वच्छ है
0: जी।
1: भारत स्वच्छ है, सभी से सुरक्षित है। देखा जाए तो जो भी हमारे जीवन में जो छोटे बच्चे से लेकर युवा धन जो भी यानी शरीर में जो खाना जो लेते हैं बाहर का वो इसमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसे गुटखा है, ऐसे कई व्यसन है उसको छोड़ना चाहिए। जब बोल के पहला सुख तो जाते न रहे, यानी हमारा पहला फिर बाद में हम सबको स्वस्थ रखेंगे, यानी स्वास्थ्य हमारा पहला प्राथमिकता रहेगी। तो इस बारे में हमारे युवा धन सशक्त है, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहेगा तभी हम सब अच्छे रहेंगे और समाज भी सुरक्षित यानी सशक्त रहेगा।
0: जी जी, आपका प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: धन्यवाद
0: जी।

0: नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो चंडीगढ़।
1: नमस्कार मैडम, मैं सतपाल सिंह बिंद्रा चंडीगढ़ से ही बोल रहा हूँ।
0: जी सतपाल जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया। मैडम बबीता कपूर जी बोल रही हैं?
0: नहीं जी, मैं रूही ग्रोवर बात कर रही हूँ।
1: रूही ग्रोवर बात, मैंने आजकल आज सुनने को मिल रही है मैं चंडीगढ़ में।
0: सर मैं वैसे काफी पुरानी हूँ।
1: अच्छा
0: हाँ जी, तो आप आज के हाँ जी
1: मॉर्निंग प्रोग्राम में आपकी आवाज काफी दिनों बाद सुनी है।
0: जी बिल्कुल, तो आज आप हमारे प्रोग्राम के टॉपिक के बारे में क्या बताना चाहते हैं? स्वस्थ युवा सशक्त समाज।
1: स्वस्थ युवा स्वस्थ समाज, पहले तो मैं युवाओं को इस दिन की बधाई देना चाहूंगा
0: जी,
1: विश्व युवा दिवस की। और युवाओं से मेरा आग्रह रहेगा कि हम जैसे अपने समय में NCC NSS वगैरह ज्वाइन किया करते थे कॉलेज में स्कूलों में, उससे एक डिसिप्लिन और एक स्वस्थ रहने की भावना जगती थी अपने आप
0: जी।
1: तो युवा आजकल कई मैंने देखा जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो ये देख के खुशी होती है युवा अपना स्वस्थ रहेगा तो ये देश की ये काम आएगा, देश को आगे बढ़ाएगा
0: जी।
1: तो युवाओं में अगर कुछ लोग भटक गए हैं, नशे की ओर चले गए हैं, तो हमारा कर्तव्य होता है ऐसे युवाओं को अपने साथ जोड़ें, उनको समझाएं, उनसे प्यार से डील करें
0: जी,
1: कि वो गलत आदतों को छोड़ दें
0: जी बिल्कुल,
1: और स्वस्थ समाज के निर्माण करने में अपना सहयोग दें
0: जी। क्या आप जब
1: तो, जी जी मैडम
0: जी, आप अपने बच्चों से या फिर जब आप युवा थे, युवा एज में थे, तब क्या आप भी ऐसा सोचते थे कि मैं समाज के लिए ये करूंगा, ऐसा कुछ करूंगा कि मेरा नाम रोशन होगा और समाज की भलाई भी होगी?
1: मैडम ऐसा भावना तो ऐसी रहती है, फौज में जाने के लिए भी NCC में मैं सर्जेंट रहा
0: जी,
1: और NCC का सी सर्टिफिकेट भी मैंने पास किया
0: जी,
1: तो एक भावना तो दिल में जगी थी, लेकिन उस टाइम आप कह लो प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर जानकारी की कमी होने की वजह से
0: जी
1: इस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पाए। आजकल तो इंटरनेट की वजह से, गूगल की वजह से आपको सारी जानकारियां उपलब्ध हैं,
0: सारी इंफॉर्मेशन,
1: कहाँ क्या एग्जाम चल रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है दुनिया में।

0: तो आगे बढ़ सकते हैं हम।
1: जी बिल्कुल, आपने फौज की बात की, मैं भी जब छोटी हुआ करती थी 7-8 साल
0: जी
1: की, तब मैं कहा करती थी कि मुझे भी फौज में जाना, लेकिन कहीं ना कहीं हाइट से मात खा गई। खैर
0: हाइट की प्रॉब्लम रहती है
1: जी
0: मैडम, मतलब कई कई इलाकों में छूट है
1: जी
0: और कई इलाकों में प्रॉपर हाइट मांगी जाती है।
1: जी बिल्कुल सतपाल जी, प्रोग्राम
0: जी
1: में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू मैम,
1: जी
0: थैंक यू।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: आपको मालूम है ना, आज बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रोग्राम FM लाइफलाइन की रिकॉर्डिंग होगी. बिल्कुल सही. और इस प्रोग्राम में इस बार हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर दीपक बंसल, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी PGI चंडीगढ़. विषय रहेगा बच्चों में अनीमिया और थैलेसीमिया से जुड़ी समस्याएं. इससे जुड़े आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे. तो उठाइए ना अपना फोन, डायल कीजिए हमारे नंबर्स. बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा.
2: प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में हमारे अगले कॉलर जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं. हेलो चंडीगढ़.
3: रूही जी को मेरी प्यार भरी नमस्ते जी.
2: नमस्ते जी. कौन जना बात कर रहे हैं?
3: मैं स्ट्रीट स्मार्ट सेक्टर 42 चंडीगढ़ से बोल रहा जी.
2: जी आप हमारे आज के टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर?
3: जी मेरा कहना ये है, हमें युवा को घर से ही अच्छी शुरुआत देनी चाहिए.
2: जी
3: युवाओं में शौक डालना

0: चाहिए कोई ना कोई एक्टिविटी का, कुछ अच्छा ज्वाइन कराना चाहिए।
1: हाँ जी।
0: खेल हो गया या जिस चीज में भी इंटरेस्ट है युवा का, पढ़ाई लिखाई में है, उसको पढ़ाई लिखाई अच्छी कराएं जी।
1: जी,
0: अगर हम उसको अच्छी ज्वाइनिंग कराएंगे तो उसका ध्यान अच्छी ज्वाइनिंग में रहेगा जी।
1: जी,
0: अपना नशा वगैरह से दूर रखें जी।
1: जी,
0: युवा बढ़क जाते हैं जी, वो दिखावे के लिए नशे करते हैं, मैं इतना महंगा नशा कर रहा। अगर हम घर में ही नशा नहीं करेंगे, घर के माँ बाप अच्छे होंगे तो युवा बढ़केंगे नहीं जी।
1: जी,
0: माँ बाप पहली पहल होते हैं जी,
1: जी,
0: युवाओं को अच्छा ले जाने में।
1: जी, दूसरी बात यह है कि आज के जो युवा पीढ़ी है ना सर, इतनी ज्यादा टैलेंटेड है, हर एक के अंदर टैलेंट भर भर के पड़ा, और आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर भी। तो आजकल के जो युवा है, जो टैलेंट है उसको ही किस तरह से अपने दिमाग से इस्तेमाल करके उसको अपना प्रोफेशन बना रहे हैं आज के टाइम पे।
0: इतना टैलेंट है युवाओं में आजकल
1: जी,
0: वो देश की तरक्की करा सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं
1: जी,
0: हार्डवेयर। आजकल तो युवा बहुत अच्छे इंटेलिजेंट है
1: जी। और

0: आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर भी। तो आजकल के जो युवा है, जो टैलेंट है, उसको ही किस तरह से अपने दिमाग से इस्तेमाल करके उसको अपना प्रोफेशन बना रहे हैं आज के टाइम पे।
1: इतना टैलेंट है युवाओं में आजकल
0: जी,
1: वो देश की तरक्की करा सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं
0: जी,
1: हार्डवेयर। आजकल तो युवा बहुत अच्छे इंटेलिजेंट है
0: जी, और जिस
1: इनका कोई जवाब नहीं।
0: बिल्कुल,
1: बस देश है कि इतनी तरक्की कर गया है विज्ञान कि आजकल बहुत आसानी हो गई है जी,
0: जी
1: पढ़ाई लिखाई में भी सोशल मीडिया से ले सकते हैं जी।
0: जी,
1: बाकी खेलों में रुचि जरूर दिखाएं जी।
0: जी,
1: क्रिकेटर युवराज हमसे जी क्रिकेट सीखता था जी।
0: हाँ, युवराज सिंह
1: हाँ, हमारे घर के पास ही रहता था, हमसे मेरे से 15-16 साल छोटा है जी।
0: जी,
1: युवराज हमसे क्रिकेट सीखता थे जी, बहुत अच्छी जॉब में गया जी।
0: जो सिंगर,
1: अगर बच्चे को हम कोई अच्छा शौक डालेंगे तो बच्चा आगे जाएगा जी, चाहे इंजीनियरिंग है।
0: सिंगर युवराज, आप सिंगर युवराज की बात कर रहे हैं, क्रिकेटर युवराज की बात कर रहे हैं?
1: हाँ जी जी, क्रिकेटर युवराज
0: जी जी, वो युवराज सिंह,
1: युवराज सिंह जी, योगराज उनके डैडी हैं
0: जी जी जी।
1: अपने हमारे घर के पास ही रहते थे जी, थोड़ी दूर इकट्ठे खेलते थे जी।
0: जी,
1: वो हमसे क्रिकेट सीखता था जी।
0: ओके,
1: युवाओं में आप अच्छा डालेंगे तो अच्छा ही निकलेगा
0: जी।
1: बाकी हॉस्टलों का वातावरण भी, जो सुपरिंटेंडेंट है, वार्डन है, अपने युवाओं पे, नौजवानों पे नजर रखनी चाहिए जी।
0: तो आपने भी क्या अपने टाइम में क्रिकेट खेला था?
1: मैंने बहुत खेला जी क्रिकेट।
0: अच्छा जी,
1: स्टेट नेशनल अपना रांची पे पहुंचते पहुंचते रह गया जी।
0: अच्छा जी,
1: अपना मैं चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ का ही क्रिकेट खेलता रहा, मतलब ऊपर अच्छा। नहीं जा सका इतना।
0: अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आपने किया
1: है जी?
0: डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आप खेले?
1: मैं अपना 11, अपना जो अभ्यास टीम आते है ना, अपना इंडियन 11।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: उसके साथ मतलब मैं अपना गेम में रहा, लेकिन रणजी और टेस्ट टीम में, वनडे टीम में, T20 में मैं नहीं जा सका।
0: ओके, आप कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए आप?
1: हाँ जी, अपना मैं मतलब थोड़ा 11 जो अपना बॉयज होते हैं अंडर 19, उनमें मैं खेलता रहा। अपने देशों की टीम आती थी जी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड
0: जी,
1: अपने चंडीगढ़ में आती थी, दिल्ली में भी आती थी, वो पहले अभ्यास मैच खेलती हैं
0: जी।
1: अपना जो अभ्यास मैच होता है मैं उनमें खेलता था जी।
0: क्या बात है, बट ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप क्रिकेटर युवराज सिंह को आप क्रिकेट सिखाते रहे, बहुत बड़ी बात है
1: जी। जी, इकट्ठी खेलते थे, अपना घर के पास ही थे, युवराज का मेरे घर आना जाना था।
0: सही, ठीक है।
1: हम इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते थे, वो 11 सेक्टर में रहते थे।
0: अच्छा जी,
1: सेंटर में ग्राउंड पड़ता था जी इंजीनियरिंग कॉलेज का, वहाँ बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे जी।
0: यानी कि हम इस टाइम सेलिब्रिटी से बात कर रहे हैं
1: जी। अगर हम अच्छा शौक रखेंगे, हम नशों से दूर रहेंगे जी, हमारा ध्यान नहीं भटकेगा
0: जी।
1: अगर बच्चे में कोई शौक है तो उसका ध्यान नहीं भटकता जी, पढ़ाई की तरफ जाता है। बच्चे का ध्यान अच्छी संगत में होना चाहिए जी।
0: जी बिल्कुल,
1: माँ बाप को बाकी पैसा नहीं देना चाहिए। जब युवा हद से पैसा मांगने लग जाते हैं, समझो वो गलत जा रही हैं जी।
0: बिल्कुल जी, सतीश कुमार जी, हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू मैडम जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: थैंक यू।

0: दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो चंडीगढ़। हेलो
1: जी
0: चंडीगढ़।
1: नमस्कार दीदी,
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं
1: मैं रामवीर बोल रहा जी, गांव की रमत जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा से
0: जी। रामबीज मोहन जी।
1: रामवीर जी, रामवीर,
0: रामवीर जी, जी आप आज के हमारे टॉपिक पे क्या बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं?
1: हाँ दीदी, देखिए जो आज का टॉपिक है वो
0: स्वस्थ युवा जी,
1: खेलों से संबंधित है और स्वास्थ्य
0: जी
1: भी संबंधित हो जाता है। जब हमारे युवा देश के बारे में एक काल्पनिक रूप से भी वैसे भी विकास का जो आधार है वो हमारे युवा वर्ग है
0: जी,
1: हमारे बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा लेंगे, अच्छे स्वास्थ्य रखेंगे, तभी हम ये सोच सकते हैं कि हाँ ये देश के युवा
0: जी
1: देश को विकसित कर सकते हैं जी। और दूसरा, हर जो बच्चे, जो आज के बच्चे हैं वो कल के नेता भी बन सकते हैं, और कल आने वाला कल बच्चों का ही है, और बच्चे ही कल युवा बनेंगे, और उनके ही कंधों पर पूरा भार परिवार का और पूरे देश का होगा। तो दीदी, बच्चों को जब हम शिक्षा क्षेत्र में स्कूल में पढ़ाते हैं तो हमें चाहिए कि उनका सर्वांगीण विकास करना चाहिए, ताकि वो अच्छी शिक्षा लेके अच्छे रास्ते पर चल पड़े
0: जी। और अगर कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई टेंशन है, वो भी उनको टाइम टाइम पे पूछते रहें, ताकि वो किसी भी मेंटल हेल्थ का शिकार ना हो जाएं, और जी पॉजिटिविटी के साथ वो आगे बढ़ते जाएं।
1: बिल्कुल दीदी
0: जी। जी रामवीर जी, प्रोग्राम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद
0: जी।

0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
1: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
2: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
1: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी।
2: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
0: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
3: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
4: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
5: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, इस वक्त आप आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुन रहे हैं और

0: हमारा आज का टॉपिक है स्वस्थ युवा सशक्त समाज। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन जना बात कर रहे हैं?
1: मैं सुशील शर्मा हिमाचल से बोल रहा था
0: जी। सुशील शर्मा जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैडम, बढ़िया। आप कौन बोल रहे हैं मैडम?
0: जी रूही।
1: अच्छा जी, रूही जी, आपसे पहली बार बात हो रही है मेरी।
0: जी जी जी,
1: मैं नियमित आपका श्रोता हूँ और
0: जी
1: आपसे फोन करता रहता हूँ।
0: जी
1: विषय पे आते हैं मैडम।
0: हाँ जी
1: मैम, मेरा तो यही कहना है कि आज का युवा जागरूक तो है इस सोशल मीडिया के इस दौर में, एआई के दौर में।
0: हाँ जी।
1: लेकिन थोड़ी सी जो एनर्जी होती है यूथ में ना, उसको सही दिशा में, जिसको बोलते चैनलाइज करने की जरूरत है
0: जी।
1: क्योंकि यूथ में एनर्जी तो बहुत होती है, अगर सही समय पे सही मार्गदर्शन मिल जाए यूथ को
0: जी,
1: तो मतलब युवा सशक्त, जिसको राष्ट्र के निर्माण में, सशक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका तरीके से निभा सकता है
0: जी। बिल्कुल।
1: और इसमें खासकर घर, माता पिता और स्कूल में शिक्षक की भूमिका में बहुत
0: वो बेस बनती है,
1: बेस है मैडम। क्योंकि शिक्षक जो है वो समाज का निर्माता होता है, वो पीढ़ियों का निर्माण करता है, नस्लें तैयार करता है, बच्चों का भविष्य तैयार करता है
0: जी।
1: खुद वहीं रह जाएगा लेकिन बच्चों को मंजिल तक पहुंचा देता है।
0: बिल्कुल।
1: और यूथ को अगर सही मतलब 15-16 साल की में ही मतलब अच्छा ये एटमोसफेयर मिल जाए, उनको माहौल दे, उनकी ऊर्जा को, क्योंकि भरपूर ऊर्जा होती है सही दिशा में, नशे इत्यादि दुर्व्यसनों में ना पड़ करके
0: जी। आजकल के तो युवा तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे स्टार्टअप भी करने लगे हैं, खुद भी काम कर रहे हैं, दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं।
1: जी मैडम, क्योंकि जागरूकता की तो कमी नहीं है मैम, पहले पता नहीं होता था
0: जी।
1: जो पहले का दौर था मतलब 80s 90s का दौर होता, उस टाइम पता नहीं होता था इतना, अखबारों जिसकी रीच भी नहीं थी उतनी और ज्यादा मतलब मीडिया वगैरह इस तरह जागरूकता का अभाव था। लेकिन आज तो अब घर घर में जिसके हाथ में आपका इंटरनेट की कनेक्टिविटी है
0: जी,
1: 2000 के बाद तो लगभग मतलब अब तो हर हाथ में आपके पास इंटरनेट है, अच्छी कनेक्टिविटी है, लोगों के पास पता भी है
0: जी, और सही गलत का बहुत अच्छे से उनको पता आजकल।
1: जी मैडम जी,
0: जी जी
1: ये तो है ही है। और बच्चों को अगर शुरू में ही तो हम बच्चों को संस्कार दे घर से ही जो है ना बच्चों को, तो बच्चे बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं मैडम, बहुत तेज है मतलब। हमारे दौर में जो हम तो मतलब डरते थे मतलब, जो है हमारा जो बचपन था मतलब उस टाइम तो इतनी ना जागरूकता थी, ना हमारे पास थोड़ा साधनों का भी अभाव था। लेकिन अब तो मैम मतलब काफी एडवांस है
0: जी।
1: लेकिन फिर भी एनर्जी को चैनलाइज अगर करें ना
0: जी,
1: तो जो है भारत को जो है एक जो विकसित भारत का सपना है ये दूर नहीं है मैडम
0: जी। जी सुशील वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए।
1: बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे बात करके।
0: जी हमें भी बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू मैडम
0: जी।

0: हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: संदीशा डोगरा बोल रही हूँ, मैम, दकौंडी सीरपुर से। ठीक
0: जी, कैसी हैं आप?
1: है मैम, मुझे लगता है
0: फाइनली
1: पहली बार
0: एक
1: ही बात कर रही हूँ
0: एक
1: आपसे,
0: फीमेल
1: इतने
0: वॉइस सुनने को
1: नाम
0: मिली
1: सुन।
0: है। फाइनली
1: हाँ जी मैम,
0: एक फीमेल वॉइस सुनने को मिली।
1: मैम
0: जी स्मिता जी,
1: मैं युवाओं को सबसे पहले ढेरों मुबारक देती हूँ कि आज हम उनके बारे में ही बात करेंगे। आज उनका ही दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इंडिया के, जब वो 2014 में आए थे, इंडिया में 33% जो युवा है, हमारा एक देश ऐसा है जिसके लिए हम बहुत भाग्यशाली की युवा शक्ति का हमारे पास भंडार है, क्योंकि देश के युवा ही देश का कर्णधार है। बट मैं मैम थोड़ी सी युवाओं की बजाय पेरेंट्स पे ध्यान लाऊंगी कि इसमें जो युवाओं का फ्यूचर है वो क्या बन रहे हैं, और पेरेंट्स का उसमें बहुत ही ज्यादा रोल है,
0: जी
1: मतलब 100% रोल है। क्योंकि जैसे इंडिया में बच्चों को पेरेंट्स जो ना बन पाए, वो बच्चों को चाहते हैं कि बच्चा वही बने, कोई डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं बच्चे को डॉक्टर ही बनाऊंगा, मतलब ऐसी इच्छा रखते हैं अपने ना,
0: जी
1: जो कि गलत है, क्योंकि बच्चों का और पेरेंट्स का जो जनरेशन गैप हो जाता है धीरे धीरे मैम, तो उनका जो है फ्यूचर जो है उनके पास ज्यादा एक्सपोजर है। जैसे कि अब जो हम थे वो चीज नहीं है कि डॉक्टर और इंजीनियर ही थे, दो ही थे पुराने जमाने में, चीज में वो सारा है ना मैम। तो मैं कहूँगी फॉरन में जैसे बच्चा छोटा होता है उसकी कैपेबिलिटी देखते हैं किस तरफ हो, ध्यान किस तरफ हो, जरूरी नहीं 10th ही करानी, प्लस 2 ही करानी तभी जीवन बनता है,
0: जी
1: तो वो उस तरफ उसको टाल देते हैं। वो बहुत अच्छी चीज है, उसका मैं अप्रिशिएट करती हूँ फॉरन में ये चीज।
0: जी
1: तो हमें भी बच्चों को इतना स्ट्रेस ना दें कि वो जो ना बन पाए, भी पेरेंट्स की इच्छा होती है ना, तो वो सुसाइड वाले केस चलते हैं। वो मैं युवाओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज, जीवन है तो सब है, क्योंकि जिन्होंने पैदा किया है उनको भी उम्मीद है,
0: जी
1: तो ऐसा गलत स्टेप ना खाएं। दो चॉइस रखें लाइफ में, एक
0: और
1: फर्स्ट चॉइस अगर वो ना मिला तो
0: जी
1: सेकंड पे जाएं।
0: जी
1: तो मैं टीचर थी तो मैं बच्चों को हमेशा एक ही बात फेयरवेल पार्टी में बोलती थी, जो प्लस 2 से आउट गोइंग वाले होते थे, कि आप कभी भी एक चीज पे फोकस ना रहना, एक चॉइस जरूर सेकंड रखना,
0: जी
1: क्योंकि जरूरी नहीं है मैम कि हमें वही मिलेगा हम चाहें, है ना, पर
0: जी
1: जो हमारे लिए और भी अच्छा भगवान दे रहा होता है या सभी होता है, उस पर विश्वास रखो, इतना ही बोलूंगी मैम।
0: जी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हाँ जी,
0: हाँ जी बोलिए।
1: ढेरों शुभकामनाएं इन बच्चों को, प्लीज बच्चे अपना लाइफ बचाएं और थोड़ी पेशेंस रखें, थोड़ा सा जल्दी इरिटेट ना हो जाए, मैं बहुत ही रिक्वेस्ट करती हूँ। आपका जीवन हमारे लिए बहुत कीमती है, आपसे भी ज्यादा, हमारे सबके लिए, देश के लिए, पेरेंट्स के लिए सबसे पहले।
0: जी, और एक और बात कहना चाहेंगे कि जो
1: जी।
0: पेरेंट्स अगर देखते हैं ना कि अगर उनका बच्चा चुप है या बात नहीं कर रहा या लग रहा है कि शायद स्ट्रेस्ड है, तो उसको कभी भी अकेला ना छोड़ें, उससे बात करें,
1: बहुत जरूरी मैम। इसलिए तो बच्चों में ये दिक्कत आ रही है कि दोनों वर्किंग है ना मैम, बच्चे इग्नोर हो गया, जहाँ तो दादा दादी के पास है वहाँ तो कुछ ठीक चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, उनकी केयर में है, नाना नानी की केयर में है, कोई ना कोई उनका केयर टेकर की बजाय अपना पर्सनल रिलेशन होना चाहिए जो उसको अच्छे से देख पाए, और उसके साथ टाइम स्पेंड करो बचपन से खेल कूद के लिए,
0: जी
1: ताकि टीवी मोबाइल ना ले वो ना दो।
0: जी जी स्मिता जी, कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी,
1: थैंक यू मैम।

0: बहुत
1: गुड लक।
0: ओके जी, थैंक यू।
1: ऑल द बेस्ट।
2: हेलो।
0: हेलो चंडीगढ़।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: रविंद्र कुमार बोल रहा हूँ मैडम, बुराया डिस्ट्रिक्ट जालंधर।
0: जी रविंद्र कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे आप?
2: देखो जी, नौजवानों का जो स्वस्थ होना वो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नौजवान जितने स्वस्थ और मानसिक रूप से होंगे तकड़े, उतने ही मतलब हमारा देश तरक्की करेगा
0: जी।
2: तो नौजवानों का मेंटली तौर पर और शारीरिक तौर पर जो स्वस्थ होना देश के लिए बहुत ही जरूरी है
0: जी।
2: इसलिए नौजवानों पर सरकारों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए, उनकी पढ़ाई पर। अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो वो देश की बागडोर और भी अच्छे तरीके से संभाल सकेंगे। सबसे पहले तो जो है उनको शिक्षा पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा ना हो जो मतलब अनपढ़ हो, हर कोई बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। और पढ़ाई में उनको सहूलतें गवर्नमेंट की तरफ से जरूर देनी चाहिए
0: जी,
2: क्योंकि अगर बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो अपने पैरों पर भी खुद खड़ा हो जाएगा और आगे जाके वो देश को भी अच्छे तरीके से संभाल सकेगा
0: जी।
2: तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी माँ बाप की भी है कि पहले माँ बाप जो है ना वो रोल मॉडल बने
0: जी।
2: अगर वो रोल मॉडल बनेंगे तो तभी जो बच्चे हमारी शिक्षा से आगे बढ़ेंगे। अगर हम खुद ही बुराइयों में पड़े हुए तो बच्चों भी वहाँ बैठे ही होंगे
0: जी।
2: तो सबसे पहले तो माँ बाप को चाहिए कि वो अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार करे। अगर कोई माँ बाप नशा भी करता है तो उसको छोड़ना चाहिए
0: जी।
2: तो बच्चों को तभी समझा सकता है
0: जी, बिल्कुल।
2: और अगर सख्त मेहनत करनी है तो पहले आप भी करके दिखाओ, तभी बच्चे आगे जाके उनके नक्शे कदम पर चलेंगे
0: जी।
2: तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि माँ बाप और समाज की जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि अगर बच्चे यहाँ समाज में बिचरते हैं तो उनको ऐसे रोल मॉडल अगर मिलेंगे तो वो मतलब अपने आप ही उनके मन में इच्छा होगी कि हम भी ऐसे बने
0: जी। एक
2: तो इसलिए हमको चाहिए कि हम खुद अपने आप को सुधारें, और हम सुधर जाएंगे तो बच्चे अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे
0: जी। एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं कि बच्चे जो है ना, जो युवा है, हार जल्दी ना माने। अगर फेलियर होना तो हार ना माने, यत्न करते रहें। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था ना कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।
2: जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों पर तो खास ध्यान देना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी, और नौजवानों का तो फिर जिम्मेवारी आ जाती है ना। बच्चे तो चलो बच्चे हैं, नौजवानों पे जिम्मेवारी ज्यादा होती है, इसलिए उनका जो स्वस्थ होना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है
0: जी। जी रविंद्र कुमार,
2: स्वस्थ होना बहुत जरूरी है
0: जी। रविंद्र कुमार जी, प्रोग्राम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद
0: जी। जी।

0: हेलो चंडीगढ़, ये कॉल कट गई है। हेलो चंडीगढ़,
1: गुड मॉर्निंग मैम,
0: गुड मॉर्निंग जी, कौन बात कर रहे हो?
1: मैं किरण बात कर रही हूँ।
0: किरण जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैम मैं शिमला कुफरी से बात कर रही हूँ।
0: जी, पहले बताइए शिमला का हाल क्या है?
1: मैम बढ़िया,
0: बढ़िया।
1: आज धूप खिली है मैम।
0: ओ, फिर तो अच्छी बात है जी।
1: जी मैम,
0: आज के टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहते हैं? स्वस्थ युवा, सशक्त समाज।
1: मैं तो यही कहना चाहूंगी, जैसे मतलब जैसे हमारा युवा सुरक्षित रहेगा, मतलब हमें उन्हें नशे से, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी मैम सब कि नशे, हमें युवाओं को नशे से दूर रखना चाहिए।
0: जी
1: हेलो,
0: हेलो।
1: सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें युवाओं को नशे से दूर रखना चाहिए।
0: जी, और जैसे हमारा टॉपिक है कि अगर युवा स्वस्थ होगा तभी एक मजबूत समाज की, सशक्त समाज की जो है नींव रख सकता है, क्योंकि जो देश का
1: जी मैम,
0: भविष्य है वो युवाओं। जी
1: मैं उसी विषय में आ रही हूँ मैम।
0: जी
1: सबसे पहले हमें युवाओं को नशे से दूर रखना चाहिए,
0: जी
1: तभी हम सुरक्षित भारत का मिशन,
0: जी
1: जैसे कि मतलब हम आदमी जैसे मतलब रक्षा के लिए दिन रात एक करते हैं। हेलो
0: हेलो। हाँ जी मैम, बोलिए।
1: मैम, जैसे फौजी भाई हमारे लिए दिन रात ये करते हैं, हमें
0: जी
1: भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए।
0: जी आप क्या करना चाहती हैं फौजी भाइयों के लिए?
1: मैम मैं ये कहना चाहूंगी, मतलब जैसे हमारा युवा जो नई पीढ़ी है, तो मैम हमें उन्हें अग्रसित करना चाहिए कि कुछ ना कुछ काम कर सके,
0: जी बिल्कुल।
1: चाहे जैसे मतलब खेल का हो, पढ़ाई का हो, जिस चीज का भी मन करे उनका।
0: जी जी किरण जी, प्रोग्राम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
1: थैंक यू मैम।
0: जी। हेलो चंडीगढ़
2: हेलो,
0: जी, कौन जनाब बात कर रहे हैं?
2: मैं खन्ना से बोल रहा हूँ,
0: जी खन्ना से कौन सा बात कर रहे हैं?
2: पवन कुमार।
0: जी पवन जी, आज के टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
2: मुझे एक रचना है कि है आज जो कर रहे हैं जुर्म कर रहे हैं, ज्यादा चार्जिस होना बोल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, फोन कर रहे हैं
0: जी।
2: क्या 20 साल में कुड़ियाँ, क्या 20 साल में बोल रहे हैं?
0: हाँ जी,
2: 20 साल में बोल रही है कुड़ियाँ, बाहर बाहर जा रही हैं
0: जी।
2: एक हद कम है, ऐसा होना चाहिए बात
0: जी।
2: जे जेल तरक्की करनी है तो रोको रोको रोको
0: जी,
2: नुकसान है कोई नहीं है। सरकार भी है और माओ रहे हैं, बच्चा खुद ही जान रहे बाहर जमा
0: जी। वैसे भी
2: क्योंकि इंडिया की नौकरी नकलियाँ है घट घट नहीं
0: जी,
2: इंडिया की नौकरियां है नहीं घट घट नहीं, बच्चा पढ़ गए बच्चे नौकरी नहीं मिल रही।
0: ऐसा नहीं है, आजकल के तो बच्चे हैं जो आजकल इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं, खुद के अंदर से वो जी। अब वो एक तो आप बोलती कि देखा देखी जो बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं, कि शायद उनको लगता है कि बाहर भविष्य बहुत अच्छा होगा, लेकिन बात यह ना कि अगर वो यहाँ पर रहेंगे, यहीं पर अपने टैलेंट का इस्तेमाल करेंगे, अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करेंगे, तभी तो हमारा देश तरक्की करेगा ना, क्योंकि देश तो पूरा युवाओं पर। जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप क्या बात कर रहे हैं?
2: मैं कहा बाहर जाके कोई बाहर उधर क्या होगा
0: जी,
2: मैं ता कह रहा हूँ आजकल ये रिवाज हो गया हर घर के बीच
0: जी, तो
2: हर घर के बीच कोई ना कोई बंदा बाहर जा रहा
0: है जी। तो पेरेंट्स को ना, बच्चों को यही कहना चाहिए कि जो है, जो भी फ्यूचर है यहाँ पर भी बन सकता है, इसलिए आप यहीं पर रहें, देश में रहें, देश की तरक्की में योगदान पाएं। किस तरह से कर सकते हैं वो पेरेंट्स को ही अपने बच्चों के अंदर जो है कहीं ना कहीं बेस रखना पड़ेगा उसका। जी जी जी
2: जी
0: जी बिल्कुल
2: ठीक करिएगा।
0: जी पवन जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।
2: थैंक यू
0: जी।

0: इसी के साथ ही प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ अब समाप्त होता है. इजाजत दीजिए, नमस्कार.
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी. हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो चंडीगढ़.

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब पेश है स्पॉन्सर प्रोग्राम हमारी बेड़ियां।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं आराधना आप सबका स्वागत करती हूं कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं एक भावुक और जागरूक करने वाला नाटक, बचपन का अधिकार। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम को उत्साह के साथ सुनते होंगे। हमें बहुत खुशी होती है जब आप लोग फोन कॉल व मैसेज के द्वारा हमें सुझाव देते हैं। तो श्रोताओं, आज फिर हम आपके लिए एक और नई कहानी को साथ लेकर आए हैं। हमें आशा है आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आएगी। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप हमारा फोन नंबर जरूर नोट करें। हमारा फोन नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ श्रोता, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955।
0: तो श्रोताओं, हम अपने उन श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं तथा लगातार हमसे फोन के माध्यम से जुड़े रहते हैं।

उनके नाम हम कार्यक्रम के अंत में आपसे जरूर साझा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। आज की कहानी का शीर्षक है बाल विवाह की बेड़ियां।

0: बाल विवाह भारतीय समाज की एक अत्यंत गंभीर और जटिल सामाजिक समस्या है, जो न केवल बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, बल्कि राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकास को भी गहराई से प्रभावित करती है। यह कुप्रथा प्राचीन समय से चली आ रही है और आज भी कई क्षेत्रों में अशिक्षा, गरीबी, लैंगिक असमानता, सामाजिक परंपराओं और रूढ़िवादी मानसिकता के कारण जीवित है। बाल विवाह का अर्थ है ऐसे बच्चों का विवाह जो कानूनी रूप से विवाह योग्य आयु तक नहीं पहुंचे होते, अर्थात लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष से कम। बाल विवाह के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण है गरीबी, जहां माता पिता अपनी आर्थिक जिम्मेदारी कम करने के लिए जल्दी विवाह कर देते हैं। अशिक्षा, जिसके कारण लोग इसके दुष्परिणामों से अनजान रहते हैं। और सामाजिक परंपराएं, जहां इसे सम्मान या परंपरा का हिस्सा माना जाता है। कई बार सुरक्षा की भावना से भी माता पिता अपनी बेटियों का जल्दी विवाह कर देते हैं, जिससे वे समाज की बुरी नजरों से बच सके। इस प्रथा का प्रभाव अत्यंत हानिकारक होता है, विशेषकर बालिकाओं के लिए। बाल विवाह उनके बचपन, शिक्षा और स्वतंत्रता को छीन लेता है। कम उम्र में विवाह होने के कारण वे शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, जिससे उनका आत्मनिर्भर बनना बहुत कठिन हो जाता है। इसके साथ ही कम उम्र में गर्भधारण उनके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जोखिमपूर्ण होता है, जिससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होती है। मानसिक रूप से भी वे तनाव, अवसाद और सामाजिक अलगाव का सामना करती हैं। बाल विवाह केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि समाज और देश के विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए समाज की मानसिकता में परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। जब तक लोग स्वयं इस कुप्रथा के विरुद्ध खड़े नहीं होंगे, तब तक इसे पूरी तरह समाप्त करना बहुत कठिन होगा। बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाएं और एक जागरूक और प्रगतिशील समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर।
1: रीना बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल का समय हो रहा है।
2: जी माँ, बस किताब ही रख रही हूँ।
3: रीना, आज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है।
2: पिताजी, क्यों?
3: कल गांव के शर्मा जी आए थे, उन्होंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है और मैंने उन्हें हाँ कह दी है।
2: क्या? लेकिन पिताजी, मैं अभी सिर्फ 15 साल की हूँ, मेरी पढ़ाई, मेरे सपने।
1: मैंने भी इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मान ही नहीं रहे हैं।
3: हम गरीब लोग हैं, लड़की की शादी जल्दी हो जाए तो अच्छा रहता है, बाद में खर्च और बढ़ जाता है।
2: पिताजी, मैं पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती हूँ, अगर अभी शादी हो गई तो मेरी पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाएगी।
3: मेरी बेटी, समाज भी तो देखना पड़ता है।
2: लेकिन क्या समाज मेरे सपने पूरे करेगा?
1: रीना सही कह रही है जी, आजकल लड़कियाँ पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं।
3: बस मैंने फैसला कर लिया है,

0: रीना, आज तुम बहुत उदास लग रही हो, क्या बात है?
1: मैडम, मेरे पिताजी मेरी शादी करवाना चाहते हैं।
0: क्या? लेकिन तुम अभी नाबालिग हो, ये गलत है।
1: लेकिन मैडम, हमारे गांव में तो कई लड़कियों की शादी जल्दी ही हो जाती है।
0: रीना, कोई चीज सालों से होती आ रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि वह सही है।
1: पर टीचर, मैं क्या कर सकती हूँ?
0: तुम ही सब कुछ कर सकती हो, क्योंकि कानून भी इसके खिलाफ है।
1: क्या कानून भी इसके खिलाफ है? कैसे मैडम?
0: हाँ, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और लड़के की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। इससे कम उम्र में शादी करवाना कानूनन अपराध है।
1: लेकिन मैडम, मेरे माता पिता तो मेरी भलाई ही चाहते हैं।
0: बिल्कुल, हर माता पिता अपने बच्चों के भलाई चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी होना भी जरूरी है। हमारे संविधान ने बच्चों को कई अधिकार दिए हैं। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 लड़कियों और बच्चों के साथ भेदभाव नहीं, अनुच्छेद 39F सुरक्षित और स्वस्थ बचपन का अधिकार।
1: अगर कोई जबरदस्ती शादी करवाए तो?
0: तुरंत मदद मांगनी चाहिए। तुम चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर फोन कर सकती हो। पुलिस और प्रशासन बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
1: मैडम, क्या आप मेरे पिताजी से बात करेंगी?
0: हाँ जरूर रीना, बच्चों के सपनों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: कौन?
0: नमस्ते, मैं रीना की शिक्षिका हूँ।
2: जी आइए।
0: मुझे पता चला कि आप रीना की शादी करवाना चाहते हैं।
2: जी, लड़की बड़ी हो रही है। गरीब आदमी हूँ मैडम, जिम्मेदारी जल्दी खत्म करना चाहता हूँ।
0: लेकिन रीना अभी बच्ची है, इस उम्र में शादी उसके स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य तीनों के लिए नुकसानदायक हो सकती है।
3: हमें तो कभी किसी ने समझाया ही नहीं।
0: कम उम्र में शादी होने से कई लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं। जल्दी माँ बनने से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है।
2: लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे?
0: आज समाज बदल रहा है, पढ़ी लिखी बेटियां परिवार का सहारा बन रही हैं। अगर रीना पढ़ेगी तो आपके परिवार का नाम रोशन करेगी।
1: पिताजी, मैं वादा करती हूँ, मैं खूब मेहनत करूंगी।
3: जी, इसे पढ़ने दीजिए।
2: लेकिन कानून?
0: बाल विवाह करवाना अपराध है, इसमें सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
2: मुझे लगा मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, लेकिन शायद मैं अपने बेटी का बचपन ही छीन रहा था।
1: पिताजी,
2: नहीं बेटा, अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, पहले तुम पढ़ोगी।
3: भगवान आपका भला करे मैडम जी।
1: धन्यवाद पिताजी, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी।
0: याद रखिए, हर बच्चे को अधिकार है शिक्षा पाने का, सुरक्षित बचपन का, अपने सपने पूरे करने का, हिंसा और शोषण से सुरक्षा पाने का।
2: और माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को स्कूल भेजें, उनकी सुरक्षा करें और उनके सपनों का सम्मान करें।
3: बेटियां बोझ नहीं होती, वे परिवार की ताकत होती हैं।
1: अगर आपके आसपास कहीं बाल विवाह हो रहा है तो चुप मत रहिए,

0: तो देखा आपने किस प्रकार आज चार लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम अपने बच्चों की जिंदगी को खराब होने के लिए राजी हो जाते हैं। छोटी सी ही उम्र में उन्हें खेल कूद, पढ़ाई, खुशियों से परे ले जाकर दुख में लाद देते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ उन पर आ जाता है। ऐसा ही करने से बच गए सोहन लाल जी। समाज के डर और बच्चे के भविष्य में सही चुनाव करके जरूरी है हमारे आसपास गुड़िया की अध्यापिका जैसे लोगों का होना, जो हमें हमारे सही के लिए समझाते हैं और समाज में एक प्रगतिशील सोच को रखते हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करते हैं। श्रोताओं, हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं हमारे कार्यक्रम को सुनने के लिए, अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए। आप हमें फोन कर सकते हैं या आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। फोन करने के लिए हमारा नंबर नोट करिए। हमारा नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955।
0: श्रोताओ, जिस प्रकार हमने आपको कार्यक्रम के शुरू में बताया था कि हम अपने उन श्रोताओं के नाम आपके साथ साझा करेंगे जो हमारे कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं तथा हमसे बातचीत करते हैं, उनके नाम हैं देवीलाल जी बांसवाड़ा से, पलक जी कोटपुतली से, अशोक सक्सेना जी प्रताप नगर से, राजू जी उदयपुर से। श्रोताओं, आप भी इसी तरह जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम हमारी बेड़ियां को। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या 13 साल की उम्र में गुड़िया की शादी कराना सही था या उसे अपने सपने पूरे करने देना चाहिए ये सही था? आप क्या सोचते हैं बाल विवाह के बारे में? सोचिए और हमें जवाब दीजिए। अब मैं आराधना आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में नई कहानी और नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू। SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: आपको मालूम है ना, आज बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रोग्राम FM लाइफलाइन की रिकॉर्डिंग होगी। बिल्कुल सही। और इस प्रोग्राम में इस बार हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर दीपक बंसल, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी PGI चंडीगढ़। विषय रहेगा बच्चों में अनीमिया और थैलेसीमिया से जुड़ी समस्याएं। इससे जुड़े आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, तो उठाइए ना अपना फोन, डायल कीजिए हमारे नंबर्स। बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।
3: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ, बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में। बस 1-3 मिनट का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स OTT ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 लाख रुपीज और नेशनल लेवल पर 5 लाख रुपीज। सबमिशन ओपन है 1 अगस्त

0: 31 अगस्त 2026 तक, तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप सबके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम, जो कि गैर फिल्मी संगीत पर आधारित होता है। नाम है सुरबहार। कार्यक्रम का पहला गीत दीदार कौर और अब्दुल शेख की आवाज में।

श्रोताओं, आप गैर फिल्मी संगीत का आनंद उठा रहे हैं और अभी जो गीत आपने सुना उसमें आवाज थी अमित मिश्रा की। कार्यक्रम का अगला गीत विशाल मिश्रा की आवाज में।

0: वो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स ओटीटी ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 लाख रुपीज और नेशनल लेवल पर 5 लाख रुपीज। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय हो गया है कार्यक्रम संजीवनी का।
2: संजीवनी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नितिन जुनेजा, जो एक सफल आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीवनी कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार आपको और जितने भी श्रोतागण हैं उन सभी को नमस्कार। और मैं सबसे पहले रमेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने मुझे संजीवनी कार्यक्रम में आमंत्रण दिया।
2: डॉक्टर साहब, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और खास तौर पर ये जो उमस भरा मौसम है, ऐसे मौसम में कौन कौन सी बीमारियां होने का चांस रहता है?
3: बरसात का मौसम मुझे ऐसा लगता है सबको बहुत अच्छा लगता है वैसे तो, लेकिन जब उमस भरा हो जाता है वो उतनी ही परेशानी भी देता है हमें, और जितनी ये परेशानी देता है वो अपने साथ बहुत सी बीमारियों को भी आमंत्रण देता है। तो बरसात में बहुत बीमारियां होने के चांसेस बन जाते हैं और बहुत ही ज्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसमें बहुत ही कॉमन एक जो खांसी, जुकाम, बुखार भी कई तरह के हैं, डेंगू की वजह से हो सकता है क्योंकि मच्छर बहुत ज्यादा होता है, इसमें पनपता है, पानी इकट्ठा होता है कहीं, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, बीपी बहुत ज्यादा इसमें एक शूटअप होता है कुछ पेशेंट्स का, और बच्चों को खासकर स्किन डिसऑर्डर्स की भी प्रॉब्लम होती है, बड़ों में भी हो जाती है, और बरसात के मौसम में इसलिए हमें बहुत ज्यादा हमें हमारा ध्यान रखना पड़ता है।
2: जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत से लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो कौन कौन से ऐसे चमड़ी के रोग हैं जो खास तौर पर इस बरसात के मौसम में होने का खतरा रहता है?
3: इसमें पहले तो ये है कि बरसात में हम लोग जैसे भीग जाते हैं, उमस वाला मौसम होता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और जो भी हमारे जैसे प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर, तो ऐसी जगह पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, हमें अपने आप को ड्राई रखना पड़ता है। अगर किसी को ऐसी तकलीफ लग रही है, इचिंग हो रही है किसी को, कई बार किसी को बहुत बड़े बड़े रेड पैचेस बन जाते हैं स्किन के ऊपर, वो एक एलर्जिक रिएक्शन होता है बरसात की वजह से और उमस भरे मौसम की वजह से, और जब हम हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं बॉडी का, तब हमें ये बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं, जिससे हमें बचाव रखना बहुत ही जरूरी है। बरसात तो आकर चली जाएगी लेकिन ये बीमारियां हमारे साथ रह जाती हैं और जो काफी लंबे समय तक हमें परेशान भी करती हैं।
2: हालांकि बरसात का मौसम जो होता है, कहते हैं ना कि मन को खुशनुमा कर देता है, लेकिन साथ के साथ बीमारियां भी आती हैं बरसात के मौसम में, तो हमें अपना खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए इन बीमारियों से बचने के लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि बॉडी के अंदर मॉइस्चर बहुत इकट्ठा हो जाता है इस उमस भरे मौसम में, तो खास तौर पर अपना किस तरह से ध्यान रखना चाहिए ताकि जो स्किन इन्फेक्शंस हैं, चमड़ी के रोग हैं, वो ना हो?
3: सबसे पहले मैं इसमें यही बताऊंगा कि अपना हाइजीन, जो मैंने पहले भी अभी वर्ड यूज किया, वो हमें जरूर ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। इसमें कई बार हमें पसीना आता है लेकिन हम वही कपड़े डालकर सो जाते हैं, हम अपने आप को फ्रेश नहीं करते हैं, और इसमें दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि हम जो टेलकम पाउडर्स हैं उनको हमें थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ता है ऐसे मौसम में, क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनका भी इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसके साथ साथ अपने खान पीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे मौसम में हमें बाहर की जो चीज़ें हैं वो बड़ी मन भावुक लगती हैं, लेकिन वो जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए बीमारियों को आमंत्रण देने वाली चीज़ें होती हैं, जिसमें हमें पेट जो है, क्योंकि बाहर का जैसे भी हम खाना पीना शुरू करते हैं, जैसे हमारी शरीर में मॉइस्चर इकट्ठा होता है, बीमारियां पैदा होती हैं, वैसे ही जो पुराना खाना होता है जिसको हम बासी भोजन भी कहते हैं, अगर वो भी हम लोग खाते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई इन्फेक्शन, कीटाणु वहां पर पैदा हो जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, और जब भी हम बाहर का कुछ खाते पीते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान देते हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि खान पान का किस

0: से ध्यान रखना चाहिए। बासी भोजन इस मौसम में ना खाया जाए, ताजा भोजन हम लोग खाएं, और कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि घर पर ताजा भोजन जो है वो बनाकर खाएं, तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने पेट की बात की तो पापी पेट का सवाल है, तो जो पेट है इसकी कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो खास तौर पर बरसात के मौसम में होने का चांस होता है?
1: खाने पीने और बीमारियों से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें बहुत ज्यादा पानी इस मौसम में पीना चाहिए, क्योंकि पानी की बहुत कमी हो जाती है, उमस की वजह से बहुत ज्यादा पसीना आता है हमें ऐसे मौसम में, और कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं, प्यास लगती है तो हम कई बार जूस पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लेते हैं, या कोई और मार्केट में जो भी चीज अवेलेबल है जो ठंडी हमें अच्छी लगती है, लेकिन पानी की कमी कोई और चीज दूर नहीं कर सकती, हमें पानी बहुत ज्यादा पीना पड़ता है। और रही बात पेट की बीमारियों की, तो इसमें जब हम बाहर का कुछ खाते पीते हैं या घर पे भी अगर हम बासी भोजन खाते हैं, और जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें ज्यादा से ज्यादा कीटाणु जो है वो आ सकते हैं ऐसे मौसम में, तो हमें ताजा भोजन खाना चाहिए, फल जरूर खाने चाहिए ऐसे मौसम में, अच्छे से धोकर और उनको काटकर अच्छे से साफ सुथरे फल खाने चाहिए, साफ सुथरी सब्जियां खानी चाहिए, ताजा भोजन घर का ही बना हुआ खाना चाहिए, जो फ्रीज खाना होता है उसको अवॉइड करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे मौसम में।
0: जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने फलों की बात की, बहुत से ऐसे लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं या कहीं पे कोई काम करने जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, तो साथ में वो फल काट कर ले जाते हैं, तो क्या ऐसे में वो उनकी सेहत के लिए अच्छा रहता है या बुरा रहता है?
1: जी, ज्यादा देर तक कटा हुआ फल अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। ऐसे में मुझे भी पता है कि नौकरी पेशा लोग जो होते हैं वो सुबह ही घर से निकल जाते हैं, तो बेटर ये रहता है कि वो फुल जो साबुत फल है वो साथ में लेकर जा सकते हैं, और जब भी उनका मन करे, भूख लगे, तो वो जरूर खाना चाहिए हमें।
0: जी, तो मार्केट में भी कई बार होता है कि बहुत ज्यादा पका फल जो होता है वो हम लोग ले लेते हैं, या कटे और पुराने पड़े हुए वहाँ पे फल बहुत से ऐसी बाजार हैं जहाँ पर बिकते हैं, तो कई बार मन ललचा जाता है कि चलो फ्रूट चाट खाई जाए या ऐसा कुछ खाया जाए, तो कहाँ तक सही होता है?
1: जब हम घर पर फ्रूट खाते हैं तो हम बहुत अच्छे से धोकर खाते हैं, उसको ताज़ा काटते हैं, फिर तभी के तभी उनका सेवन कर लेते हैं। अब हमें नहीं पता जो मार्केट में जो फ्रूट सेलर बैठा है जिसने फ्रूट्स को कट भी किया हुआ है, अभी हमें ये नहीं पता कि उसने कौन से पानी से धोया है, कितने समय पहले धोया है और कितने समय से उसको काट कर रखा हुआ है, तो ऐसी जब नौबत आती है हमें कुछ मन को ललचाता है कुछ खाने का मन करे, तो मुझे ऐसा लगता है उसको अवॉइड भी करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे जर्म्स या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर इस बरसात के मौसम में, उनका किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो इस मौसम में कहते हैं कि कमजोर हो जाती है, तो बुजुर्गों और बच्चों का खास तौर पर किस तरह से ध्यान रखना चाहिए और उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए?
1: मुझे ऐसा लगता है बच्चे और बुजुर्ग एक समान होते हैं, और मेरे घर में दोनों ही हैं और मुझे दोनों का ही बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और रही बात इस मौसम की, तो इम्यूनिटी, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बोला जाता है, ये दोनों में ही कम रहती है, तो इनको बहुत ही जल्दी इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों या बुजुर्ग में, जब भी बारिश वाला मौसम होता है तो सर्दी, जुकाम, बुखार बहुत जल्दी पकड़ता है उनको। इसका मतलब यही होता है कि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं वो बहुत कम है, और इसलिए उनको स्पेशली हमें ध्यान देना पड़ता है कि वो बाहर का कम खाएं, फल सब्जियां फ्रेश खाएं और बहुत ज्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखें।
0: जी डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, यहाँ पर हम आपकी पसंद का एक गीत अपने श्रोताओं को और आपको सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
1: जब बातचीत बरसात की हो रही है तो बरसात के ऊपर ही एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है, रिमझिम गिरे सावन, मंजिल मूवी का सॉन्ग है, आप प्लीज उसको प्ले कर दीजिए।
0: जी बहुत ही अच्छा गाना है, आइए सुनते हैं।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संजीवनी, और इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नितिन जुनेजा, जो एक सफल आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं बरसात में होने वाली आम बीमारियां कौन कौन सी हैं और आयुर्वेद में उसका इलाज किस तरह से होता है। तो डॉक्टर साहब, शुरू में आपने बताया कि ये बरसात का मौसम, खास तौर पर ये उमस भरा जो मौसम है, इसमें बहुत से लोगों का बीपी है वो बढ़ जाता है। बीपी ना बढ़े, कंट्रोल में रहे, ऐसे जो मरीज हैं बीपी के, उनको कौन कौन सी सावधानियां उनको रखनी चाहिए?
1: जी, इसमें ना सिर्फ बीपी, अगर किसी को पहले से ही कोई तकलीफ है बॉडी के अंदर, जैसे किसी को बीपी है या शुगर है या कुछ और है, तो वैसे ही ये मौसम ही ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो पुरानी बीमारियां हैं वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं या वो इतनी ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रह जाती। इस केस में हमें दवाई टाइम टू टाइम लेनी ज़रूरी होती है, जो आपके डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर परामर्श करें और अपने जो टेस्ट हैं वो ज़रूर करवाते रहें साथ के साथ, सो दैट कि आपके जो वाइटल्स हैं वो विद इन नॉर्मल रेंज रहें। और इसके साथ साथ जो और बीमारियां हैं वो मैंने जैसे पहले भी बताया है, जैसे टाइफाइड है, डायरिया है, वायरल फीवर है कोई, या डेंगू, मलेरिया या हैजा, लूज मोशंस, डायरिया, ये होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमें हमारे खान पान में ही कुछ ऐसे परिवर्तन लाने पड़ते हैं जिससे हम इन चीजों से बच सकें और जो हमारी बीमारियां हैं उनको भी हम अपने से दूर रख सकें।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो वर्षा ऋतु चल रही है, आयुर्वेद में इसको किस तरह से आप लोग देखते हैं, खान पान का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए ताकि इस वर्षा ऋतु में जो होने वाले रोग हैं उनसे बचा जा सके?
1: वर्षा ऋतु में हमें जैसे पहले ही बताया कि खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और इसमें आयुर्वेद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर हम आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, अगर हम आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है या जिनको बीमारी है उनको कंट्रोल में भी रखा जा सकता है। इसमें पहले है कि जैसे हम ग्रीन टी, जो मुझे लगता है सभी लाइक करते हैं, और उसमें हम बाहर की जो ग्रीन टी है या घर पे कुछ ऐसी औषधियां हैं जो हमारी किचन में ही मौजूद हैं, उनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे दालचीनी है, काली मिर्च है, शहद है, पुदीना है, तुलसी है, अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाय बनाते हैं लोग तो चाय बहुत पसंद है, अगर उनमें तुलसी और अदरक का इस्तेमाल किया जाए या पुदीने का इस्तेमाल किया जाए, तो वो एक काफ़ी गुणकारी चाय बन जाती है जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है। इसमें एक आपने पहले बात छेड़ी थी बीपी की, बीपी कंट्रोल करने के लिए लोग दवाई लेते हैं, उस दवाई के साथ साथ एक

0: बहुत ही अच्छी ब्रह्मी वटी आती है हमारे आयुर्वेद में, अगर हम उसको डॉक्टर की परामर्श के साथ उसकी जो डोज है वो लेते हैं कंसल्ट करके, तो उसका बहुत ज्यादा एक अच्छा रिजल्ट है। बरसात के दिनों में बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो इसमें जो नीली भृंगराज आदि तेल है अगर हम उससे उस सिर की मसाज करते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है।
1: जी डॉक्टर साहब, क्योंकि ये बरसात का मौसम है और कभी तो लगता है कि थोड़ी ठंडक हो गई है और कभी उमस भरा एकदम ऐसा मौसम होता है कि जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, टेम्परेचर चाहे 35 चल रहा होता है लेकिन गर्मी आपको 45 डिग्री सेल्सियस जैसी लगती है। तो ऐसे मौसम में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कई तरह की एलर्जीज भी होती होंगी, तो वो कौन कौन सी एलर्जी हैं जो इस मौसम में हो सकती है?
0: आपने देखा होगा ऐसे मौसम में पहले तो खुजली बहुत होती है लोगों में, क्योंकि इतना ज्यादा पसीना आता है, बड़े बड़े रैशेज बन जाते हैं बॉडी के ऊपर, और ऐसे में मुझे लगता है कि घर पर ही हम कुछ चीजों का इस्तेमाल करके इनसे बचाव कर सकते हैं। जैसे नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है, वो लगा सकते हैं। ऑलिव ऑयल, वो जहां पर आपको लग रहा है कि इचिंग हो रही है या जहां पर आपको लग रहा है रैशेस हैं, अर्टिकेरिया भी बोलते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस बोलते हैं इनको, तो वहां पर भी हम लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल, फ्रेश एलोवेरा को अगर कट करके हम उसको लगाते हैं तो वो भी जो हमारी एलर्जिक रिएक्शंस हैं उनको शांत करती है। उसके अलावा अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो जरूर हमें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए।
1: जी, और जो अस्थमा रोगी हैं उनको बरसात के मौसम में अपना किस तरह से ध्यान रखना चाहिए?
0: बरसात के मौसम में ऐसे जीवाणु पैदा होते हैं जो हमारे लंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होते हैं। अगर हम हमारा ध्यान नहीं रखते हैं तो जैसे पहले ही सबको पता है कि खांसी, जुकाम और बुखार ऐसी बीमारियां बहुत ही जल्दी शरीर को लगती हैं, और जिनको पहले ही दमा की प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये जो मौसम है ये ज्यादा तकलीफदायक होता है, क्योंकि ऐसी जो कीटाणु है या जीवाणु है वो बहुत ज्यादा जल्दी उनको कैच करते हैं। तो ऐसे में जैसे पहले ही बताया कि हमें खान पान का ध्यान जरूर रखना चाहिए, और आयुर्वेदा में एक अगस्त्य हरित की रसायन आता है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही ज्यादा मजबूत रखता है, उसकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करता है, तो ऐसे में हम उसका सेवन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भाप होती है, अगर किसी को जुकाम है, खांसी है, तो भाप का जरूर सेवन करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं हमारे सुनने वालों को। डॉक्टर साहब, जो दिल के मरीज हैं उनको खास तौर पर इस उमस भरे मौसम में, इस बरसात के मौसम में अपना ध्यान किस तरह से रखना है ताकि उनका जो दिल है वो हमेशा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे?
0: दिल सभी का ही स्वस्थ और तंदुरुस्त हमेशा रहना चाहिए। दिल के मरीज जो होते हैं उनमें ये परेशानी होती है कि ऐसे मौसम में जो हमारा हार्ट होता है उसकी पंपिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, क्योंकि अगर हमें हमारी बॉडी के अंदर कोई बीमारी आ रही है तो वो हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करके कोशिश करता है कि उस बीमारी को, उस जीवाणुओं को हमारे शरीर से बाहर निकालें। तो ऐसे में जिनको पहले से ही दिल की बीमारी है या जो मोटे लोग हैं या जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या कोई और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, लेकिन ऐसे मौसम में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना या व्यायाम करना वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और बिल्कुल भी नहीं करना वो भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऐसे मौसम में पसीना बहुत आता है, हमारा मन करता है हम एसी में बैठे रहे हमेशा, लेकिन वो भी गलत है, हमेशा एसी में बैठे रहना गलत होता है। हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करना चाहिए, अच्छा खाना जरूर खाना चाहिए, दवाई समय से लेनी चाहिए, फ्रूट्स जरूर खाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और फ्रेश फूड हमें इनहेल करना चाहिए, और इन चीजों से मुझे लगता है हम हमारे शरीर का ध्यान रख सकते हैं।
1: जी,
0: दिल के मरीज जितने भी होते हैं उनमें एक और समस्या रहती है या जो देखी जाती है, उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो डीअरेंज रहता है, बड़ा हुआ होता है। तो ऐसे में मरीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हार्ट अटैक का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है।
1: जी,
0: तो हमें इसमें कुछ उपाय ऐसे करने पड़ते हैं जिससे इन खतरों से बचा जा सके और अपना जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम किया जा सके जो बड़ा हुआ है। ऐसे में मैं यही आप लोगों को सुझाव दूंगा कि व्यायाम जैसे मैंने पहले बोला है अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, और कम से कम रोजाना आधा घंटे का व्यायाम और सैर जरूर करनी चाहिए हमें। इसके साथ साथ जो चीजें हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती हैं उनसे हमें जरूर परहेज करना चाहिए, जैसे जंक फूड, ऑयली फूड, इवन जो घर पे भी हम लोग बनाते हैं कम से कम तेल का प्रयोग करना चाहिए, जैसे डीप फ्राइड चीजें होती हैं,
1: क्योंकि ये बरसात का मौसम है, मन ललचाता है कि पकौड़े बना के खाए जाएं।
0: बहुत ही अच्छे लगते हैं पकौड़े और चाय का सेवन, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें हमारी सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। जरूर खाएं, मैं ये मना नहीं करूंगा, लेकिन उसकी मात्रा उतनी की

0: होनी चाहिए कि वो हमारी शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। बाहर जो चीज़ें मिलती हैं हमें, पकौड़े मिलते हैं या कुछ और जलेबी है या जितने भी जंक फूड्स हैं, बहुत ही कम से कम सेवन करें और कोशिश करें कि इनका सेवन ना ही करें, क्योंकि ये दिल के मरीजों के लिए बिल्कुल एक तरह की घातक चीज़ें हैं। इनको हम बोल सकते हैं कि स्लो पॉइजन्स हैं उनके लिए।
1: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे सुनने वालों को दे रहे हैं। यहाँ पर हम आपकी पसंद का एक और गीत अपने श्रोताओं को और आपको सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: जी, सावन का महीना चल रहा है तो मेरा एक और पसंदीदा गीत है सावन बरसे तरसे दिल दहक मूवी का, तो आप उसको प्लीज श्रोताओं को सुनाइए।
1: जी, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: घर से दिल। गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संजीवनी, और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नितिन जुनेजा। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने बताया कि बरसात के मौसम में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो आयुर्वेद में ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनसे हम घर बैठे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो उसको बढ़ा सकते हैं?
1: जी, आयुर्वेदा एक ऐसी साइंस है जो हमारे घर से ही शुरू हो जाती है। हमारे घर पे ही और किचन में ही बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनसे

0: हम हमारी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, जैसे दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी, पुदीना, धनिया और हल्दी। हल्दी में एक ऐसा एक केमिकल रहता है कर्क्यूमिन, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है और जो हमारी सेहत का भी ध्यान रखता है। इन चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल रोज़ाना करते हैं तो हम काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। च्यवनप्राश, जो हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं, उसका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए और जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे काफ़ी बीमारियों से बचा भी जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, हमने थोड़ी देर पहले बात की कि बरसात में बहुत सी एलर्जीज हो जाती हैं, आपने स्किन एलर्जीज की बात की, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप कोई भी एक ऑइंटमेंट लेके वो स्किन पे लगा लेते हैं या ऐसे ही एलर्जीज की कोई दवाई खा लेते हैं, तो ऐसे में उनके रोग को और ज्यादा बढ़ने का कितना खतरा रहता है?
0: जी, बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के कोई भी दवाई लेना घातक हो सकता है, इसलिए कोई भी, चाहे छोटी सी बीमारी है या बड़ी बीमारी है, कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के परामर्श के कभी भी नहीं लेनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, क्योंकि आज बहुत से सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो आप हमारे उन सभी श्रोताओं को बरसात में होने वाली बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
0: जी, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो खान पान है, रहन सहन का तरीका है, वही बीमारियों को न्योता भी देता है और वही हमें बीमारियों से बचाता भी है। अगर हमारा खान पान, रहन सहन दोनों अच्छा है, हाइजीनिक है, तो हमें बीमारी लगने के चांसेस बहुत ही कम हैं। अगर हमारी यही चीज़ें ठीक नहीं हैं, हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं हैं, तो उतना ही हमें बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रही बात बरसात के मौसम की, तो ये एक ऐसा मौसम है जिसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा हमें हमारा ध्यान रखना पड़ता है। छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को और सभी को ही अपना ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, अगर हमारा खाना पीना, जैसे फल, सब्जियाँ, ताज़ा फल हमें ज़रूर खाना चाहिए, जो सीजनल फ्रूट्स रहते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स रहते हैं, उनका सेवन ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई बीमार है, उसको अपनी समय से दवाई लेनी चाहिए, व्यायाम को अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना चाहिए और पानी का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौसम में पसीना बहुत आता है, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बच्चों में भी और बुज़ुर्गों में भी। तो ऐसे में पानी का सेवन ज़रूर करें। और एक और इसमें मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि सौंठ का पानी हम लोग ज़रूर पी सकते हैं। अगर हम 1 लीटर पानी लें और उसमें आधा चम्मच सौंठ डाल दें और उसको बॉयल करके रूम टेम्परेचर पर आने दें उसको, और उसका अगर हम 1 लीटर पानी का रोज़ाना अगर सेवन करते हैं, तो ये हमारी जो इम्यूनिटी है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसके साथ साथ मैंने पहले ही बताया है, अगर किसी को बॉडी के अंदर कोई एलर्जिक रिएक्शंस हैं, तो एक कपूर आदि तेल आता है, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं बॉडी के ऊपर। और जैसे पहले पूछा था कि कोई ऑइंटमेंट या कोई दवाई हम बिना परामर्श के दवाई की दुकान से खरीद लेते हैं, तो वो एक घातक साबित हो सकती है। इसके साथ साथ, जैसा कि हमें पता है, बरसात के मौसम में पानी इकट्ठा होता है, जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होने का संभावना बढ़ जाती है। ऐसे मौसम में हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आसपास हमारे कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो। कई लोगों के घर में कूलर होता है, तो कूलर में पानी जो है वो बदलते रहना चाहिए, ताकि उसमें मच्छर पैदा ना हो, जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां ना पैदा हो। और इन सब चीज़ों से, मुझे लगता है, छोटी छोटी चीज़ों से हम हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे सुनने वालों को दी कि बरसात के मौसम में किस तरह से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं और बरसात के मौसम का आनंद उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप संजीवनी कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, आज संजीवनी कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे डॉक्टर नितिन जुनेजा, और जानकारी दे रहे थे बरसात में होने वाली आम बीमारियां और आयुर्वेद में उसका किस तरह से इलाज हो सकता है। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं मीनाक्षी कालिया। कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में तकनीकी सहयोग रहा हमारे साथी अरुण बावा का। अब आज का संजीवनी कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संजीवनी।
3: आपको मालूम है ना, आज बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रोग्राम FM लाइफलाइन की रिकॉर्डिंग होगी। बिल्कुल सही। और इस प्रोग्राम में इस बार हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर दीपक बंसल, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी, PGI चंडीगढ़।

0: विषय रहेगा बच्चों में अनीमिया और थैलेसीमिया से जुड़ी समस्याएं। इससे जुड़े आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, तो उठाइए ना अपना फोन, डायल कीजिए हमारे नंबर्स। बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि विपक्ष आज ही चर्चा के लिए सदन में उपस्थित हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है और गृहमंत्री अमित शाह बयान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहमति बनाने तथा संवाद के जरिए आगे बढ़ने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक जरिया भी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को एक मजबूत न्यायाधिकरण प्रणाली के केंद्र में रखता है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिखे लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सेवानिवृत्त आरआरपीएस डॉक्टर भूमा वीजी को मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन AIPSI के कुलपति पद के लिए चुना गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि AIPSI मॉरिशस का पूर्व सिविल सर्विस कॉलेज है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने मार्च 2025 में संयुक्त रूप से किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई।

0: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
1: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जावखोरिन सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा 2 मैचों में 1.5 अंक पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

सुन रहे थे अभी प्रसून जोशी के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था, नरेश अय्यर, मोहम्मद असलम और साथियों की आवाजें थीं। यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से अंतराल के बाद।

0: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस उपलक्ष्य में हमने कुछ ऐसी फिल्में चुनी हैं जिनमें युवाओं की उपस्थिति दर्ज होती है। चलिए आज युवाओं के लिए हम करते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो, उनके सारे सपने पूरे हों और उनके हौसले सदा बुलंद रहें। फिल्म 3 इडियट्स, सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाजें।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: छिछोरे फिल्म का गाना है, नक्श अजीज और साथियों की आवाजें हैं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

0: 1947 अर्थ इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर

0: जो जीता वही सिकंदर, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे उदित नारायण और विजेता पंडित की आवाजों में। मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं।

चक दे इंडिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमा सरदेसाई की आवाज में। जयदीप साहनी के बोल थे, सलीम सुलेमान का संगीत था। लागा चुनरी में दाग, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में।

0: लगा चुनरी में दाग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में स्वानंद किरकिरे के बोल थे शांतनु मोइत्रा का संगीत। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हमारे केंद्र से कौन कौन से कार्यक्रम किस समय पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

अब से थोड़ी ही देर बाद 1:05 पर हमारे केंद्र से प्रादेशिक हिंदी समाचार आप सुनेंगे। 1:10 पर आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से प्रादेशिक पंजाबी समाचार आप सुन सकते हैं। 1:15 ये समय रहेगा फिल्म संगीत का। 2:15, 3:00, 6:30 और 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे। संध्याकालीन सभा में 5:05 पर एक बार आप फिर आनंद उठाएंगे फिल्म संगीत का। 5:20 ये समय रहेगा कार्यक्रम लम्हे का। 5:30 पर सुनना न भूलिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार और आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से 6:20 पर प्रादेशिक पंजाबी समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे। 6:30 पर आप आनंद उठाएंगे पंजाबी गीतों का। 7:45 पर प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुन सकते हैं। रेडियो डायरी कार्यक्रम का समय रहेगा 7:47। 8:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम फॉर्म टू सिटी सुन सकते हैं। 10:30 पर प्रादेशिक मुख्य समाचार एक बार फिर लेकर हाजिर होंगे और 10:32 ये समय रहेगा कार्यक्रम सुर सांझ का। तो ये थे कार्यक्रम जो आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से आज आप सुन सकते हैं। अब आपको बता दें कि विविध भारती से प्रस्तुत किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय क्या रहेगा।

कार्यक्रम पिटारा में आज के मेहमान हैं लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा, जिनसे पूनम खान की बातचीत का भाग दो आप सुनेंगे। कार्यक्रम हवा महल प्रस्तुत किया जाएगा 8 बजे। आप सुनेंगे इसमें प्रहसन आंधी।

9:30 पर आपके लिए लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम आज के फनकार, जो केंद्रित रहेगा अभिनेत्री श्रीदेवी पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर, और ये थे मुख्य कार्यक्रम जो विविध भारती से आज आप सुन सकते हैं।

अनीमिया और थैलेसीमिया से जुड़ी समस्याएं, इससे जुड़े आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो उठाइए ना अपना फोन, डायल कीजिए हमारे नंबर्स। बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।

आपको मालूम है ना, आज बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रोग्राम FM लाइफलाइन की रिकॉर्डिंग होगी। बिल्कुल सही। और इस प्रोग्राम में इस बार हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर दीपक बंसल, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी PGI चंडीगढ़। विषय रहेगा बच्चों में

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 1:05 पर प्रादेशिक 1:10 पर प्रादेशिक पंजाबी समाचार। लीजिए समय है प्रादेशिक हिंदी समाचारों का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य के विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि श्री कोविंद की आत्मकथा न केवल उनके जीवन व्यक्तित्व और योगदानों की जानकारी प्रदान करेगी बल्कि भारतीय लोकतंत्र और समाज के लिए एक विरासत भी बनेगी।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी रामनाथ कोविंद एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करना जारी रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
2: खास करके युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। ऑटोबायोग्राफी उस कालखंड की इतिहास की घटनाओं को अलग तरीके से समझने का अवसर देती है। इतिहास से काफी निकट होता है वो कालखंड बायोग्राफी का, और इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि कोविंद जी की जो मेहनत है वो आने वाली पीढ़ियों को काम आए, युवा पीढ़ी को विशेष रूप से काम आए।
1: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक साधन है। हरियाणा की स्वास्थ्य तथा आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने नागरिकों से अपील की है कि वे बीमारियों के इलाज के लिए पारंपरिक एवं प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को प्राथमिकता दें ताकि स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ समाधान को समाप्त किया जा सके। मीडिया में जारी एक विज्ञप्ति में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली और दैनिक तौर तरीकों के कारण उत्पन्न हो रही बीमारियों के चलते न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों का रुझान आयुष पद्धतियों आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी की ओर तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी दिशा में सरकार ने राज्य में 4 बड़े आयुर्वेदिक अस्पताल संचालित किए हैं जिनमें कुरुक्षेत्र में 100 बिस्तरीय, भिवानी में 25 बिस्तरीय, चरखी दादरी के गांव एमलौटा में 10 बिस्तरीय और नारनौल में 100 बिस्तरीय अस्पताल शामिल हैं। इसके अलावा पलवल के सिहौल में 1 यूनानी अस्पताल और अम्बाला के चांदपुरा में 1 होम्योपैथी अस्पताल स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि आयुष ढांचे का दायरा केवल बड़े अस्पतालों तक ही सीमित नहीं है बल्कि प्राथमिक और सूक्ष्म स्तर पर भी इसका व्यापक प्रसार किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में जिला अस्पतालों में 21 आयुष विंग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 102 आयुष आईपीडी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 106 आयुष ओपीडी के माध्यम से नागरिकों को निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। इनमें से

अधिकांश संस्थान ग्रामीण व दुर्गम इलाकों में कार्यरत हैं। हरियाणा क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी के अध्यक्ष समीर पाल सरो ने नई दिल्ली स्थित क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक में हरियाणा में गुणवत्ता आश्वासन की अव्यवस्था को मजबूत करने, गुणवत्ता के प्रति संस्थागत संस्कृति विकसित करने तथा इंजीनियरिंग संरचना के क्षेत्र में गुणवत्ता मानकों के प्रभावी अनुपालन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा सड़कों, भवनों, पुलों और अन्य सार्वजनिक उपयोग की संरचनाओं में गुणवत्ता जांच की मौजूदा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने तथा आधुनिक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान क्षमता निर्माण, नई तकनीकों के उपयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान के माध्यम से गुणवत्ता निगरानी तथा परियोजनाओं की कार्यक्षमता और दीर्घकालिक रखरखाव को बेहतर बनाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। श्री समीर पाल सरो ने बताया कि दोनों संस्थाओं की साझेदारी के माध्यम से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग और प्रभावी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने पर विचार किया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के आजादी संग्राम नूं प्रेरित किया सी अते अज भी देश की पछाण नूं मजबूत कर रही है। उन्होंने कल सभ्याचार मंत्रालय वालों राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर कराई गई हर घर तिरंगा बाइक रैली च हिस्सा लैण वालिआं नूं संबोधन करदिआं कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम के शब्दों ने देश भगति नूं जगाया अते इलाकिआं भाषावां धर्मां ते पिछोकड़ां दे लोकां नूं इकजुट किया। बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर एल्बा स्मैरिकलियो ने उत्थे रहिंदे पंजाबियों दीआं वख-वख चिंतावां ते पंजाब दे एनआरआई मामलिआं बारे मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह नाल चर्चा कीती। इस चर्चा विच बरतानिया च रहिंदे पंजाबियों दे हितां नूं प्रभावित करन वाले मुद्दे शामिल सन। स्मैरिकलियो अते डॉक्टर रवजोत सिंह ने कल चंडीगढ़ विखे अपनी मुलाकात दौरान प्रवासी पंजाबियों नाल संबंधित मामलिआं ते आपसी संचार ते सहयोग नूं होर मजबूत करन दी लोड ते जोर दिता। डिप्टी हाई कमिश्नर ने नौजवानों नूं वीजा धोखाधड़ी अते बरतानिया विच सुरक्षित अते कानूनी आवाजाई बारे जागरूक करन लई लुधियाणा दे इक पिंड दा दौरा भी कीता। बाद विच अपने अधिकारित सोशल मीडिया अकाउंट ते उन्हां कहा कि उन्हां नूं लोकां नाल सिद्धे जुड़न अते उन्हां दे अनुभव सुणन दा इक वधिया मौका मिलिआ है। उन्हां कहा कि सही जानकारी तक पहुंच लोकां नूं वीजा धोखाधड़ी अते असुरक्षित प्रवास रूटां तों बचाउण दे सब तों वधिया तरीकिआं विचों इक है। पंजाब विच रेल कोच फैक्टरी कपूरथला अज बांग्लादेश रेलवे लई 19 LHB ब्रॉडगेज मुसाफिर कोचां वाला पहला रेक लॉन्च कर रही है। इस रेक विच 3 AC स्लीपर कारां, 3 AC चेयर कारां, 11 नॉन AC चेयर कारां ते 2 पावर कारां शामिल ने। इन्हां कोचां विच कई विलखण डिजाइन विशेषतावां ते सोधां भी शामिल ने, जिन्हां विचों बहुत सारियां पहली बार इस किस्म के कोचां विच विकसित कीतियां गईआं ने। नाल ही इह मुसाफिर कोच होर कई सहूलतां नाल लैस ने। अधिकारित हलकिआं दा हवाला दिंदे साढ़े जलंधर वाले पत्रकार ने खबर दिती है कि कोचा नूं बांग्लादेश रेलवे दीआं संचालन अते मुसाफिर जरूरतां नूं पूरा करन लई विशेष तौर ते तैयार कीता गया है। RCF कपूरथला अते बांग्लादेश रेलवे विचकार संबंध 2015-16 दौरान 120 LHB ब्रॉडगेज यात्री कोचा दी सफल सप्लाई नाल शुरू होया सी। पंजाब सरकार वालों सीनियर IAS अधिकारी वरुण रूसम समेत 3 अधिकारियों नूं होर विभाग के वाधू चार्ज दिते गए ने, जबकि जलंधर नगर निगम के कमिश्नर निकाम कुमार दा तबादला आम राज प्रबंध ते तालमेल विभाग विच बतौर वधीक सकत्तर कर दिता गया है। इन्हां दी थां ग्रेटर मोहाली एरिया विकास अथॉरिटी के मुख प्रशासक संदीप ऋषि नूं जलंधर नगर निगम का वाधू चार्ज सौंपिया गया है। सेहत ते परिवार भलाई विभाग के विशेष सकत्तर साक्षी साहनी, जिन्हां कोल राष्ट्रीय सेहत मिशन पंजाब ते नशा विरोधी मुहिम दा भी वाधू चार्ज, उन्हां नूं खेडां अते युवक सेवावां विभाग दे डायरेक्टर दा भी वाधू चार्ज दित्ता गया है। अज कौमांतरी युवा दिवस मनाया जा रहा है। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी वालों आलमी चुनौतियां प्रति नौजवान वर्ग नूं जागरूक करन ते उद्देश नाल इस मौके एक प्रोग्राम कराया गया, जिस दौरान उसारू बदलाव लियाउण वास्ते नौजवानों नूं एक एजेंट वजो काम करन लई प्रेरित किया गया। इस मौके पंजाब दे वख-वख विद्यक संस्थावां दे 100 तों वध नौजवान विद्यार्थियों ते अध्यापकों ने हिस्सा लिया। इस बार कौमांतरी नौजवान दिवस मनाउण दा सिरलेख सांझियां इच्छां वाली वख-वख

ये गीत अभी आपने सुना फिल्म होगी प्यार की जीत से, उदित नारायण की आवाज में, संगीत दिया आनंद मिलिंद ने और गीतकार समीर। वंस अपॉन अ टाइम फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे, मोहित चौहान की आवाज में, संगीत है प्रीतम का।

वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म का गीत अभी आपने सुना और अब आप सुनेंगे दिल तो बच्चा है फिल्म का गीत, मोहित चौहान की आवाज़ में। संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: फिल्म संगीत में आज बस इतना ही।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास।
3: HPTDC के प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
2: HPTDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
3: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
2: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
3: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
2: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

मधुमती फिल्म का गाना था। हमने गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था, त्वरित जवाब आया, श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया, शैलेंद्र और सलील चौधरी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। और श्रोता कोशिश कर रहे हैं कहानी की बात को आगे बढ़ाने की। और अगर आपको नहीं सूझ रहा है तो बस ये तो बताइए कि अंत क्या होता है कहानी में, प्रेमी जोड़े में वो प्रेमी आता है इस गाने को सुनकर या फिर नहीं आता है। जो भी गाने आज बज रहे हैं, मेरे ख्याल से उस प्रेमी तक इन गानों के ज़रिए आवाज़ पहुंचनी चाहिए, तो जो कहानी इबारत की थीम है उसमें। अब एक श्रोता ने लिखा है कि इंसान बहुत कुछ भूल जाता है पर पहला प्यार नहीं भूल पाता, क्योंकि वो उसकी आत्मा और जहन में पत्थर की लकीर की तरह इंगित हो चुका होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफ़र में नदी पहाड़ों के वातावरण में रहने वाले प्रेमियों के मिलने बिछड़ने पर आने वाले गीत सुनने को मिलेंगे। चंबा का गांव और प्रेमी क्या कहते हैं वो भूली दास्तां फिर याद आ गई, बीते दिन वो प्यारे दिन कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बूझ मेरा क्या नाम रे। बहुत सारे गानों को मिलाया है इन्होंने, एक कड़ी सी बनाई है, अच्छी बात है ये। एक श्रोता ने लिखा है कि वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, हवाएं गुंजायमान है, यही वो जगह है, यही हैं फिजाएं, यहीं पे कभी आप हमसे मिले थे, यहीं पे कभी हाथों में हाथ लेकर कभी न बिछड़ने का वादा किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी भावुक सुंदर इबारत की परिपूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं हम। विरह दर्द को आंचल में समेटे, मन की सारी शक्ति बटोरे, वो उस हरे भरे फूल पेड़ के पास पहुंची जो उन दोनों ने लगाया था और बोल उठी, ओ मेरे मनमीत, तेरा नाम है अमर प्रेम, तेरी यादों को दिल से कैसे मिटाऊं, तुम्हें भुलाना नामुमकिन है क्योंकि जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार हमने जन्म लिए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। और अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया।

क्या है जो हम सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन जरा आपको बताना है हीरो हीरोइन का नाम, किन हीरो पर किन हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना, फिल्म महबूबा। जल्द बताइए ताकि अगले सवाल का जवाब आप दे सकें। हीरो हीरोइन लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

महबूबा फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो कौन है हीरोइन, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया और दरअसल इस गाने का जिक्र भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने किया था, तो समझ लीजिए कि आप सभी की फरमाइश पर यह गाना हमने बजाया। तो आज की इबारत से कोई शब्द आपको सूझ रहा है जिस पर बहुत सारे गाने आपको सूझ रहे हैं तो वो आप लिख डालिए, फिर वही गाना हम आप तक पहुँचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो हरियाली अमावस्या है, सुरीला सफ़र में नदी पहाड़ों की बातें हैं और वैसे ही गाने हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है आज का सुरीला सफ़र। एक श्रोता ने लिखा है कि बीते हुए दिन और हालात लौट कर नहीं आते, लेकिन अगर दोनों का प्यार सच्चा और पवित्र है तो बिछड़े हुए प्रेमी फिर से मिल सकते हैं। सच क्या है, बीता हुआ कल जो समय निकल गया शायद वापस नहीं आता, टूटे हुए ख्वाब पुराने जख्मों को भरने में समय लगता है, हालात अगर हालात बदल जाएं तो अलग हुए रास्ते फिर से जुड़ जाते हैं। अब बात बीते हुए दिन की।

0: लिए तो चलिए एक ऐसा ही गाना सुनते हैं। आपको पूछना है किसकी है आवाज और गीतकार का नाम। फिल्म है फर्स्ट लव और बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र भी किया है।
1: कुछ

सभी श्रोताओं ने सही बताया, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ है, गुलशन बावरा के बोल हैं। ये बात, ये जानकारी कम श्रोताओं ने दी है। दत्ताराम का संगीत और फिल्म थी फर्स्ट लव। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि उसने देखा कि गाना एक कुटीर से आ रहा है, जाके देखा तो प्रेमी की बेटी गा रही थी, प्रेमी तो गुजर गए थे। ये एंड लाइन हमारे श्रोता ने लिखी है और सब अपने अपने विचारधारा के अनुरूप लिखें कि कहानी का अंत क्या होना चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज आप द्वारा प्रस्तुत शानदार इबारत के साथ सुरीला सफ़र के लाजवाब कमेंट सुनकर पढ़कर मन प्रफुल्लित हो रहा है। हमारा भी मन प्रफुल्लित हो रहा है कि एक ज़रा सी कहानी है छोटी सी, उसमें आप सभी उसमें शामिल हो रहे हैं, उस छोटी सी कहानी को कितना विस्तार दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब जरा बताइए हीरो हीरोइन का नाम और कौन से शब्द इस गाने में आते हैं इबारत वाले, और कौन से शब्द वाले गाने बाकी हैं, जरा ये भी तो लिखिए। फिल्म मेरा नाम जोकर, आपको हीरो हीरोइन का नाम बूझना है। और हाँ, अगर वो प्रेमी मिल जाता है तो फिर वहां पर कौन सा गाना होना चाहिए, जरा ये भी बताइएगा।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: समझ जाएंगे कि हमारी आपकी पसंद बिल्कुल मिलती जुलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आवाज के पीछे गई तो वहां कोई नहीं था, बस हवा थी जिसमें उसकी आवाज और उसके बीते दिनों की खुशबू घुली हुई थी। उसने आंगन के उस पुराने पेड़ को छुआ जिस पर दोनों के नाम अब भी साथ साथ खुदे थे। गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता, बस उसकी आहटें दिल के किसी कोने में ठहरी रहती हैं। बरसों बाद जब यादों की कोई खिड़की अचानक खुलती है तो बीते दिनों की खुशबू के साथ एक हल्की

सी टीस भी लौट आती है, कुछ प्रेम कहानियां इस जमीन पर मुकम्मल नहीं होती, वे बिछड़कर आसमान की हवाओं में हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। क्या बात है, एक कहानी आपने रच दी है, बहुत अच्छा लगा। अब बूझिए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। फिल्म है किनारा। गीतकार और संगीतकार का नाम पता होगा आपको शायद, तो लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

मेरी चाबियां घर की।

0: से और कभी
1: किनारा फिल्म का गाना था, भूपेंद्र हेमलता हेमा मालिनी की आवाज़ें थी, गुलजार के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है हेमा मालिनी पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। और ये गाना हमें अधूरा छोड़ना पड़ा क्योंकि इस गाने में पूरी कहानी निहित थी, इसलिए गाना सुनवाया। और एक गाना अभी ज़रूरी है जिसका जवाब आप सभी ने नहीं दिया, देखिएगा शायद वो आपका भी फेवरेट सॉन्ग हो और आपने भी वही गाना सुना चुना हो। एक श्रोता ने लिखा है कि सच्चा प्रेम तो वो है जिसमें मिलने की नहीं एक दूसरे के लिए सच्चा समर्पण हो, यही प्रेम की पराकाष्ठा भी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से लिखी हुई दास्तान हो, इसे कृपया आप पूरा कर दें। ये टिप्पणी पढ़ी जा चुकी है, शायद ये दोबारा और तिबारा भी आई है एक टिप्पणी। और अब वो इबारत मैं आप तक पहुंचा रही हूं जिस इबारत की बात बार बार की इस प्रोग्राम में। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव था, वहां एक प्रेमी जोड़ा था, उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत ख्वाब देखा था, एक छोटा सा घर जिसकी खिड़की से पहाड़ और वादियाँ दिखाई दें, आंगन में दोनों के नाम के एक पेड़ हो, लेकिन बीते दिन लौट कर नहीं आते, हालात ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया, वक्त की आंधी में उनके टूटे हुए ख्वाब कहीं बिखर गए। सालों बाद फिर उसी गांव में वो लौटी, पहाड़ वही थे, पगडंडियां वही थी, मगर वो नहीं था। तभी हवा में उसकी आवाज़ गूंजी, बूझ मेरा क्या नाम रे, वो ठिठक गई। ये वही गीत था जिसे उसने कई बार उसके साथ गुनगुनाया था, उसने आंखें बंद की तो लगा जैसे बीते हुए दिन फिर उसके सामने खड़े हैं। कुछ प्रेम कहानियां पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं और कुछ टूटे ख्वाब उम्र भर आँखों में अपना घर बनाए रहते हैं। अब इस इबारत के मुताबिक तो मिलता है वो प्रेमी जोड़ा, प्रेमी आता है मिलता है, लेकिन एक बेनाम रिश्ते के साथ। वो रिश्ता ऐसा था कि उसका मिलना न मिलना एक समान था, लेकिन कई मुलाकातें ऐसी होती हैं, कई मुलाकात ऐसी होती है कि आपके जहन में बस जाती है, लगता है कि अधूरा प्रेम भी मुकम्मल प्रेम है। अब सुनिए ये।

तो क्या बताइए, आपने ये गाना आखिर में सोचा था कि ये गाना बजाया जाएगा? वापस फिल्म का ये गीत था और अधूरी मुलाकात को हमने मुलाकात पूरी करवा दी, और बहुत सारे श्रोताओं ने यही चाहा भी था इस कहानी में कि अंत ऐसा ही हो कि सच्चा प्रेम हो तो ज़रूर मुलाकात होती है, प्रेमी जोड़े मिलते हैं। एक श्रोता ने लिखा भी है कि कभी जिस बरगद की छाँव में बैठ कर वे घंटे बातें किया करते थे, वो बरगद आज भी इतने सालों बाद भी खड़ा है, उसकी शाखाएँ फैल गई हैं, छाया घनी हो गई है, उसके नीचे वो बंसी बजा रहा है और वो दौड़कर अपने पुराने प्रेमी के पास पहुंच गई है, कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। बस वो संवाद जो होता है, मौन की भाषा, वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं और समझ लेते हैं। अब आज के प्रोग्राम का सफ़र पूरा हुआ, सुरीला सफ़र आज बस इतना ही। सफ़र आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान और आज त्रिवेणी में बातें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत साल 2000 में हुई थी, यानी 26 बरस हो गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के। वैसे आपको बता दें कि पूरी दुनिया में 15 से 24 साल की उम्र के लोगों का जो प्रतिशत है वो 16% है, और अगर भारत का देखें तो 15 से 25 साल की उम्र के लोग भारत की कुल आबादी का तकरीबन 54% हिस्सा हैं, यानी कि भारत एक युवा देश है और दुनिया में भी युवाओं की अच्छी खासी तादाद है। ये युवा ही हैं जो दुनिया को बदलते हैं, तरक्की के रास्ते पर ले जाते हैं, नई खोजें करते हैं, नए रास्ते निकालते हैं, नई व्यवस्था बनाते हैं, और ये युवा ही हैं जो दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। पर युवाओं को एक दिशा देने की और जिम्मेदारी का बोध कराने की जरूरत है।

इत्तेफाक की बात है कि 12 तारीख को ही भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, पर अगस्त के महीने में नहीं बल्कि जनवरी के महीने में, क्योंकि वो दिन जो है वो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। यानी राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 अगस्त को। जैसा कि मैंने कहा कि ये युवा ही हैं जो बेहतर दुनिया बना सकते हैं, लेकिन किसी भी पीढ़ी के बुजुर्गों से पूछें तो वो यही कहेंगे कि हमारे जमाने के युवा जिम्मेदार हुआ करते थे, आज के युवा तो दिशाहीन हैं। सवाल ये है कि बदलती हुई इस दुनिया में कितने तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं जो ध्यान भंग कर रहे हैं, पर इन तमाम चीजों के बावजूद अगर आप तमाम क्षेत्रों में उपलब्धियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि युवा आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं। खेलों में हर रोज बनते हुए रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटीज में लगातार ऊंचे अंक प्राप्त करने वाले युवा, इसके अलावा विज्ञान, दर्शन, इतिहास, हर क्षेत्र में युवा नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, नए कीर्तिमान बना रहे हैं, नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि हम इन युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हों, हम उन पर इल्जाम न लगाएं, हम उनकी गलतियां ना निकालें, बल्कि हम उन युवाओं को एक नई चेतना की तरफ आगे बढ़ाएं।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम एक बात और कहना चाहेंगे, और वो बात ये है कि हम सबके भीतर थोड़ा न थोड़ा युवा मौजूद होता है। हम सबके भीतर एक जोश है, जुनून है कुछ कर गुजरने का, और इस युवा तरंग में ही दुनिया उपलब्धियां हासिल करती है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम है वो है विभिन्न परिस्थितियों को पहचानना और युवाओं के जरिए वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना। ये युवा ही हैं जो दुनिया को एक सूत्र में बांध सकते हैं, ये युवा ही हैं जो हर तरह के भेद की दीवार तोड़ सकते हैं, ये युवा ही हैं जो विश्व व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। बस युवाओं पर विश्वास करें और उनके साथ आगे बढ़ते चलें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती

0: परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जाँच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
2: कोविंद जी ने ये काम हम सब के लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया है। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्र ध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है, इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया बल्कि राष्ट्र

0: निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम

0: Sentiment behind them is common. The national flag is the symbol in which every citizen can find a sense of belonging.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
3: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
1: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगतसिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न

0: मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। मेरे हमदम मेरे दोस्त इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में।

వందే మాతరం. ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा. स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी.

शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।

0: फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना थी, सलील चौधरी की धुन थी।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
4: वो कॉमिक क्रिएटर है।
5: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
4: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
5: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
4: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
5: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती।
4: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गर्लफ्रेंड फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में। लिखा था इसे साहिल लुधियानवी ने, धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने।

0: मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये जिद्दी फिल्म का गाना है, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: मैं क्या क्या ना बना, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, दिल बदल

जिद्दी फिल्म का गाना था, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं बहू बेगम फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, रोशन का संगीत है। सुनिए प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे लाल पत्थर फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज में, नीरज की रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत था। हमने उद्घोषणा की थी बहू बेगम फिल्म के गाने के लिए, लेकिन हम माफी चाहते हैं, वो गाना हम नहीं सुनवा सके, हमारे कंप्यूटर जी थोड़े से नाराज थे। बहरहाल अब प्रोग्राम का सफर खत्म होता है, आज्ञा दीजिए ममता सिंह को, नमस्कार।
1: आपको मालूम है ना, आज बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रोग्राम FM लाइफलाइन की रिकॉर्डिंग होगी। बिल्कुल सही। और इस प्रोग्राम में इस बार हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर दीपक बंसल, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी PGI चंडीगढ़। विषय रहेगा बच्चों में अनीमिया और थैलेसीमिया से जुड़ी समस्याएं। इससे जुड़े आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, तो उठाइए ना अपना फोन, डायल कीजिए हमारे नंबर्स बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।

0: ही सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सारी सखियां सहेलियां और श्रोता भाइयों को और सोनाली तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: बिल्कुल आपका जो नमस्कार है सभी ने उसे
2: स्वीकार
1: लिया है और हेल्थ का ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे हैं और हेल्थ का ध्यान रखना सेहत का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि बदलते मौसम में देखिए ना घर घर में हम सुन रहे हैं किसी को नजला हो गया है किसी को
2: खांसी
1: हो गई है कहीं बुखार है तो ऐसे में अगर हम पहले से ही थोड़ा सा अपना ध्यान रखते चलते हैं ना तो ये जो बदलते मौसम में तबीयत जो खराब हो जाती है ये जरा संभल जाती है
2: और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं ना दीपा उन्हें मालूम होता है कि भाई अभी बहुत जगह पे इस तरह की बीमारियां फैली हुई है तो पानी उबाल कर पीना चाहिए या अपना ध्यान रखना चाहिए यानी बहुत सारी सूचनाएं होती हैं बहुत सारी योजनाएं होती हैं तो हमें रोज अखबार पढ़ते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा और ऐसे ही देखो ना ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पे अलग अलग व्यंजन खाने का और बनाने का बड़ा मन करता है। अच्छा चलिए सखियाँ बनाने का भले मन नहीं करता होगा लेकिन खाने का तो करता होगा ना।
2: मेरा तो मन करता है।
1: बिल्कुल तो वैरायटी सबको चाहिए एक विविधता होनी चाहिए ना सिर्फ अपने जीवन में खाने में भी।
2: हाँ और है ना वही तरह के जब हम खाने खाते हैं ना तो बच्चे क्या बड़े बूढ़े सारे लोग ना परेशान हो जाते हैं कि अरे वही बना लिया। तो ओट्स जो होते हैं ना प्रोटीन से भरे होते हैं तो उसके व्यंजन बहुत सारे व्यंजन हमारी सखियों ने हमारे श्रोताओं ने लिख कर भी भेजे हैं।
1: बिल्कुल
2: किसी ने डोसे का लिखा है किसी ने उपमा लिखा है तो किसी ने खीर लिखा है तो आप भी लिख कर भेजिए कि आपके घर में ओट्स के व्यंजन बनते हैं और नहीं बनते तो क्या बनने चाहिए।
1: बिल्कुल और देखिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी लेकिन मेहनत का फिर फल भी तो बहुत मीठा होता है।
2: बहुत मीठा होता है।
1: और जब सारे खुश हो जाएंगे और उस मेहनत का जब रंग निखर के आएगा तो फिर देखिए न सिर्फ हर दिन हमारा जीवन भी सवर जाएगा और यही शब्द है हमारा आज
2: मेहनत। तो आज का है शब्द हमारा विचार आपके इसमें मेहनत है यानी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ बिना मेहनत के हमें बहुत सफलता नहीं मिल सकती।
1: बिल्कुल और आजकल की जो हमारी बेटियां हैं उन्हें लगता है साड़ी पहनने में बहुत मेहनत लगती है लेकिन जो अनुभवी महिलाएं हैं वो कहती हैं तुम जितनी देर में ड्रेस पहनोगी हम उतनी देर में साड़ी पहन लेंगे
2: चट से पहन लेंगे।
1: तो साड़ियों का अपना एक सुंदर संसार है और एक महिला जितनी खूबसूरत साड़ी में लगती है किसी अन्य परिवेश में परिधान में शायद कम लगती है। ये आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा सखियां कि साड़ी पहनना आसान है या ड्रेस पहनना आसान है और अगर आसान ड्रेस है तो खूबसूरत किस में ज्यादा दिखते हैं।
2: और श्रोता भाई भी बताएं कि महिलाएं किस ड्रेस में यानी किस परिधान में ज्यादा सुंदर लगती है।
1: जी
2: तो खंडुआ साड़ी ओडिशा के बारे में हम जानकारी देंगे और हमारी बहुत सारी श्रोताओं ने हमारी बहुत सारी सखियों ने भी इस विषय में मैसेज लिखना शुरू कर

0: दिया है। साथ ही आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो सारे युवाओं को भी हम बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
1: बिल्कुल, उन सभी को उनकी ऊर्जा को सलाम, और उन्हें ये एक सीख भी देते हैं कि अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक पथ पे आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को संवारते चलें।
0: जी,
1: और अब हम क्या करें,
0: गीत सुनते हैं।
1: चलो

0: सोनाली, कहाँ खोई हुई हो संदेशों में?
1: यहाँ आने के बाद में हम दोनों नहीं होते हैं दीपा, हमारे साथ में इतने सारे श्रोता, इतनी सारी सखियाँ जो घर में सुनते हैं और हम उनके संदेश पढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, तो संदेशों के माध्यम से बहुत सारी हमारी सखियाँ इस वक्त हमारे साथ हैं,
1: जुड़ी हुई हैं। और आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस।
0: बिल्कुल,
1: तो युवा जो होते हैं ना, किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य की सबसे मजबूत नींव होते हैं। उनके भीतर असीमित ऊर्जा, कुछ नया करने की ललक और दुनिया को बदलने का साहस होता है। और इसी ऊर्जा और सामर्थ्य को सम्मानित करने और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और ये दिन युवा दुनिया भर के युवाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का दिन है और समाज निर्माण में उनकी भागीदारी को रेखांकित करने का एक साझा मंच है।
0: बिल्कुल सही कहा। और अगर हमारे देश की हम बात करें तो इस संदर्भ में देखा जाए तो ये दिन और भी खास और जीवंत हो उठता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। तो भारत का युवा जो है उसको हम केवल जनसांख्यिकीय

0: लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये नहीं हम बोल सकते, ये आंकड़ा नहीं है वो लोग, ये नहीं हम मान सकते, बल्कि देश के आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक बदलाव का मुख्य कारक भी हमारे युवा हैं।
1: ये तो बात आपने बहुत सही कही दीपा। और आज का भारतीय युवा केवल अवसरों की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और नए विचारों के जरिए खुद अवसर पैदा कर रहा है। अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक या तकनीक से लेकर सामाजिक क्रांति तक भारत का युवा हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और एक देश के युवाओं का ये संगम इस बात का प्रतीक है कि जब युवा सशक्त होता है तो वह न केवल अपने देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाने का भी सामर्थ्य रखता है।
1: बस युवाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सही
1: कि ये जो महत्वपूर्ण वर्ष है ना, ये जिंदगी में बार बार नहीं आते।
0: बिल्कुल, और ये ऊर्जा भी बार बार नहीं मिलेगी, है ना, इसे संगठित करके रखना होता है।
1: तो बस ये जो समय है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई समय का ध्यान रखो, थोड़ा मोबाइल से दूर रहो, थोड़ा पढ़ लिख लो, तो उन बातों को जो युवा ध्यान में रखते हैं ना, उनका जीवन उज्जवल हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: और सबसे जरूर बात है मेहनत।
0: जी बिल्कुल सही कहा। और ये वो सुनहरे वर्ष हैं जहां आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास आजादी है, स्वतंत्रता है, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जिम्मेदारियां हमेशा बढ़ती जाती है, और उस वजह से कई बार अपने सपनों को हमें पीछे छोड़ना होता है क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है। तो आप चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, बशर्ते बस ये ध्यान रखिएगा कि हमारे घर वाले कहीं पे उनकी मानहानि ना हो, या उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर आप अपने गाँव, देश, प्रदेश कहीं से भी बाहर दूर हैं, तब भी माता पिता को ये लगे जहाँ भी हमारा बच्चा है बिल्कुल सही है और एक सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा है।
1: और अपने देश, अपने बड़े बुजुर्ग और अपने घर का नाम रोशन हो, इस बात का युवाओं को ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। अच्छा, एक संदेश आया है, ये पढ़ना चाहती थी सोनाली। इन्होंने आधिकारिक जो थीम है इस साल की वो बताई है। थीम है अलग परिस्थितियां, समान आकांक्षाएं। तो इस विषय पर जोर देता है इस साल का ये थीम कि भले ही दुनिया भर के युवाओं की सामाजिक और भौगोलिक स्थितियां अलग हो, लेकिन उनके सपने और जरूरतें एक जैसी हैं।
1: बहुत सुंदर संदेश लिखकर भेजा है। और आप क्या किया जाए,
0: आज थोड़ी हल्की सी फुहार यहाँ पर, रिमझिम सी बरसात हो रही है, तो चलिए दोस्तों
1: उसे महसूस करते हैं गीत के माध्यम से।

0: तो चलो चलते हैं
1: साड़ियों के संसार में।
0: हाँ बिल्कुल। अच्छा साड़ियों से संदेश भी आया, लेकिन हम पहले जानकारी दे दें कि ये खंडुआ साड़ी होती क्या है। उड़ीसा में इसकी प्रसिद्ध ये साड़ी है, वहाँ की पारंपरिक बांध कला तकनीक से बनाई जाने वाली साड़ी है। वैसे तो उड़ीसा के कई क्षेत्र में बुनी जाती है ये वाली साड़ी, लेकिन मुख्य रूप से कटक जिले के नुआपटना और गंगा मणिबंध गाँव में बुनी जाती है।
1: और दीपा इस साड़ी का आध्यात्मिक महत्व भी है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी के वस्त्र खंडुआ रेशम से ही तैयार किए जाते हैं, जिन पर जयदेव रचित गीत गोविंद के श्लोक भी बुने हुए हैं।
0: और इक्कत तकनीक से इसमें ताने और बाने के धागों को पहले से बांध कर और रंग कर के पैटर्न तैयार किया जाता है, जिसे बंध कला कहा जाता है। और जो दूसरे ट्रेडिशनल जो सिल्क साड़ियां हैं ना, उनकी तुलना में खंडुआ साड़ी काफी हल्की होती है, जिसे पहनना बहुत आसान होता है। इसके सिल्क और कॉटन दोनों में इसे बुना जाता है।
1: और डिजाइन की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से हाथी, मोर, कछुआ, शंख, फूल और मंदिर की आकृति यानी टेम्पल बॉर्डर जैसे शुभ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। और रंगों की बात की जाए तो लाल, पीला, नारंगी और केसरिया जैसे जीवंत रंगों का अधिक इस्तेमाल होता है। और इस विशेष साड़ी के दो और तीन प्रकार हैं, जैसे खंडुआ पाट जो शुद्ध रेशम से बनी साड़ी होती है, इसका उपयोग मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों, त्योहारों, विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है
0: जी। और सूती खंडुआ उसी तरह होती है, लेकिन इसमें शुद्ध कॉटन से बनाई जाती है। ये वाली साड़ी हल्की होती है, ब्रीदेबल यानी कि सांस लेने योग्य। अगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि साड़ी पहन के कुछ भारी सा लग रहा है
1: या चुभ रहा है,
0: वैसा नहीं लगता इसे पहनकर। एकदम आरामदायक होती है ये वाली साड़ी। आप चाहें तो सखियां रोजमर्रा के उपयोग में ले सकती हैं इसको, और गर्मी के मौसम के लिए तो बहुत उपयुक्त साड़ी है ये।
1: और गीत गोविंद खंडुआ, ये खंडुआ का सबसे पवित्र और पारंपरिक रूप माना जाता है। इसके बॉडी या

0: चल पर देवनागरी या ओडिया लिपि में गीत गोविंद के श्लोक बुने जाते हैं। इसे मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ के वस्त्रों के रूप में और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता है। और एक है टसर खंडुआ,
1: इसमें मुझे भी साड़ी में खूबसूरती ज्यादा दिखती है, और सलवार सूट हो या कोई भी ड्रेस हो अगर सलीके से पहना गया रंग उम्र और समय के अनुसार तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। पर साड़ी की बात तो कुछ और निराली है, तो भाई साड़ी जीतती जा रही है, जीत तो साड़ी की हो रही है।
0: और एक सखी ने लिखा है, आज हरियाली अमावस्या है, आज भी महिलाएं खूबसूरत रंग बिरंगी हरी साड़ी चूड़ी में सज धज कर मंदिरों में बाजारों में दिख रही है। साड़ियां चूड़ियां और राखियों की खरीदारी चल रही है। मेहंदी लगवाने की भी भीड़ लगी हुई है। गर्मी है फिर भी सभी को अपनी बारी का इंतजार है।
1: वहीं हमारे एक श्रोता भाई ने लिखा है, जी ये डिपार्टमेंट तो केवल माताओं बहनों का है। भाई बात तो सही है, लेकिन खरीदने तो जाना तो आप ही को पड़ेगा ना। आगे लिखते हैं कि इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, केवल साड़ियों के विषय में सुनकर जानकारी बटोरेंगे। आप सिर्फ जानकारी नहीं बटोरेंगे, इस साल उन्हें दिलाएंगे भी।
0: हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस चाहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि काश साड़ी परिधान पुरुषों के लिए भी होता, पैंट शर्ट तो महिलाओं के परिधान में सम्मिलित हो चुका है, धोती थोड़ा साड़ी से मैच करती है, पूरी नहीं। पर देखा है ना, आजकल साड़ियों से भी ना पुरुष उसके परिधान बनाते हैं, उसके धोती सिलवाते हैं, कुर्ते बनवाते हैं, जैकेट बनवाते हैं। तो पुरानी अगर साड़ी हो चुकी है तो उससे जो हमारे पुरुष भाई हैं वे भी उससे कुछ कुछ जैकेट्स वगैरह धोती वगैरह बनवा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और वो भी कहीं दिखा सकते हैं कि देखिए हमारा भी अंदाज अलग है, निराला है। जैसे कि इस गाने में हमारी हीरोइन देखिए क्या कह रही है।

வந்தே மாதரம். ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: सोनाली, अब एक वक्त हो चला है अंतराल का,
2: तो लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली। और एक मैसेज को पढ़ के ना दीपा मैं थोड़ी भावुक हो गई।
1: क्यों?
0: इतना सुंदर मैसेज है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरी माताजी के देहांत को 19 साल हो गए हैं, पर आज भी मेरी माताजी के नाम से हर साल एक बार एक साड़ी खरीदता हूँ और यथा उचित प्रसंग नहीं तो उनके जन्म दिवस पर किसी जरूरतमंद बुजुर्ग महिला को ये साड़ी दान में दे देता हूँ। निजी तौर पर जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ तब मेरी माताजी की साड़ी को ओढ़ के सो जाता हूँ, तो मुझे मेरी माताजी की कमी महसूस नहीं होती। इस विषय को आज चर्चा में लाने के लिए आप सभी और विविध भारती का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ।
1: जी, ये कुछ इसी तरह की भावनाएं शायद हमारी बहुत सारी सखियों की भी होती होगी। हम जो हमारे प्रिय हैं, जो हमसे दूर चले जाते हैं, उनकी कोई पहनी हुई चीज सदा हमारे पास रहती, तो एक धरोहर के रूप में
0: हमारे साथ रहती
1: और याद उनकी ताजा बनी रहती है। तो आपने भी ये अपना अनुभव शेयर किया तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं।
0: और भाई देखिए ना, कभी कभी दीपा ऐसा होता है ना कि बहुत सारी साड़ियों के सेल भी लगे होते हैं, उसकी भी सूचना हमें अखबारों से मिल जाती है
1: जी,
0: कि फला फला कंपनी की जो साड़ियां हैं वो बहुत सस्ती और बहुत अच्छी होती है, तो उसका हमारे शहर में सेल लग गया, उसमें 50% ऑफ है, तो कभी 25% है, और खासकर बारिश के मौसम में बहुत साड़ियों के सेल लगते हैं।
1: सोनाली, आपका इशारा समझ गए हम, मान गए भाई कि अखबार रोज पढ़ना बेहद जरूरी है,
0: और उसमें सिर्फ सिर्फ साड़ी के बारे में नहीं पढ़ना है। नहीं तो ऐसा है कि उस पन्ना खोल लिया, देख लिया कि कहाँ सेल लगा है।
1: हम महिला यही करती है ना, सबसे पहले उस पन्ने पे जाती है जहाँ पे एग्जीबिशन कहाँ चल रही है, सेल कहाँ चल रही है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं और फिर घर में कहते हैं भाई शनिवार रविवार को हम तो बिल्कुल व्यस्त रहने वाले हैं।
0: नहीं, यानी रंग बिरंगा जो पन्ना होता है ना वो महिलाओं को ज्यादा भाता है। पर ऐसे नहीं है, गृहिणियों को भी सारा पेपर सारा अखबार रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, अखबारों से हमें बहुत बहुत नए नए विषयों की जानकारी मिलती है और बहुत कई बार हम सचेत भी हो जाते हैं दीपा, कि अगर देखिए ना वो जो दुर्घटना घटी, अगर उसमें ऐसा होता, यानी कोई मेन होल में गिर गया है, मोबाइल में लगा हुआ था लड़का बच्चा जो था, तो हमें बाहर निकलते वक्त मोबाइल ऐसे मोबाइल में झुक कर देखते नहीं जाना है, हमें रास्ते से चलते वक्त सावधानी से जाना है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे ऐसे वाकया होते हैं कि जो हम अखबारों के कारण हम सचेत हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और कहीं हमारे शहर के किसी और क्षेत्र में जहाँ बहुत दूर है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें सब कुछ पता चलता रहता है, यहाँ तक कि देश विदेश की सारी मुख्य जानकारियाँ भी हम प्राप्त कर पाते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं तो हमें कुछ बाहर के बारे में ना पता चले, ये ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ के लिए सतर्क और सचेत रहना आज के ज़माने में सबके लिए, उम्र कोई भी हो, बेहद ज़रूरी है।
0: वैसे दीपा, अखबार केवल कागज़ के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होता है, बल्कि वर्तमान समय का सजीव दस्तावेज होता है। इसमें मौजूद हर तरह का समाचार हमें समाज, देश और विश्व स्तर से जोड़कर रखता है। और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं वे केवल घटनाओं से परिचित नहीं होते, बल्कि बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी सीख जाते हैं। और ऐसा होता है ना कि सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ जब हम अखबार के पन्ने खोलते हैं तब मानो ज्ञान की एक नई खिड़की खुल जाती है, कहीं विज्ञान की नई उड़ान है, कहीं खेल जगत की नई विजय गाथा।

0: है, कहीं संस्कृति की सुगंध है तो कहीं समाज की चुनौतियों का आईना हमें नजर आता है।
1: ये इसी बात पर देखो एक संदेश आया है, ये संदेश में हमारे श्रोता भाई कहते हैं कि मैं सुबह सुबह हमेशा चाय पीते पीते अखबार पढ़ता हूँ और दोपहर में आराम से क्रॉसवर्ड, जो उसमें सेक्शन होता है जिसमें शब्द खाना पूर्ति करना होता है, वो करता हूँ। इससे मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होती है और मूड भी फ्रेश होता है।
0: ये बहुत अच्छी आदत है, ये ना खासकर बुजुर्गों को भी ये करना चाहिए। जो क्रॉसवर्ड होते हैं ना, उससे हमारा दिमाग तेज रहता है, उससे हमारा दिमाग चलता है। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होता है, दिमाग की नसें थोड़ी सी सिकुड़ने लगती हैं, तो क्रॉसवर्ड जरूर हमें बढ़ती उम्र के साथ करना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि स्कूल में किताब पढ़ने का शौक हुआ स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें, कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उनको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया जो अब तक साथ है। कितनी अच्छी बात है। वही एक साथी कहते हैं कि अखबार पढ़ना, सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन के प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था। मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया इंग्लिश पेपर पढ़ो, इससे इंग्लिश अच्छी होती है। बस वो आदत दिनचर्या में शामिल हो गई है। बहुत लोग सुबह की चाय के साथ अखबार देखते हैं, जो एक बेहतरीन दिनचर्या है, जो ना सिर्फ देश दुनिया की खबरों से जोड़ता है बल्कि मानसिक विकास में भी मदद करता है।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अखबार जो भाषा का मूक शिक्षक है, इसकी शब्द संपदा हमारी अभिव्यक्ति को निखारती है, विचारों को परिपक्व बनाती है और दृष्टिकोण को व्यापक भी करती है। और संपत्ति लेख जो हम अगर पढ़ते हैं तो उससे हम तर्क करना सीखते हैं, जबकि प्रेरणादायक समाचार जीवन में आशा और उत्साह का संचार करते हैं। और देखो ना सोनाली, आज सोशल मीडिया के तेज बहाव में सूचनाएं क्षण भर में आती जाती रहती हैं, पर लेकिन अखबार सत्य, संतुलन और विश्वसनीयता का दीपक बनकर हमारे विश्वास को प्रकाशित करता है।
0: एक हमारी सखी ने भी लिखा है कि मुझे संपादकीय पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसमें तार्किक और गंभीर सोच विकसित होती है। स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के बजाय प्रिंट या अखबार पढ़ने से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ जाती है। वर्षों से सुबह का अखबार निश्चित और शांत होकर पढ़ना चाहती हूँ। सुबह का काम निपटाकर 9 बजे के बाद नाश्ता करने के बाद मैं पेपर पढ़ती हूँ और ज्ञानवर्धन के साथ मेरा बहुत समय अच्छा व्यतीत होता है। किसी कारणवश अगर दिन में पेपर छूट जाए तब भी मुझे समय मिलता है तो रात में मैं पेपर जरूर पढ़ती
1: हूँ। बिल्कुल, और ये संपादीय जो संपादकीय लेख जो है इसे पढ़ना बेहद जरूरी है बच्चों को भी, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव और मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, तो इसमें ये एडिटोरियल सेक्शन आपको बहुत काम करता है, बहुत मदद करता है जानकारी हासिल करने के लिए। और कहीं पर कुछ ऐसा सेक्शन आता है कि आपको ऐसे या निबंध कहीं पर लिखना है, तो ये खंड आपको आसानी से उसको पार करने में मदद करता है।
0: और आप क्या करना है,
1: हमें तो गीत सुनना है,
0: सुनते हैं गीत।

0: तो भाई अखबारों से यारी करनी है और थोड़ा ये मोबाइल में भी बैठना जरूरी है, लेकिन स्क्रोलिंग से उतनी नहीं। अगर ज्ञान की जरूरत उसके द्वारा लेनी है तो वो भी लेना जरूरी है। लेकिन एक देखिए संदेश यहाँ पर आया है, हमारे श्रोता ने लिखा है कि अखबार पढ़ना, ये सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था, और मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया था कि इंग्लिश पेपर पढ़ो, तो इंग्लिश इससे हमारी अच्छी हो गई। उसके अलावा एक और संदेश आया है, ये कहता है कि स्कूल में किताबें पढ़ने का शौक हुआ और स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उसको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया, जो अब तक साथ है।
1: एक साथ ही लिखते हैं, अखबार पढ़ना ये ऐसी आदत है, जिस दिन अखबार की छुट्टी होती है उस दिन बहुत खालीपन लगता है, वो दिन अधूरा लगता है। जो समय अखबार पढ़ने का होता है समय कटता नहीं। मेरा समय दोपहर का है अखबार पढ़ने का, जब काम से फ्री होकर बैठती हूँ तो अखबार पढ़ती हूँ, और इसी समय सखी सहेली कार्यक्रम आता है तो उसको भी सुनते हुए अखबार पढ़ते हुए। अखबार हम जो पढ़ते हैं हमको वही अखबार अच्छा लगता है। जिस दिन गलती से कोई दूसरा डाल जाए तो पढ़ लेते हैं तो मज़ा नहीं आता है उस अखबार। मैंने अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी अखबार भी शुरू किया था, दोनों बस स्पोर्ट की खबर पढ़ लेते थे बस, बाकी कुछ नहीं। अखबार पढ़ने की आदत सभी को होना चाहिए, जिससे शहर देश विदेश के समाचार मिलते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है।
0: बिल्कुल, और ज्ञान बढ़ाने के लिए मेहनत करना जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें, और यही हमारा आज का शब्द भी है। तो बहुत सारे विचार आए हैं, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत सफलता की कुंजी है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कठिन श्रम के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता। किसी लक्ष्य को पाने या काम को पूरा करने के लिए किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक प्रयास, इसे लोग पुरुषार्थ या श्रम भी कहते हैं, जो सफलता की तरक्की की नींव है। मजदूरी, खेलकूद या खेती जैसे काम जिसमें शरीर की ताकत लगती है, मानसिक श्रम पढ़ाई योजना बनाना या बौद्धिक कार्य जिसमें दिमाग का उपयोग होता है।
1: और साथी कहते हैं
0: जी
1: पढ़ना चाह रहे
0: हैं। बस इसमें एक बात और इन्होंने कही है कि इंसान हर कठिनाई का सामना करना सीखता है, मेहनत से व्यक्तित्व का विकास और मजबूती भी आती है।
1: एक कहते हैं कि कहते हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कपाट को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है। यानी इन्होंने पूरा जीवन का सार ही लिख दिया इस छोटे से संदेश में।
0: सही बात है। एक संदेश और ये कह रहा है कि मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत में जगमगाता है तकदीर का सितारा। इतिहास गवाह है कि मेहनत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, बिना मेहनत जीवन में सफलता नहीं, मेहनत सफलता की ऊंचाइयों तक हमें पहुंचने में संभव कर देता है हमारा रास्ता।
1: एक सखी ने लिखा है, हमारी दोनों सखियां मेहनत करके इतने सुंदर और अच्छे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती हैं, फिर उन्हें सजाकर प्रस्तुत करती हैं, हम सभी मिलकर सुनते हैं, उनके बारे में दो शब्द कहते हैं, अंत में हम और आप दोनों ही खुश होते हैं। मेहनत करने के बाद जो मिलता है उसकी खुशी का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए मेहनत तो जरूरी करनी चाहिए। कभी कभी परिणाम देर से मिलता है पर मिलता जरूर है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और धन्यवाद कहते हैं।
0: बिल्कुल धन्यवाद उन्हें। और देखिए मेहनत सिर्फ सखियां नहीं, आप भी उतनी ही करते हैं।
1: कितने सुंदर मैसेज लिखते हैं।
0: बिल्कुल, कभी कभी तो ऐसा लगता है इस मैसेज को लें, किस मैसेज को छोड़ें, ये भी असमंजसता हमारे सामने आ जाती है। और मेहनत के बगैर तो कहीं कोई सुंदरता आ ही नहीं सकती, जैसे कि इस गाने में ये सुंदरता है।

0: दीपा
1: जी,
0: हमारे इतने सारे श्रोताओं ने, सखियों ने मेहनत पर भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि मेहनत सफलता की पहली सीढ़ी है, मेहनत के बिना कोई भी सपना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। किसान तपती धूप में खेत में पसीना बहाता है तभी धरती सोना उगलती है। विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई करता है तभी सफलता उसके कदम चूमती है। कलाकार बार बार अभ्यास करता है तभी उसकी कला में निखार आता है। यानी सफलता अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे अनगिनत छोटे छोटे प्रयास छिपे होते हैं। याद रखिए, किस्मत का रास्ता दिखा सकती है, अवसर दरवाजा खोल सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का काम मेहनत ही करती है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह से एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि कभी कभी हम मन में कुछ बातें ठान रहते हैं और कि अमुक काम करेंगे, पर सिर्फ मन में ही सोचते ही रहते हैं और उस कार्य को करते ही नहीं। कार्य सिर्फ सपना बनकर रह जाता है, यानी मेहनत नहीं करने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाम मनोरथे, यानी कि भाई तभी कोई भी काम पूरा होगा जब आप उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे।
0: और एक साथी कहते हैं कि बिना मेहनत के कोई भी कार्य संभव नहीं है, और इस कड़ी मेहनत से जो प्राप्त होता है उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। परिश्रम से मिली सफलता में जो सुकून है वे कहीं और नहीं है। बेशक सफलता देर से मिले पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनाने से ज्यादा समय महल बनाने में लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश है, ये कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा।

0: क्या होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कबाड़ को खोलती है। मेहनत ही सफलता का रहस्य है।
1: और दीपा, जब हम कोई व्यंजन बनाते हैं तब भी हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ता है,
0: बात तो बिल्कुल सही कही।
1: क्योंकि ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि सिर्फ ये तो 2 मिनट में बन जाएगा। हाँ, बनने में भले ही उसे 2 या 4 या 5 मिनट लगते हैं, पर उसके पीछे जो तैयारी होती है ना, उसमें 1 घंटा चाहिए। कि उसमें जब हमें प्याज काटना होता है, मिर्ची काटना पड़ता है, फिर अगर कुछ हरी धनिया है तो उसे साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, फिर उसके बाद में फिर बर्तन कौन से, सब चीज़ के जिस चीज़ में बनाना है हमें वो बर्तन अलग अलग चुनने पड़ते हैं, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो यानी मेहनत के सिवा हमारा व्यंजन भी नहीं बन सकता।
0: बिल्कुल सही कहा भाई, मेहनत हम करते चलेंगे लेकिन साथ में कैसे बनाना है वो भी सीखते चलेंगे। तो ओट्स की एक रेसिपी आई है सोनाली, ये इसमें सामग्री दिया है, ओट्स को लेना है आधा कप, पानी या दूध ले सकते हैं आप 1 से 1.5 कप तक। सब्जियां लेनी है, प्याज, टमाटर, गाजर या मटर बारीक कटी हुई, आपके पसंद की और भी सब्जियां आप बढ़ा सकते हैं। तड़के और मसाले के लिए घी या तेल ले लें, जीरा, हल्दी, नमक और लाल मिर्च। बनाने की विधि है कि कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें, जीरा और प्याज डालकर हल्का भूनें, बारीक कटी सब्जियां और टमाटर भी डालें, हल्दी, नमक और मसाले डालकर इसको मिलाएं, ओट्स डालकर 1 मिनट तक और भूनें। अब पानी या दूध डालकर उबले इसमें उबाल आने दें, 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। ये थोड़ा सा गाढ़ा होता चलता चला जाएगा, ये ओट की तासीर, आप जितना जितना पानी डालेंगे वो सोखता चला जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए एक तरह की खिचड़ी की तरह ही हो गई। अब इसमें ओट्स के साथ आप चाहें तो थोड़ा हुआ भीगा हुआ, इसी रेसिपी में भीगी हुई दाल डाल सकते हैं, जैसे मोगर की दाल या मूंग की दाल की जो छिलके वाली मूंग की दाल है वो भी डाल सकते हैं। तो ये अपने आप में एक पूर्ण आहार बन जाएगा।
1: और एक साथी ने लिखा है कि ओट्स को कढ़ाई में भून ले, उसे ठंडा कर ले, उस भुने हुए चने के साथ उसे पीस ले। आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है, और इसी आटे से आप नमकीन पराठे और रोटी बना सकते हैं। ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज लगती है। देखिए ना, ओट्स के बहुत सारे व्यंजन बनाए, ओट्स का चीला बनाया जा सकता है। ओट्स को सूखा ही हमें पीस लेना है, उसमें फिर आप थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा मिला दे, उसमें अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट डाल दे, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना के, और उसके चीले बना सकते हैं, गरम गरम भी अच्छे लगते हैं। उसके बाद में उस इसी मिश्रण में अगर आप थोड़ा सा रवा डाल के, दही डाल के उसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दे, और जब बनाना हो तब उसमें फ्रूट सॉल्ट डाल के उसका हम ढोकला भी बना सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो एक और संदेश देखिए, ये एक छोटी सी रेसिपी आई है सोनाली, कहते हैं कि ओट्स का चीला बनाने के लिए आप 1 कप ओट्स लें और 1 कप बेसन, दोनों मिक्स कर लें। इसमें लौकी, प्याज, टमाटर, हरी धनिया, आप चाहें तो गाजर वगैरह भी कीस के कद्दूकस करके डाल सकते हैं। घी लगाकर इसको चीले बनाएं और हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और जब ये चीले बनाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा घर में बच्चों को कि आपने इन्हें ओट्स का चीला खिला दिया है ना।
1: बहुत अच्छा लगता है ओट्स, और उसकी खीर भी बहुत अच्छी बनती है। कि घी में थोड़ा सा ओट्स को भून लिया और उसके बाद में उसमें दूध डाल दिया। अगर आप उसमें शक्कर नहीं डालना चाहते हैं तो उसमें खजूर है ना, खजूर को थोड़ा सा घी में ऐसा नरम करके और उसे मिक्सी में से चला के उसकी जो पेस्ट है, खजूर पेस्ट डाल के उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं। तो बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। ऐसी पौष्टिक चीजें जब घर में बनती है ना, और जब घर उस खुशबू से महकता है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल सही। और ओट्स का सत्तू बनाना भी बताया है हमारे एक श्रोता ने। कहते हैं कि ओट्स को कढ़ाई में भून लें, उसे ठंडा कर लें, इसे भुने हुए चने के साथ पीस लें। आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है। इस आटे से आप नमकीन पराठे बनाइए या रोटी बनाइए, ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज है।
1: और अब क्या करना है?
0: देखिए क्या करते हैं।

0: है कोई नहीं पार, दबा के है कोई नहीं पार, कैसी तू बनती है री, आई आई
1: छोट दरिया की।

कभी हाथ न आए कभी दिल में समाए, काहे सतौती है री आई हाय।

0: दीपा हमारे एक साथी लिखते हैं कि साथे ओट्स में कुछ भी मिक्स नहीं होता, ये केवल जई ओट्स शुद्ध रूप होते हैं। हालांकि स्वाद और सेहत के लिए लोग इसमें दूध, फल और मसाले मिलाते हैं। मीठे ओट्स में मिलने वाली चीज़ें, उन्होंने कहा कि उसको पकाने भिगाने के लिए दूध या पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसमें केला, सेब, स्ट्रॉबेरी या आम, मेवे या बीज, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, कद्दू के बीज, या मीठेपन के लिए उसमें शहद, गुड़ या मेपल सिरप डाल दिया जा सकता है, और इस तरह से स्वादिष्ट ओट्स की रेसिपी बन सकती है।
1: तो आज तो बहुत सारे ओट्स बनाने के तरीके हमने भी सीख लिए हैं।
0: बहुत सारे सीखे, श्रोताओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो, अब वक्त कहता है कि आज तो हमें लेना होगा विदा।
0: पहले श्रोताओं को धन्यवाद कह देते हैं, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और अब लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का
0: नमस्कार।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग।
1: मैं एक रेडियो स्टेशन गया, एफएम रेडियो तब नए नए आए थे। जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूँ कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था। कमल शर्मा थे, आप थे, आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था। तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा। फिर जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मन्ना देखी आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था। उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था ऑडिशन देने लेकिन आदमी काम का। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे। ऑडिशन में अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिने। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
2: और दिन बढ़ गए उसके बाद।
1: नहीं नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीने अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीने हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं। जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए, मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे। मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया।

0: या अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट,
0: हाँ वो चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: तो यहां से रेडियो शुरू हो गया
0: जी,
1: है ना। और ये यात्रा मुंबई तक कैसे आई?
0: रेडियो से रेडियो। हाँ, मुझे मुंबई आना ही था, क्योंकि क्या हो रहा था, बैंगलोर में धीरे धीरे जो वहां की प्रादेशिक भाषा है कन्नड़ा, उसका संगीत बढ़ रहा था, जो कि बढ़ना ही चाहिए था। वहाँ कंपटीशन भी बढ़ रहा था, नए स्टेशन आ रहे थे, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे मुंबई चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बैंगलोर में भी नेशनल प्रोग्रामिंग हैंडल करता था उस स्टेशन में, और यहाँ से मैं बैंगलोर से वॉइस करके उनको भेजता था मेरी वॉइस हिंदी में। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जगह शायद मुंबई है। तो हमारे स्टेशन में उस जमाने में लाफ्टर चैलेंज बड़ा चला हुआ था, तो रेडियो में भी एक ऐसा लाफ्टर चैलेंज का रेडियो वर्जन चल रहा था हमारे स्टेशन में, जिसके जज थे विनय पाठक। तो मैंने विनय पाठक का नंबर मेरे पास था, क्योंकि उनका मैं सैटरडे के सैटरडे रिकॉर्ड किया करता था। उसके अलावा जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था, और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा मैं बेहतर तरीके से समझता था। तो इस बीच मुझे मन्ना दे साहब का एक पूरा 1.5 घंटे का कार्यक्रम प्रोड्यूस करने मिला, जिसमें मन्ना दे साहब खुद आए थे। तो वो मेरे लिए मेरा पहला जो कहना चाहिए सेलिब्रिटी मोमेंट था वो,
1: बिल्कुल।
0: हाँ, मन्ना दे साहब से मिलना, मधुशाला के CD पे उनसे साइन कराना, और प्रोग्राम के बाद जब मैं उनके साथ बैठा कुछ आधे घंटे, उनके साथ थोड़ी बात बात की, तो उन्होंने बोला यार ये सब सवाल तो अंदर करने चाहिए थे, अंदर वालों ने तो किया ही नहीं। तो उससे और मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बूस्ट आ गया। उसके बाद में उनके साथ बराबर टच में बना रहा। मेरे ख्याल से 1 मई को उनका जन्मदिन होता है,
1: और
0: हर 1 मई के 1 मई में उनको कॉल किया करता।
1: क्या बात है, मैं भी
0: तो और मुझे लगता है कि उनके जैसा गायक ना कोई आया ना कोई आएगा। तो ये हुआ था। इसके अलावा जितनी भी फिल्में रिलीज होती थी या कोई कलाकार आ रहा होता था, तो मुझे वो जिम्मेदारी दे दी गई थी कि भाई तू इनका इंटरव्यू कर लिया कर, तुझे जो जो पूछना है पूछ लिया कर, और बाद में पैकेज करके हम लोग इसको चला लिया करेंगे स्टेशन। तो मुझे एक बार आशा भोसले जी का इंटरव्यू करने मिला, और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने आधे घंटे इंटरव्यू किया, और जो फोन कटा मैंने देखा, मैंने रिकॉर्ड बटन दबाना ही मैं रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया था। और वो बड़ी खुश थी कि अरे तुम्हारी तो रिसर्च बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मैंने ऑल इंडिया रेडियो सुन के ये रिसर्च आई है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार से डांटा, फिर बोली अभी 10 मिनट, अभी आधे घंटे नहीं मिलेंगे। फिर वो दोबारा हमने रिकॉर्ड किया।
1: मुझे लगता है कि यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनाई जाए, तो बोलिए कौन सा गाना होगा?
0: तो मन्ना दे साहब का मेरा सबसे प्रिय जो गीत है, मेरे ख्याल से सबका ही होगा, जब हम मन्ना दे साहब के बारे में सोचते हैं, तो तू प्यार का सागर है,
1: सीमा फिल्म,
0: शंकर जयकिशन,
1: हाँ बिल्कुल,
0: शैलेंद्र।
1: सुनते हैं ये गाना
0: जी।

0: ये सब एडवेंचर चल रहे थे, इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बम्बई आ जाना चाहिए. बम्बई में एक टीवी चैनल था, अभी भी है, उसमें फिल्मों के स्पूफ चला करते थे, फुल्ली फालतू.
1: बिल्कुल.
0: तो वो मुझे बहुत पसंद था, वो मैं रेडियो में कर रहा था. मेरे पास एक मिमिक्री आर्टिस्ट था, मैं था, हम दोनों मिमिक्री करवर के कुछ एक
1: बना रहे,
0: 10-12 मिनट का प्रोग्राम बना लेते थे संडे के संडे. तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो अगला कदम है वो यही है कि अब मैं वहां जाऊं, उस चैनल में जाऊं और मैं बोलूं मैं ये करता हूं. तो मैंने मेरे सैंपल्स बनाए, वॉइस ओवर्स किए, ये वो करके पैकेज करके उनको भेजा. मुझे वहां से बुलावा भी आ गया, तो मैं यहां आया. यहां आया तो जिसने मुझे बुलावा भेजा था उसने नौकरी छोड़ दी थी. तो मैं यहां आया और मैं भटकता रहा 3 दिन बंबई में. विनय पाठक को मैंने कॉल किया, विनय जी ने मुझे बुलाया. वो लोग द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो क्या करते थे, तो उन्होंने बोला यहाँ आओ, राइटर्स से मिलो. वरुण ग्रोवर वो लिखा करते थे,
1: बिल्कुल उस जमाने
0: राहुल और वरुण की जोड़ी हुआ करती थी उस टाइम. राजेश देवराज हेड राइटर होते थे. तो अब राजेश देवराज बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, लेकिन उस समय उनसे मिलना नहीं हो पाया था मेरा. मैंने सिर्फ सुना था कोई देवी नाम के एक लेखक हैं जिनसे तुमको मिलाना है, लेकिन वो है नहीं. मेरा बड़ा एक रहस्यमय ऐसा किरदार बन गया था मेरे दिमाग में, देवी कौन होंगे. बाद में मुझे पता चला राजेश से मिलने के बाद कि यही है देवी. तो और विनय सर बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब जरा भी मुझे दिक्कत नहीं आई. उन्होंने बुलाया, मैं स्टूडियो गया, मेरी लाइफ का मैंने पहला शूट देखा. किकू शारदा थे वहां पे, बहुत सारे लोग थे, और मुझे लगा यार ये जगह है जहां मुझे आना है, ये चीज मुझे करनी है. वो कभी हो नहीं पाया, कॉमेडी शो में कभी नहीं कर पाया विनय सर के साथ में. हम मिलते रहे, 2-3-4 बार मिले उसके बाद. अभी तो मुझे लगता है उनसे मिले मुझे 20 साल हो गए. तो वो सब करके मैं यहाँ से गया और मुझे लगा कि मुझे बम्बई चल पड़ना चाहिए, बैग पैक कर लेने चाहिए बैंगलोर से. तो बैग पैक किए, यहाँ एक दूसरा रेडियो स्टेशन था जहाँ से मुझे ऑफर थी और ठीक ठाक ऑफर थी. तो मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया और मैंने कहा मैं रेडियो करता हूँ. तो रेडियो में फिर बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हुई. सुनील ग्रोवर के साथ मैंने बहुत काम किया उस समय में, लल्लन नाम का एक हमारा शो हुआ करता था. वो जो सारी चीज़ें मैं टीवी में करना चाहता था वो मैं फिर रेडियो में करने लगा और मेरा पेट भर गया उस चीज़ से. 4-5 महीने में मैंने कहा अगर यही करना है तो क्या मजा नहीं आएगा. हाँ, ये वही सर्कल वाली बात होगी ना कि उसी सर्कल में आप फिर से भागने लग गए, तो अब इससे ज़्यादा क्या होगा. तो फिर ऐसा लगा कि मुझे एनिमेशन करने का बहुत मन था और किसी के थ्रू, एक जान पहचान के थ्रू मैं वहाँ पहुँचा. मुझे करीब 8-9 घंटे बाहर बिठा के रखा गया स्टूडियो के, बिठा के नहीं रखा गया बोलना चाहिए उसको, वो लोग बिजी थे और मैं बिना खाए पिए मैं बैठा रहा बाहर. और फिर वो आए, वेंकटेश गायकवाड़ नाम था उनका, है अभी भी, वेंकटेश गायकवाड़ नाम है उनका. उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था. हाँ, वेंकटेश
1: वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर,
0: बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर. तो वेंकटेश गायकवाड़ अपने आप में एक लेजेंड, लेकिन मुझे ही नहीं पता था. तो और वो जीनियस, मतलब मैड जीनियस जो बोलते हैं ना, मैड जीनियस.

0: तो वो रैंडमली आए, बोले कुछ खाया तूने? मैंने कहा मैंने खाया है, तो सैंडविच खाते हैं चलो। उन्होंने सैंडविच खाते खाते बात की, उन्होंने बोला तू क्या कर सकता है? तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। तो वो मुंबई के साथ मेरा पहला साक्षात्कार। फिर उन्होंने बोला तू करना क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे और गालियां दी। उन्होंने कहा फिल्म मेकर क्या, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है? तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखना भी चाहता हूँ, और मौका मिला तो प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया। उन्होंने बोला ये सब हम भी चाहते हैं, लेकिन हम
1: नौकरी कर रहे हैं,
0: नौकरी कर रहे हैं हम लोग, तू यहाँ क्या करने आया? अगर तेरा ये सपना है तो जा वहाँ पे बन किसी का थर्ड असिस्टेंट, उठा सबके जूते चप्पल, वहां से शुरू होती है जर्नी, हम तो ये करके आए हैं। उन्होंने काफी बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया हुआ था उस समय तक, तो ये करना पड़ेगा, ये रास्ता है। मैंने कहा ये तो नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि रेडियो में मैं बहुत अच्छा काम करके आ चुका था, कॉमिक्स में ठीक ठाक काम कर चुका था, तो दम्भ नहीं था, गर्व था अपने काम पर। तो ये भी था कि यार ये मैं पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने देखे किस तरीके से लोग असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ बर्ताव करते हैं, मैंने कहा ये तो नहीं करूँगा मैं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाख चमड़ी मोटी सही लेकिन इतनी मोटी अभी भी नहीं हुई है। और हम छोटे शहर से आते हैं तो हमारा गर्व का जो परसेंटेज है थोड़ा ज़्यादा भी होता है। तो मैंने कहा ये तो नहीं करूँगा मैं, तो आप बताओ क्या करना है? तो उन्होंने कहा प्रोमो बनाना जानता है तू? तो मैंने कहा जानता तो नहीं लेकिन बना लूँगा मैं। तो उन्होंने एक एनिमे आता था उस समय में, उसका मुझे एक दो तीन एपिसोड दिए, उन्होंने कहा कि इसका प्रोमो बना के लिया। तो मुझे ना एडिटिंग आती थी ना कुछ आता था, मुझे साउंड आता था क्योंकि मैं रेडियो से था। तो मैंने सबसे पहले किया कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसको मैंने अशोक कुमार की आवाज़ में खुद ही रिकॉर्ड किया, और फिर उसके ऊपर एक एडिटर के साथ बैठ के उसको एडिट लगाया एक रात में, और दूसरे दिन सुबह मैं पहुंच गया वापस। मैंने कहा ये प्रोमो हो गया, इतनी जल्दी? मैंने कहा मुझे आना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, अगर मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो मुझे रेडियो में फंसे रहना पड़ेगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक आवाज़ किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। अरे ठीक है, तू हायर हो गया। तो इस तरीके से मैं टीवी में आ गया। बहुत बहुत घिसाई हुई टीवी में भी, ऐसा नहीं है कि चीज़ें आसान थी, मगर ये था कि मज़ा था उस काम में, बहुत मज़ा था। और लोग सब, हम लोग जैसे ही थे, सब पागल थे, सब यंग लड़के थे, और सबके दिमाग अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी को म्यूज़िक बहुत अच्छा समझता था, किसी को एडिट बहुत अच्छा समझता था, मैं थोड़ा बहुत वॉइस करता था, लिखता था, मुझे एडिट नहीं समझ में आता था। तो ये सब हम लोग एक दूसरे के पूरक हो गए, और वो किया मैंने, वो करीब 1-1.5 साल किया मैंने।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: और जावेद जाफरी वाला शो कैसे आया?
1: वो तो बहुत बाद, वो तो इसके थोड़े बाद में, तो तो वो उसकी भी बड़ी मजेदार सी कहानी है। तो ये करते करते क्या हुआ कि पूरी टीम बाहर चली गई और एक नया चैनल आया। इस नए चैनल में अलग तरीके की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि मैं प्रोमोस करता था और मैं बहुत आलसी हो चुका था तब तक, तो मैं प्रोमोस बनाना बंद कर चुका था। मैं लिखता था सिर्फ, मैं प्रोमोस लिख देता था और जाके सिर्फ एडिट चेक कर लेता था जो मेरे दोस्त बना रहे होते थे उसका। तो इन्होंने मुझे बोला यहाँ एडिट कर, यहाँ भी आ जा प्रोमो करने के लिए। तो मैं वहाँ प्रोमो करने के लिए गया, वहाँ बातचीत चल रही थी, एक वो लोग एक थ्रिलर बना रहे थे, पीरियड थ्रिलर, दरिबा डायरीज। तो दरिबा डायरीज का ये हो रहा था कि आइडिया बहुत सॉलिड था लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उनको वैसी नहीं मिल रही थी। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे कोई थ्रिलर लिखने वाला मिल जाए तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं लिख के दूँ। तब तो मैंने लिखा नहीं था।

0: कोई भी
1: ऐसी बोल दिया।
0: हाँ मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा क्या है, ऑडिशन देना है ना। तो उन्होंने कहा तू लिखेगा, तू तो बच्चों का शोज वगैरह करता है, तू तो बच्चों के चैनल से आ रहा है। तो मैंने कहा उससे आपको क्या मतलब है, मैं लिख के देता हूँ, नहीं पसंद आए तो मत यूज़ कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे शर्लक होम्स बहुत पसंद है, मुझे पीरियड सेटिंग बहुत पसंद है, दरिबा मुझे समझ में आता है। तो मैंने एपिसोड नंबर 16 लिखा उसका, जो उसका पायलट बना बाद में।
1: ओके
0: हाँ, उनको इतना पसंद आया कि उसमें कोई नोट्स नहीं था। अभी भी मैंने वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है जिसमें लिखा है कि दिस इज हाउ स्क्रीन प्ले शुड बी रिटन।
1: वाह वाह,
0: ये नोट के साथ मेरे पास वो वापस आया। वो एक्चुअली आना नहीं चाहिए था मेरे पास वापस, वो कोई बीच में एग्जीक्यूटिव था जिसने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया ये सोच के कि इसमें नोट्स होंगे। और मैंने कहा यार इसमें तारीफ आ गई है गलती से। तो अब उसके बाद उसके जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये था कि तू और लिख ले इसमें। तो मैंने 3 एपिसोड्स लिखे, 2 एपिसोड किसी और के लिखे हुए डॉक्टर किए, किसी एपिसोड में डायलॉग्स लिखे। तो उनको मेरा लिखा हुआ काम पसंद आने लग गया जो मैं शो के लिए कर रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि तुम कुछ शो पिच करना चाहोगे क्या हमको। तो मेरे पास एक शो था जो मैं, वो काफ़ी बड़ा शो था, वो या तो एनिमेशन होता या कॉमिक्स होता, लेकिन इस पर्टिकुलर चैनल में बड़े शोज बन रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास

0: कि तू और लिख ले इस पे। तो मैंने 3 एपिसोड्स लिखे, 2 एपिसोड किसी और के लिखे हुए डॉक्टर किए, किसी एपिसोड में डायलॉग्स लिखे, तो उनको मेरा लिखा हुआ काम पसंद आने लग गया जो मैं शो के लिए कर रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि तुम कुछ शो पिच करना चाहोगे क्या हमको। तो मेरे पास एक शो था जो मैं, वो काफ़ी बड़ा शो था, वो या तो एनिमेशन होता या कॉमिक्स होता, लेकिन इस पर्टिकुलर चैनल में बड़े शोज़ बन रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास 2 शोज़ हैं, मैं आता हूँ आपको पिच करता हूँ। तकदीर ऐसी थी कि मैंने जो पहला शो पिच किया, हम एंटर कर रहे थे स्टूडियो में, मीटिंग रूम में, 20 सेकंड में वो शो चैनल ने खरीद लिया मेरे से। 20 सेकंड मैं अंदर भी नहीं पहुंचा था, मैं बैठा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम लोग ये कर रहे हैं, दूसरा सुना भी मत, हम यही करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो अभी सोच के चल रहा था कि 3 महीने तो जदोजहद में गुजरने वाले हैं, ये सारा शॉर्टकट हो गया एकदम से।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझसे पूछा गया कि एक्टर्स कौन रहेंगे इसमें, तो मैंने एक्टर्स के नाम दिए कि ये नसीर साहब कर सकते हैं। विलन के लिए मेरे दिमाग में हमेशा जावेद जाफरी का नाम था, तो वो जावेद भाई का मैंने नाम लिया। कि तो उन्होंने बोला कि जावेद इज डूइंग अ शो विद अस, हमारे साथ एक शो कर रहे हैं जावेद भाई, लेकिन हमें लगता है कि इसको थोड़ा एडिट की जरूरत है, तू देखेगा क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस उनको मेरे पे आ गया था, एक तो उनको ये पता था कि मैं रेडियो से आ रहा हूँ, मुझे सिनेमा समझ में आता है, मुझे पुराने फिल्म और पुराने गानों की समझ है, ये सब उनको पता था। तो मुझे उनका एक एपिसोड दिखाया गया, डिस्को डांसर का एपिसोड था।
1: बिल्कुल, वो सिनेमा की बातें कर रहे थे प्रॉपर, वही शो की बात हो रही है,
0: वही शो की बात हो रही है। तो डिस्को डांसर का एपिसोड था जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे जावेद भाई के 2 शोज, एक शो उनका हुआ करता था फ्लैशबैक और एक काउंटडाउन शो हुआ करता था, ये 2 मैं देख के बड़ा हुआ था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो मैं रेडियो में कर रहा था,
1: right.
0: अचानक मेरे सामने ऐसे थाली में सजा के एक शो आता है और बोलते हैं ये जावेद जाफरी कर रहे हैं, तुम क्या करना चाहोगे इसमें। तो फिर तो मैं लालची हूँ, मैं सब करना चाहता था। मैं लिखूंगा भी, मैं डायरेक्ट भी करूँगा, मैं एडिट पे भी बैठूंगा, और नसीब से वो चीज़ मेरे प्लेट में आके गिर गई। तो मैं जावेद भाई को मिला जाके, उनको लगा ये नया लड़का है, इसको क्या ही पता होगा। तो उन्होंने कुछ बहुत ऑब्स्क्योर फिल्मों के रेफरेंस के साथ में मेरे साथ डिस्कशन शुरू किया। तो उसमें एक फिल्म है जिसका नाम है फिल्म ही फिल्म।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।
0: उन्होंने ऐसे बात शुरू की कि राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें एक डॉग है जो राज कपूर से बात करता है। मैंने कहा वो राज कपूर की फिल्म नहीं है, वो एक्चुअली फिल्म ही फिल्म नाम की फिल्म है जिसमें मोन्टाजेस हैं अनमेड फिल्मों के फुटेज लेके। तो उन्होंने बोला तुमको पता है। तो मैंने कहा मुझे पता है, मैंने देखी है फिल्म। ऐसे 2-3 बहुत भयानक अंदरूनी फिल्मों की उन्होंने बात की, वहां हमारा आइस ब्रेक हो गया, वहां उनको लगा कि
1: आता है इसको,
0: इसको कुछ तो पता है, अगर सब पता नहीं भी है तो। तो उन्होंने भी फिर टेस्ट दिया मुझे, धर्मवीर मनमोहन देसाई की फिल्म है, तो उनको धर्मवीर का एपिसोड करना था। उन्होंने कहा इसका तू स्क्रिप्ट लेके आ, फिर देखते हैं। तो मैंने धर्मवीर देखी कुछ 6-7 बार, मुझे बहुत मजा आया, पहले भी देखी हुई थी। और मनमोहन देसाई साहब के बारे में मुझे पता था, मुझे बहुत सारी उस फिल्म के बारे में ट्रिविया वगैरह पता थे। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके साथ में थोड़ा बहुत जो एनिमेटेड जोक्स हैं वो जोक्स डाले उसमें, कि कैसे टिकर आएगा, टिकर में जब उस समय में बाघों की गिनती कम हो गई थी, 1411 बच्चे थे इंडिया, तो उसमें वो शेर को प्राण मार देते हैं। तो हमने ऐसे काउंटडाउन रखा था कि जितने शेर मरते हैं ना, हम 1411 से कम करते हैं ग्राफिक्स में।
1: अच्छा,
0: तो हाँ, तो ये सब पंचेज उसमें मैंने भरे, और ये पंचेज थोड़े नए जमाने के थे ना, क्योंकि हाँ टिकर विकर नहीं थे पहले, जब फ्लैशबैक वगैरह आ रहे थे तो टिकर में ये सब मस्ती नहीं हो सकती थी, एनिमेशन नहीं हो सकता था। तो मैंने उनको बताया ये ऐसे करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो समुराई सोर्ड है तो हम उसका एक टेलीशॉपिंग नेटवर्क का एड बना देंगे कि वो समुराई नहीं बोलते ना प्राण साहब, समुराई कला बोलते हैं। तो मैंने कहा समुराई कला कैसे सीखे, रैपिड एक समुराई कोर्स का एक हम ये बनाएंगे एड। हाँ, तो ऐसे करके मैंने उनको 5-6 गैग्स बताएगी, ये गैग्स हम लोग हर ब्रेक के पहले करेंगे। तो एक फेक एड आएगा, उसके बाद असली एड,
1: असली एड आएगा।
0: तो उनको आइडिया जम गया, वो आइडिया मेरे लिए लैंडमाइन साबित हुआ, क्योंकि वो आइडिया उनको इतना जम गया कि वो अब हर एपिसोड में हमें करना पड़ता था। तो किसी एपिसोड में मिलते हैं ब्रेक के बाद था ही नहीं हमारे शो में, 26 एपिसोड में, 26 एपिसोड, हर एपिसोड में 4 ब्रेक्स, तो 100 ऐसे एड्स
1: लिखने,
0: इन आउट, तो 200 एड्स हमने बनाए। तो वहां से उस शो की शुरुआत हुई, फिर वो शो मैंने लिखा भी, को डायरेक्ट भी किया, एडिट भी किया, उसके साथ ग्राफिक्स भी किए, उसमें एनिमेशन भी किया, VFX भी किया, मतलब उस शो में शायद ही सेट में झाड़ू भी लगाई है। तो उस शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरा हाथ नहीं लगाओ। और वो करते करते एक

0: मतलब जावेद भाई के लिए मन में एक बहुत यू नो रेस्पेक्ट तो है ही, लेकिन वो एक रेस्पेक्ट के साथ साथ ना प्यार भी बहुत बढ़ा, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उनको बतौर इंसान जाने का मौका मिला। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि वो भी मुझे लगता है कि मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, छोटे भाई के जैसा मुझे हमेशा वो ट्रीट करते हैं। मेरे एक कॉल पे वो मेरे लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं आके। तो वो जो एक रिश्ता बना मेरे ख्याल से उस शो से बना, वो
1: बिल्कुल
0: शो बनता रहा 1.5 साल तक। तो 1.5 साल तक मेरे ख्याल से मैं मेरे घर में कम रहा हूँ और उस सेट पे ज़्यादा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये शो बना, ये शो बनते बनते उस चैनल के साथ ये हुआ कि उनके बजट्स ख़त्म हो गए, तो जो मेरा शो उन्होंने खरीदा था वो तो बना नहीं। हाँ,
1: ओ
0: मैंने उनसे वापस खरीदा, जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे मैंने उनको वापस किए और शो वापस खरीदा, क्योंकि मैं वो शो कहीं छोड़ना नहीं चाहता था। और मेरा ये भी मानना रहता है कि चीज़ों को लीगली लॉफुली ठीक से क्लीन करके उनको क्लोज करना चाहिए, उनको लटकने नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ हम जो राइटर्स हैं और जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी में इतना उलझे होते हैं ना कि वो लीगैलिटीज को नहीं समझते हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और
1: वो
0: कानूनी दांव
1: लूज एंड्स
0: से
1: छूट जाते
0: वो
1: हैं जो
0: लूज
1: बाद
0: एंड्स
1: में
0: ऐसे
1: बहुत
0: ऐसे
1: भारी पड़
0: छूटते
1: जाते
0: हैं
1: हैं।
0: जो बाद में अपना मतलब आप दो लोगों के बीच ऐसी कड़वाहट है जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो हमेशा ये अच्छा है कि आप जाएं और उस लूज एंड को बंद कर दें,
1: बिल्कुल
0: या तो आपके हाथ में हो या सामने वाले के हाथ में हो, मन में कड़वाहट ना रहे, रिश्ते बने रहें। तो मैंने वो चैनल के पास जाके उनसे वापस खरीदा, वो उनको पैसे वापस किए। जावेद भाई के साथ मैंने फिर दूसरा शो किया, तो दो शोज हमने किए। उसके बाद काफ़ी काम किया हमने साथ में। ये करते करते एनिमेशन तो चल ही रहा था, तो एनिमेशन में मैंने बहुत काम किया, बहुत इन द सेंस कि बहुत वो शोज किए जिन पे मुझे बहुत गर्व है। तो वो कुछ 3-4 साल का एक कालखंड है जिसमें मैं विविध भारती भी आता था वाणी कोर्स करने, और एक फैंटेसी शो था जिसपे मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, जावेद भाई का एक शो था और दो एनिमेटेड शोज थे। तो टाइम ही नहीं होता था, मैं घर पे ही नहीं होता था। और मतलब ये पर्सनल बात है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो क्रिएटिव लोग हैं कई बार पागल हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल रहा होता है, उस चक्कर में अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे इस बीच स्ट्रेस लेवल्स, नींद बराबर नहीं हो रही है, आराम बराबर से नहीं हो रहा है, लगातार भाग दौड़ है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत कम उम्र में डायबिटीज़ हुई है इस वजह से, क्योंकि काम इतना था, चीज़ें इतनी हो रही थी, चारों दिशाओं में आप भाग रहे थे कि अपने लिए समय नहीं था। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों को अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य है जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। प्रोजेक्ट्स क्या हैं, वो
1: बिल्कुल
0: आते हैं और जाते हैं।
1: यस, सही बात है। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और गाने नहीं सुने। बातचीत को यहां पर रोकते हैं आलोक, और एक गाने की जगह बनाते हैं। चूंकि जावेद जाफरी का जिक्र चल रहा है, तो एक ही गाना है जो जावेद जाफरी की सबसे बड़ी पहचान है,
0: उनका पहला गाना
1: मेरी जंग का।
0: मेरी जंग का, मेरे ख्याल से उससे पहले डांसिंग सिंगिंग विलन कोई आया ही नहीं था मेरी जंग के
1: बिल्कुल
0: पहले।
1: बिल्कुल,
0: तो बोल बेबी बोल
1: वो सुनते हैं।
0: जी।
2: वेलकम फ्रेंड टू द शो दैट नेवर एंड्स। आई हैव टेकन द चांस टू मेक यू डांस। यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव द बीट। सो देन व्हिच बीट वुड यू लाइक? दोस्तों, कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रॉम्बा?
3: नो।
2: सांबा?
3: नो।
2: Rumba?
3: No.
2: Samba?
3: No.
2: Tequila?
3: No.
2: Tango?
3: No.
2: Charleston?
3: No.

0: आलोक, ये तमाम चीजें चल रही थीं और जाहिर है कि उसके बाद काम आगे बढ़ा, तो आगे के कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताइए।
1: शोले की 40वीं वर्षगांठ थी 2015 में। मुझे शोले के एनिमेटेड वर्जन पर काम करने मिला, जिसका मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी था और राइटर भी था। कुछ हिस्से मैंने डायरेक्ट भी किए थे। मेरे लिए ये बड़ा खुशी का सबब था। ये फिल्म मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। और जब इसका प्रमोशन शुरू हुआ इस एनिमेटेड फिल्म का, तो कई जगहों पे सलीम साहब का एक छोटा सा कोट है, फिर जावेद साहब का एक छोटा सा कोट है, उसके आसपास मेरा एक छोटा सा

0: वाह वाह,
1: तो वो मेरे लिए बड़ा, उसको बोलते हैं किक, तो मेरे लिए बड़ी किक थी वो देखना। ये करते करते मैंने ग्राफिक मीडिया ज्वाइन किया, जहाँ मुझे सबसे पहला जो शो मिला वो था अमिताभ बच्चन साहब का पहला एनिमेटेड शो।
0: वाह वाह,
1: जो मैंने डेवलप भी किया, लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया। वो करते करते मुझे अमित जी के साथ काफी समय बिताने का मौका मिला। मैंने करीब उनके साथ 3 से 4 महीने डबिंग किए, और जो चीज मुझे वहां से सीखने को मिली वो मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ रहे, वो है समय का पाबंद होना,
0: जिसके लिए वो बहुत मशहूर है,
1: बहुत ज्यादा। वो 6 बजे की रिकॉर्डिंग सुबह करते थे, 5:55 वो स्टूडियो पे होते थे, तो हम लोगों को भाग के समय पे पहुंचना पड़ता था। अगर उन्होंने 6 बोला है तो 5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे, वो 6:01 पे कभी नहीं आए,
0: बिल्कुल,
1: इतने महीनों में। दूसरी चीज है जो उनकी अपने काम के प्रति लगन है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ये बात बार बार बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक बिल्कुल अलग तरीके का अनुभव था कि मैं बच्चन साहब के सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने उनसे 7, 8, 9, 10 टेक भी मांगे हैं, तो मुझे 10वां टेक तक मिला है। उन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि क्यों मांग रहे हो। हाँ, ये बोला है कई बार कि मुझे एक बार बता दीजिए आपको कैसा चाहिए, तो मैं, आप मुझे बोल के बताइए, मैं एग्जैक्टली वैसा बोल के बता दूंगा। तीसरी चीज जो मैंने वहां सीखी वो ये थी कि जितने टेक्स फाइनल होते थे, अब तो डिजिटल है तो आप टेक्स को फाइनल मार्क कर लेते हैं, लेकिन बच्चन साहब एनालॉग स्क्रिप्ट के ऊपर में लगातार लिख रहे होते थे कौन सा टेक मैंने फाइनल बोला है, 6th टेक, 2nd टेक, 1st टेक। जब डबिंग खत्म हुई, उन्होंने मुझे पूरे स्क्रिप्ट का ऐसा पुलंदा दिया, उन्होंने कहा कि इसमें सारे टेक्स लिखे हुए हैं। मैंने कहा सर हम मार्क कर रहे थे। बोले फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गलती की गुंजाइश ना रहे। तो उतना डिटेल रखना। चौथी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी, पहली बार मुंबई में मेरे से किसी ने देवनागरी में स्क्रिप्ट मांगी थी।
0: वाह वाह वाह वाह, वरना
1: सब सब सब रोमन में पढ़ते हैं।
0: जी,
1: बच्चन साहब ने देवनागरी में मांगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरे संवाद हैं वो देवनागरी में होंगे तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ के बेहतर तरीके से अदा कर सकता हूँ। वहाँ एक बहुत अच्छी चीज हमारे साथ ये हुई कि उन्होंने पहले 2 दिन जब डबिंग कर ली, उसके बाद वो बाहर निकलते निकलते उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ के नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन बहुत सालों से यहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ के नहीं है, क्योंकि मुझे हिंदी में कोई भी वर्तनी में त्रुटि नहीं मिली है। तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारी टीम के लिए, हमारे लिए। मेरी सिस्टर ने ये सारी देवनागरी में ये संवादों को देवनागरीकरण किया था रोमन से। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं अगर देखें तो, लेकिन ये इतनी छोटी चीजें हैं नहीं। तो ये सीखने की चीज थी। एक समय था जब मैं 11 बजे की मीटिंग के लिए घर से 11:30 बजे निकलता था। लेकिन एक बार अमित जी के साथ ये पूरा शो करने के बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी भी समय पे नहीं पहुंचने वाला काम कर रहा हूँ। मैं आमतौर पे कोशिश करता हूँ या तो मैं समय पे पहुंच जाऊं, या मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले लोगों को बता दूंगी मैं समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले बहुत बहुत केयरलेस था मैं। तो ये चीजें आप देखें तो यही चीजें हैं जो इन लोगों को इतना बड़ा बनाती हैं। और मैं जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये सब क्लिशे है, सब हजार बार आपने ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन मेरे लिए वो 1-on-1 पर्सनल चीज है जो उनसे सीखने की थी।
0: ऑफ कोर्स,
1: तो वो किया हमने। अस्त्रा फोर्स नाम था उस शो का, साइंस फिक्शन था, और बहुत अच्छा उस पर हमें रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद दूसरा शो जो हमने किया वो SS राजामौली के साथ किया। बाहुबली आई थी तब, पहली बाहुबली आई थी, वो दूसरी बना रहे थे। तो हमने उनको एक एनिमेटेड शो पिच किया कि दोनों बाहुबली के बीच में एक एनिमेटेड शो आ जाएगा, तो लोगों के बीच में वो एक उत्साह बना रहेगा माहिष्मती के बारे में। तो वो भी एक सीखने वाली बात थी कि हम जब पहुंचे तो राजामौली साहब ने हमको 3 घंटे का समय दिया था, और वो 11 बजे आने वाले थे। वो 11:30 बजे आए, उन्होंने बाथरूम स्लीपर पहनी हुई थी, एक हल्की सी टी शर्ट पहनी हुई थी, जो अगर आप देखें तो नितांत साधारण कपड़ों में स्लीपर पहन के वो अंदर आए, जिन्होंने 1.5 साल पहले देश की सबसे बड़ी हिट फिल्म डायरेक्ट,
0: बिल्कुल, बिल्कुल
1: पूरे धूल में सने हुए थे वो, क्योंकि वो कोई तो एक्शन सीन देखने गए हुए थे और पूरा सेट का जायजा लेकर आए थे। उनके पिताजी थे वहां पे और वो दोनों तेलुगु में बात करते थे, फिर राजामौली साहब हम लोगों को ट्रांसलेट करके बताते थे। फिर उनको पता चला कि मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने बोला इधर आओ इधर आओ मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। उन्होंने अपने फोन पे मुझे अमर चित्र कथा के कुछ पैनल्स दिखाए, जिनमें से डायलॉग्स उन्होंने बाहुबली में इस्तेमाल किए थे और कुछ डायलॉग्स वो आगे बाहुबली में इस्तेमाल करने वाले थे। उसमें एक शिवाजी का डायलॉग है छत्रपति शिवाजी महाराज पे, जो अमर चित्र कथा है, उसके 2 संवाद थे।

0: ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो वो उस दिन मुझे पता चला कि राजा मौली असल में बहुत बड़े कॉमिक बुक फैन है। तो वो एक जो चीज़ थी, उस चीज़ ने हमारे बीच का जो आइस ब्रेकिंग था बहुत ईजी कर दिया। तो वही है, जैसे अरेबियन नाइट्स में होता है, आप छोटी छोटी चीज़ें करते चलते हैं और वो आगे जाके
1: बड़ी
0: जर्नी
1: हो
0: में
1: जाती
0: कहीं
1: है।
0: कहीं काम आती हैं।
1: बिल्कुल
0: तो ये जर्नी में ऐसा लग रहा था कि कॉमिक्स कहीं छूट रही है, मगर फिर कॉमिक्स इस तरीके से वापस मेरे जीवन में आ जाया करती थी। तो इसकी वजह से हमें वो शो करने को मिला, हमने वो शो किया। पहला सीज़न मैंने डेवलप करने में को डेवलप किया था लोगों के साथ में। इसके बाद कुछ और एनिमेशन की चीज़ें हुई। एनिमेशन छोड़ के फिर मैं बाहर आया। मैं एनिमेशन से थोड़ा सा एक रास्ता आ गई थी एनिमेशन में, तो मैं उससे बाहर आना चाहता था। दूसरी चीज़ थी कि मैंने मेरे जो हीरोज़ हैं जिनके साथ काम करने का एक सपना होता है हमारा, वो मैंने करीब करीब पूरा कर लिया था। मैंने राजा मौली साहब के साथ काम कर लिया है, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम कर लिया, स्टैनली के साथ काम कर लिया है। तो अब इससे बड़ा क्या, या तो इससे बड़ा कुछ हो।
1: बिल्कुल
0: शोले कर ली थी, तो इससे नीचे जाने का कोई मतलब
1: मतलब
0: नहीं
1: नहीं
0: बनता
1: था।
0: था। तो मुझे लगा कि अब इंडस्ट्री बदलनी चाहिए मुझे, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, फिर मैं वो साइकिल में दौड़ता रहूँगा। तो मैंने लाइव एक्शन में हाथ आजमाना शुरू किया। मैं निर्देशक बनना चाहता था, तो मैंने कहा कि मैं निर्देशन करूँगा। इस बीच मैंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी बहुत पहले, तो वो फिल्म की स्क्रिप्ट घूम रही थी स्टूडियो स्टूडियो। वो 2018 के आसपास एक स्टूडियो ने ले ली और उन्होंने बोला इसको वेब सीरीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक मिडिल क्लास ह्यूमर था। मुझे ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्में बहुत पसंद हैं, तो ये उस स्पेस में था और उस समय तक कोई मिडिल क्लास ह्यूमर कर नहीं रहा था, तो बहुत रिस्की माना जाता था ये। अब तो क्या है कि बहुत सारे शोज़ आ गए
1: ज्यादा
0: हैं,
1: हो रहे
0: बहुत सारी
1: हैं।
0: चीज़ें आ गई हैं। उस समय में बहुत रिस्की माना जा रहा था, और तकदीर से मुझे वो डायरेक्ट करने भी मिला। और मुझे कुछ मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर्स हैं जिनको डायरेक्ट करने मिला मुझे, तो मैंने डायरेक्ट किया। फिर मुझे लगा कि, और वो हुआ क्या कि मेरे डायरेक्ट करते करते में वो सीरीज़ जो है पहले 6 एपिसोड की थी, फिर उन्होंने उसको 12 बना दिया, फिर उसको 24 कर दिया। अब 24 एपिसोड मैं लिखूं भी और डायरेक्ट करूं वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो पहले 6 एपिसोड करके मैंने वो सीरीज़ लिखी और धीरे धीरे करके मैं लाइव एक्शन की तरफ मुड़ने लगा।
1: इस सीरीज का क्या नाम था?
0: इस सीरीज़ का नाम है बब्बर का टब्बर। नाम क्योंकि मैंने नहीं दिया है तो आप मुझे जज ना
1: ठीक है।
0: करें।
1: इन दिनों क्या चल रहा है?
0: इन दिनों एक शो है जो मैं लिख रहा हूँ, लिमिटेड शो है, 5 एपिसोड का वो लिख रहा हूँ। एक फिल्म लिखी है जो एक बड़े स्टूडियो ने ले ली है। एक फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद मैं उसको लिखना शुरू करूँगा, मगर उसकी कहानी मेरे पास है तो मुझे मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा समय मुझे उसको लिखने में लगेगा। एक कॉमिक्स अभी अभी ख़त्म किए करके जो अभी मुंबई में लॉन्च हुई थी, वो एक फिल्म पर बेस्ड कॉमिक है। वन नाम की एक फिल्म आ रही है, तो उसका एक स्पिन ऑफ कॉमिक है वो, तो वो काफ़ी बढ़िया लॉन्च हुआ अभी पिछले हफ्ते। मैं चाहता हूँ इस साल मैं 2 किताबें और करूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक मेरी कॉमिक है जो किसी भी समय इस साल आ जाएगी, वो बन के रेडी है। हाँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जुलाई अगस्त तक आ जाएगी वो किताब। इसके अलावा मुझे पता नहीं, कुछ और छूट रहा हो तो।
1: यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: मुकद्दर का सिकंदर,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: टाइटल ट्रैक, कल्याण जी
1: बोलिए।
0: आनंद जी हिंदी वर।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये गाना सुनते हैं।

0: आलो, क्या आपको लगता है कि कॉमिक्स का दौर अब बहुत सुनहरा दौर बीत चुका है?
1: जो मेरे अंदर का कॉमिक्स प्रेमी है वो इसको कभी नहीं मानेगा। लेकिन कॉमिक्स या किसी भी मीडियम का दौर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीतता है। ये एक साइकिल है, चक्र है, तो ये ख़त्म होता है और फिर आता है। तो जैसे भारत में जो फैंस थे उन्होंने अपने या तो पब्लिकेशन शुरू किए हैं या किताबें बनानी शुरू की हैं, हम भी उनमें से एक हैं। हमने भी अपनी एक कॉमिक बुक कंपनी शुरू की है, तो उसमें आइडिया ये था कि हम वो किताबें करेंगे जो हम पढ़ना चाहते हैं, और हमें पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं फिलहाल, तो वो कर रहे हैं। हम बच्चों के लिए किताबें कर रहे हैं और बहुत अच्छा रुझान है। और एक दूसरी चीज़ जो कॉमिक्स के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है वो है कॉमिक्स का अडेप्टेशन शोज़ में, फिल्म्स में, एनिमेशन शोज़ में। और मुझे लगता है कि वो दौर हमारे यहाँ करीब करीब आ चुका है। अगर अमेरिका भी देखें तो मार्वल या डीसी को अपनी पहली फिल्म बनाने के पहले, सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70

0: के दशक के अंत में आई है, 77 या 78 में, तो करीब 40 साल लगे, है ना। स्पाइडरमैन 1963 या 62 का है, 63, और पहली स्पाइडरमैन 2002 में आई है, तो इतना समय तो लगता है, 40 साल का समय तो लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉमिक्स उद्योग है वो अपने 40वें वसंत में प्रवेश कर चुका है करीब करीब। तो अब दो चीज़ें हैं, एक तो जो अब नए फिल्म मेकर्स हैं या जो नए क्रिएटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ये कॉमिक्स पढ़ के आए हैं,
1: बिल्कुल,
0: वो फैंस हैं पहले, क्रिएटर्स बाद में। बहुत लोगों का ऐसा है कि उनका सपना है कि एक नागराज पे कॉमिक बने या डोगा पे कॉमिक बने,
1: चाचा चौधरी पे शोभा।
0: हाँ,
1: मतलब कई
0: डोगा डोगा की तो मैंने भी लिखी है फिल्म, एक ड्राफ्ट तो मैंने भी लिखा है, तो वो बनी नहीं, लेकिन चाचा चौधरी पे शो बन गया है, लेकिन चाचा चौधरी पे मुझे लगता है कि फिल्म बन सकती है। चाचा चौधरी और राका बहुत अच्छे किरदार हैं जिन पे कुछ बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन पे मुझे लगता है कि चीज़ें आज नहीं तो कल बननी शुरू हो जाएंगी, मेरी जनरेशन तो ये फिल्में देखेगी।
1: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया।
0: तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दौर चला गया है, मुझे ये लगता है कि इस मीडियम को थोड़ा सा इवॉल्व होने की ज़रूरत है, जो इवॉल्व वो हो रहा है। बस ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का दौर है।
1: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करें कि ये चीज़ें जल्दी सामने आएंगी। आलोक, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी बातें की।
0: शुक्रिया यूनुस भाई, मैं जैसा कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए एक अलग तरीके का मोमेंट हो गया है, क्योंकि मैं स्कूल में था तब से मैं आपको सुनता आ रहा हूँ, आपसे मिलना भी होता रहा है, मैं यहाँ आके मैंने वाणी कोर्स भी किया है तो मेरे लिए घर वापसी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ, और क्या कहूँ मैं,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं
0: जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
3: आज के मेहमान।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई।
3: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष

0: सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। संसद परिसर में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृह मंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें केवल जवाबदेही चाहिए। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने व्यापक विचार विमर्श के लिए विधेयक को दोनों सदनों के सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर जली हुई नकदी मिलने से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने इस वर्ष मई में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। श्री बिरला ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए समिति का गठन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने तथा भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग $4 ट्रिलियन की है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में किए गए मुक्त व्यापार समझौते 38 विकसित देशों को कवर करते हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि परियोजना हाथी हाथियों की रक्षा, उनके आवासों के संरक्षण और हाथियों तथा समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में हाथियों की सुरक्षा के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और AI आधारित अलर्ट, लोगों और हाथियों की सुरक्षा के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली बाढ़ और खाइयां तथा किसानों को फसल नुकसान के लिए समय पर मुआवजा देने संबंधी उपाय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आइए अब मिलकर आनंद लेते हैं कुछ फिल्मी गीतों का। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में लावारिस फिल्म का ये गाना। संगीत है कर...

आइए अब सुनते हैं स्वातन फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत है उषा खन्ना का और बोल हैं सावन कुमार के।

लीजिए अब सुनिए मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में, बोल है अनजान के और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

इसी के साथ फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हेलो नमस्ते आदाब मेरे दोस्तों, मैं हूं आरजे चेतन और आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। क्या होता है फर्स्ट एड, जानिए फर्स्ट एड से जुड़ी पूरी जानकारी इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा किसी भी इमरजेंसी जैसे दुर्घटना की स्थिति में समस्या की पहचान और सहायता प्रदान करने का पहला कदम है। फर्स्ट एड में सामान्य और जीवन को बचाने वाली तकनीक शामिल होती है। प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड को लोग कम से कम इक्विपमेंट और बिना मेडिकल अनुभव के ही प्रदान कर सकते हैं। यह किसी मेडिकल उपचार मेडिकल ट्रीटमेंट का हिस्सा नहीं है और ना ही डॉक्टर की सलाह और ट्रीटमेंट की जगह ले सकती है। इसमें आपको जब तक पीड़ित व्यक्ति को मेडिकल हेल्प नहीं मिल जाता है तब तक सामान्य प्रक्रियाओं और कॉमन सेंस का प्रयोग करके स्थिर रखना होता है ताकि उसकी जान बच सके। फर्स्ट एड न मिलने पर व्यक्ति की लाइफ कैसे प्रभावित होती है तो सुनिए। किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना के बाद व्यक्ति को सही समय पर फर्स्ट एड मिलना बहुत जरूरी है। फर्स्ट एड न मिलने से प्रभावित व्यक्ति के जीवन पर असर होता है। सही समय पर व्यक्ति को फर्स्ट एड मिलने से व्यक्ति को ठीक होने में कम समय लगता है। हर दुर्घटना बीमारी या चोट लगने पर तुरंत हॉस्पिटल जाना संभव नहीं होता है। ऐसे में अगर आपको तभी फर्स्ट एड मिल जाता है तो आपकी आधी परेशानी दूर हो सकती है। जैसे मान लो किसी बच्चे को कोहनी में नील आया, अगर कोई व्यक्ति इसके प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड के बारे में जानता है जैसे आइस पैक का प्रयोग या सही बैंडेज लगाना आदि, तो उसकी समस्या काफी हद तक ठीक हो सकती है। कई गंभीर स्थितियों में भी रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाना मुश्किल होता है, तब तक फर्स्ट एड बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर उसे फर्स्ट एड प्रदान कर दिया जाए तो उसकी जान बचा ली जा सकती है और जटिलताओं को रोका जा सकता है। फर्स्ट एड का पहला लक्ष्य होता है उस जीवन का संरक्षण करना जिसे आपातकालीन जरूरत है ताकि उसे खतरे से बचाया जा सके। फर्स्ट एड का दूसरा लक्ष्य है प्रभावित व्यक्ति को किसी भी जोखिम से बचाना। चोट या किसी भी अनदेखे मामले के जटिल बनाने बचने के लिए यह जरूरी है। प्राथमिक चिकित्सा तभी दी जाती है ताकि प्रभावित व्यक्ति की रिकवरी जल्दी हो सके। आपके द्वारा पूरे किए गए कुछ स्टेप्स रिकवरी के संभावना को बढ़ा सकती है। ये किसी के जीवन को बचाने की कुंजी है। कोई घटना होने के तुरंत बाद कार्रवाई करने से जोखिम कम हो सकता है। फर्स्ट एड देने वाले व्यक्ति खुद शांत रहना बेहद जरूरी है ताकि वो प्रभावित व्यक्ति और उनके प्रियजनों को तनाव के स्तर को कम कर सके। इससे न केवल आप स्थिति को कंट्रोल कर पाएंगे बल्कि आपके सही निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी। फर्स्ट एड के साथ ही तुरंत मेडिकल सहायता की जरूरत पड़ती है। इस बात को सुनिश्चित करें कि मेडिकल प्रोफेशनल तुरंत आए और स्थिति को संभाले। इससे पहले कि कोई मेडिकल प्रोफेशनल आए, कंडीशन को स्थिर करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा जरूरी है। प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड की प्रक्रिया को इस तरह से पूरा किया जाता है। कॉन्शियसनेस के लिए जांच, एयरवेज खोले यानी सांस लेने की जांच करें, यदि आवश्यक हो तो सीपीआर करें, सर्कुलेशन की जांच करें, ब्लीडिंग की जांच करें, अधिक रक्तस्राव को नियंत्रित करें। इमरजेंसी फर्स्ट एड में बेसिक फर्स्ट एड शामिल है जो जीवन के लिए खतरा हो सकती है। इसमें फोकस एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन इमरजेंसी पर और इसकी रोकथाम पर रहता है। स्टैंडर्ड फर्स्ट एड सबसे सामान्य तरीका है। इसमें इमरजेंसी फर्स्ट एड की सभी चीजें जैसे घाव की देखभाल, स्थिर गर्दन और रीढ़ की चोटों का ख्याल और बहुत भी कुछ कवर किया गया है। त्वचा का कोई हिस्सा पर खरोच आ गया हो तो त्वचा हल्की से कट गई है तो उस भाग पर दबाव डाले। दबाव अपनी उंगलियों से सीधा ना डाले, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। आप उसे सैनिटाइजर डेटॉल या गर्म पानी से क्लीन करें, फिर पट्टी बांधे या बैंडेड लगाए। अब ऊपर से अपनी उंगलियों से दबाए। ध्यान रहे कि पट्टी टाइट से बांधी हो। किसी एक्सीडेंट या चोट लगने पर अधिक ब्लीडिंग हो सकती है। अगर किसी का खून बह रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण है इस ब्लीडिंग को रोकना ताकि पीड़ित व्यक्ति को कोई नुकसान न हो। जब तक मेडिकल हेल्प न मिले तब तक रोगी का ध्यान रखें। जब तक ब्लीडिंग कम न हो।

हो जाए या रुक न जाए, घाव पर से दबाव न हटाए। अगर रोगी बेहोश होने लगा या पीला पड़ जाए तो इसका कारण शरीर में अधिक मात्रा में खून बह जाना है। ऐसे में तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत है। कई बार चोट के बाद रोगी शॉक में चला जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस प्रक्रिया को दोहराएं। रोगी को आराम से लिटाएं। हृदय और मस्तिष्क में एक स्थिर रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन को सुनिश्चित करने के लिए रोगी के पैर धड़ से ऊपर रखें। ध्यान रहे कि रोगी को पर्याप्त हवा मिलनी चाहिए। अगर रोगी को अधिक

एक स्थिर रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन को सुनिश्चित करने के लिए रोगी के पैर धड़ से ऊपर रखें। ध्यान रहे कि रोगी को पर्याप्त हवा मिलनी चाहिए। अगर रोगी को अधिक ब्लीडिंग हो रही है तो घाव को न धोए। धोने से घाव को ठीक होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। दिल का दौरा पीड़ित व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक और डरावना हो सकता है, इसीलिए जब तक मदद नहीं मिलती फर्स्ट एड रोगी की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपको लगता है कि किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है तो आप उसकी सुरक्षा के लिए जो भी मैं आप कह रहा हूँ इस लम्हे प्रोग्राम में उसे ध्यान से सुने और फॉलो कीजिए। रोगी को नीचे बिठाए और उसे आराम महसूस कराए। रोगी के कपड़े ढीले कर दे। यदि उसने टाई पहनी है तो उसे निकाल दे। सुनिश्चित करें कि रोगी को कोई शारीरिक परेशानी न हो। रोगी से पूछे कि क्या वो किसी भी हार्ट कंडीशन के लिए दवा ले रहे हैं या नहीं। यदि हाँ तो सुनिश्चित करें कि मरीज को जल्द से जल्द दवा मिल जाए। यदि व्यक्ति बेहोश हो जाता है आपातकालीन सहायता बुलाए और CPR शुरू करे। CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन जीवन को बचाने वाला फर्स्ट एड मेथड है, जिसका प्रयोग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि रोगी के शरीर में स्टडी ब्लड फ्लो है, जो रोगी के जीवन को बचाने के लिए जरूरी है। जब रोगी सांस लेना बंद कर देता है, यदि उसके दिल ब्लड पंप करना बंद कर देता है तो दिमाग के लिए कार्य करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे परमानेंट ब्रेन डैमेज या मृत्यु भी हो सकती है। CPR एक प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड प्रक्रिया है। एयरवेज शरीर में ऑक्सीजन को आने देते हैं। यदि कोई व्यक्ति बेहोश है तो अधिक संभावना है कि उसका एयरवेज अवरुद्ध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दौरान जीभ वापस मुंह से आ सकती है और गले के अवरुद्ध कर सकती है। दैट मीन्स द टंग विल ब्लॉक द थ्रोट। इस समस्या को ठीक करने के लिए आप किसी को रिकवरी पोजीशन में रखकर CPR की तैयारी में एयरवे साफ होना चाहिए। फर्स्ट एड के दौरान कर्मचारियों को खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे अपने हाथों और अन्य स्किन सरफेस को अच्छे तरह से धो ले और स्टरलाइज कर ले। ग्लव्स, मास्क और अन्य प्रोटेक्टिव आईवेयर का प्रयोग करें। प्रोटेक्टिव सूट, गाउन और एप्रोन को पहने। दिस इज फॉर ऑल द पीपल हु आर प्रोफेशनली इनटू फर्स्ट एड। एक सफल फर्स्ट एड की कुंजी हमेशा मानव शरीर के बारे में कंपैशन और बुनियादी ज्ञान होना है। आपको बिना किसी झिझक के प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड के माध्यम से पेशेंट को सही देखभाल करना आना चाहिए। ध्यान रहे कि आप इन विधियों का सही तरीके से प्रयोग करके किसी की जान बचा सकते हैं। विद दिस इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट एड, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ इन लम्हे प्रोग्राम टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए हमारा अगला प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
0: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
1: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
0: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
0: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
1: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
0: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
1: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भूविज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
0: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
1: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओ, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
0: श्रोताओ, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
1: जी।
0: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
1: श्रोताओ, पहली बात, राष्ट्रध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
0: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोश, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
1: श्रोताओ, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
0: जी।
1: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
0: जी हाँ श्रोताओ, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली।
1: तो आइए श्रोताओ, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे
0: जी। और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे।
1: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो

0: नंबर यानी 8800-44-0559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
1: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए के छात्र थे तभी एक दिन
3: अरे दिलीप।
4: हाँ सुभाष।
3: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या? वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
4: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं मुझे उससे सख्त नफरत है।
3: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियां खाने का शौक है, है? मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
4: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
3: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
4: तो फिर?
3: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
4: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
3: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
4: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
5: Hey you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
3: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
5: Is that right? You black monkey?
4: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
5: वाह जी जी, बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
3: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
5: You bloody rascal! You are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
3: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
5: तो क्या करेगा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? You scoundrel! You bloody swine! बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
3: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
5: ठीक है, हम तुम को देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
3: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा।
2: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि ICS के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी

0: कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिले। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
1: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
2: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
1: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
2: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
1: और अपने सुभाष बाबू?
2: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
3: कितनी सजा हुई?
4: नालायक कहीं की सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
3: क्या हुआ सुभाष बाबू?
4: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूं कि कोई मुर्गी चोर?
0: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
4: कौन? शिशिर?
5: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए।
4: आओ अंदर आ जाओ, क्या खबर है?
5: सब तैयारी हो गई है, पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गौमो से ट्रेन में बैठेंगे, मैं स्वयं गाड़ी चला कर ले चलूंगा।
4: ठीक है चलो, लेकिन मेरे ये कपड़े?
5: उसका भी प्रबंध हो गया है, आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
4: ठीक है।
5: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी, किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी जियाउद्दीन नहीं है।
4: तो फिर ठीक है, आओ चले।
5: चलिए।

0: ठोककर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
1: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
2: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ है मौलवी साहब।
3: आदाब, ये सामान यहाँ रख दीजिए।
2: लाओ लाओ।
3: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
4: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
3: अच्छा, खुदा हाफिज।
4: खुदा हाफिज साहब। लो भाई, यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कल न जाने क्या हो।
5: ये अखबार कहां गया?
4: हाँ, ये रहा। कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
6: अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
0: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया।
7: जय हिंद,
8: जय हिंद,
7: जय

0: यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर

0: साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
1: हम तैयार हैं।
0: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
2: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
0: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
3: मुझे दीजिए एक कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
0: ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
4: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।
5: नहीं, कागज मुझे।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानो उठो, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। निगम किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में लगी संस्था को सीधे ऋण और अनुदान भी प्रदान कर सकता है। सहकारी राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी।

0: लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सरकार ने आज बताया कि राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कुल 4,620 प्रतिभागियों ने प्रथम चरण के 2 मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि 552 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के प्रथम चरण के सभी 4 मॉड्यूल पूरे किए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनने चाहते हैं और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों तथा सेवाओं को वैश्विक बाजार में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
2: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में योगदान देगी। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 107.2 MHz से आकाशवाणी है, तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ, बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में। बस 1-3 मिनट का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स ओटीटी ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक

0: करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीस, स्टेट लेवल पर 2,00,000 रुपीस और नेशनल लेवल पर 5,00,000 रुपीस। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
1: आओ हुण सुनदे आं शैलेंद्र सिंह की आवाज च तराना फिल्म का एक गाना।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤਰਾਨਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ FM 107.2 MHz ਤੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 6:10 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन किया। युवाओं से अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ने और शॉर्टकट अपनाने से बचने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत, युवाओं की विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में निर्णायक भूमिका होगी। श्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में प्रदेश भर में HIV/AIDS जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। और हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने उपायुक्तों को राज्य से तपेदिक के पूर्ण उन्मूलन के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
1: कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा, यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
2: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही है।
2: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवा केवल एक उम्र नहीं बल्कि ऊर्जा सामर्थ्य और संभावनाओं का अथाह सागर है। मुख्यमंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत है जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।
3: प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए युवा शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना है। एक समय था जब दुनिया भारत को विशाल आबादी का भारत की कमजोरी और एक बड़ी समस्या के रूप में देखती थी, लेकिन पिछले 12 वर्षों में वो तस्वीर बदली है। जिस आबादी को बहुत समझा जाता था वही आज भारत की युवा शक्ति बन करके दुनिया के सामने अवसर और सामर्थ्य की सबसे बड़ी मिसाल बनी है।
0: श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत का युवा तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
3: मुझे खुशी है कि आज भारत का युवा केवल जनसंख्या का ये आंकड़ा नहीं है, वह प्रतिभा, तकनीक, नवाचार, उद्यमिता, परिश्रम, संकल्प और सबसे बढ़कर के भारत के परिवर्तन की शक्ति है।
0: कौशल विकास पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास का उद्देश्य केवल प्रमाण पत्र देना नहीं बल्कि प्रत्येक प्रशिक्षित युवा के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को अपनी आकांक्षाएं पूरी करने के लिए अपने तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए प्रोत्साहित करते हुए नशों से दूर रहने के लिए भी प्रेरित किया।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला से प्रदेश में HIV एड्स जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान 12 अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने देश के 15 सुरक्षित जिलों की सूची में शामिल हरियाणा के कुरुक्षेत्र व कैथल जिलों को सम्मानित भी किया और कहा कि HIV के खिलाफ लड़ाई केवल विरोध से नहीं बल्कि सही जानकारी, जागरूकता, अपनापन और संवेदनशीलता के माध्यम से जीती जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि HIV छूत का रोग नहीं है, इसके साथ जीवन जी रहे व्यक्ति से दूरी बनाना अज्ञानता है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 10 अन्य लोगों तक HIV से बचाव और उपचार से जुड़ी सही जानकारी पहुंचाने का आह्वान किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज भिवानी में नेहरू पार्क में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से विधायक घनश्याम सराफ के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा और जिला प्रशासन द्वारा निकाली गई इस तिरंगा यात्रा के शुभारंभ से पहले शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा के समक्ष और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर अमर शहीदों को नमन किया गया। तिरंगा यात्रा के दौरान युवाओं ने नशों से दूर रहने की शपथ ली। इसके उपरांत घंटाघर पर महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित निकीराम शर्मा की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने आज उपायुक्तों को राज्य से तपैदिक के पूर्ण उन्मूलन के लिए ठोस एवं परिणामोमुखी कदम उठाने के निर्देश दिए। राज्यपाल टीबी मुक्त भारत अभियान एवं निक्षय मित्र पहल के तहत हरियाणा राज्य में किए जा रहे कार्यों एवं प्रगति की समीक्षा के लिए चंडीगढ़ स्थित लोक भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 13 जिलों के उपायुक्तों को संबोधित कर रहे थे। प्रोफेसर घोष ने टीबी के निवारण उपायों तथा समुदाय आधारित जांच को और अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अधिक जोखिम वाले गांवों पर विशेष ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि जांच एवं स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर और जरूरतमंद लोगों तक सीधे पहुंचें। राज्यपाल ने टीबी मुक्त भारत ऐप का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा टीबी के खिलाफ लड़ाई में देश के अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक बनकर उभरा है और राज्य ने नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत कई महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किए हैं। आज हरियाली अमावस्या के पर्व पर पांडुपिटारा तीर्थ के पवित्र सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और अपने पितरों की शांति व मोक्ष के लिए पिंडदान एवं तर्पण किया। सतसाहब डेरा महंत राघवानंद ने बताया कि सोमतीर्थ पांडुपिंडारा का संबंध पौराणिक काल से है। महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने यहां पितृ तर्पण किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन किया। युवाओं से अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ने और शॉर्टकट अपनाने से बचने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत, युवाओं की विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में निर्णायक भूमिका रहेगी। श्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला से प्रदेश भर में HIV एड्स जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया और हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने उपायुक्तों को राज्य से तपैदिक के पूर्ण उन्मूलन के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

नमस्कार, ए आकाशवाणी ए। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। सूचना दे प्रसारण राजमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किया है कि जाली खबरां दा मुकाबला करन लई प्रेस सूचना ब्यूरो दी तत जांच इकाई कायम कीती गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया नाल मुलाकात करके जगतार सिंह हवारा नूं मनुखी अधिकार ते 10 दिनां दी पेरोल देण लई उन्हां दे दखल की मांग की है। पंजाब के राज्यपाल ते चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ते पंजाब के सेहत ते परिवार भलाई मंत्री वल्लों वख-वख थावां ते पंजाब एड्स कंट्रोल सोसायटी की इंटेंसीफाइड IEC मुहिम के तीजे गेड़ की शुरुआत। पंजाब पुलिस

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला। सभी फौजी साथियों का और सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

आनंद मठ फिल्म से ये देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में ये देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे। बंकिम चंद्र की रचना थी, हेमंत कुमार की तर्ज थी।

0: चित्रगुप्त की तर्ज थी काली टोपी लाल रुमाल। फिल्म का दो गाना आपने सुना, मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। जयमाला कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
2: सुबह जलाओ शाम जलाओ
3: देव दर्शन धूप।
2: सुबह जलाओ शाम जलाओ
3: देव दर्शन धूप।
0: सर के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

0: एड्स HIV ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण

0: एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के युगल सुरों में राजकुमार फिल्म का ये गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला शंकर जयकिशन ने।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है।

0: मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के युगल सुरों में राजकुमार फिल्म का ये गीत आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला शंकर जयकिशन ने।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंधे।

आशा भोसले को आपने सुना, फिल्म थी ठाकुर जरनैल सिंह। असद भोपाली के बोलते गणेश की तर्ज थी कोहिनूर। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी के आवाजों में, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जंगली फिल्म का गीत आपने सुना। हसरत जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज थी। फौजी साथियों, यही थी आज के जयमाला कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं।
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
0: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
0: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: तिलो श्रोतियों, उन पेश ने कुछ पंजाबी गीत, प्रोग्राम दा पहला गीत पेश कर रहे हैं गुरदास मान दी आवाज़ विच।

0: ਇਸੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਫਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਵਾ ਮਹਿਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ।
1: दोस्तों आज के हवा महल में सुनिए प्रहसन आंधी, लेखक और निर्देशक भृंग तुपकिरी।
2: अरे सुनती हो, मैंने कहा तुम्हारे होने वाले जमाई साहब की चिट्ठी आई है।
3: मेरे होने वाले जमाई की चिट्ठी है तो क्या आपके जमाई की नहीं?
2: हाँ सो तो एक ही बात है, मगर ये उनके कर कमलों के जिन्हें तुमने पसंद किया था अपनी निमो के लिए।
3: अच्छा, मगर लिखा क्या है?
2: उन्होंने अपनी फरमाइशों की एक लंबी चौड़ी सूची लिख भेजी है। कहते हैं अब ये सब चीजें जब उनके चरणों पर चढ़ाई जाएंगी तब कहीं जमाई देवता प्रसन्न होकर निमो का विवाह रचाने के लिए पधारने की कृपा और कष्ट करेंगे।
3: तो उसमें क्या हुआ, ये तो अपने यहाँ का रिवाज ही है।
2: ये भी कोई मांगना है जैसे घर में भीख लग गई और सारी चीजें मांग कर ही पूरी कर लेनी हो?
3: लो तुम तो गाली देने लगे, ऐसा क्या लिख दिया ब्रज किशोर ने?
2: लो तुम भी सुन लो, लिखता है मुझे एक बढ़िया कार चाहिए।
3: हाँ तो बैरिस्ट्री करता है, कोई गोली तो खेलता नहीं, विलायत पास करके आया है, कार रहने पर ही तो जरा रोब पड़ता है।
2: जी हाँ, अब और सुनो, सिविल लाइंस में एक दुमंजिला बढ़िया और हवादार बंगला खरीद दो। ऑफिस और घर के लिए उनकी पसंद का फर्नीचर और एक 15 वॉल का रेडियो है? सेट।
3: क्या ये वॉल क्या होता है?
2: अरे रेडियो 15 वॉल का, यानी बहुत ताकतवर रेडियो चाहिए उनको।
3: है? तो क्या जमाई साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं?
2: उनमें अगर ये भी गुण हो तो भी ये उनकी विशेषता ही होगी।
3: अरे भाई आपका समाज में इतना सम्मान है तो क्या जमाई आपसे इतनी सी चीजों की मांग भी नहीं करे?
2: तो क्या मैंने उम्र

0: पसीना बहा बहा कर जो कमाई की है वो सब उनके लिए की है? नहीं बाबा नहीं, इतना महंगा जमाई खरीदना अपने बस की बात नहीं है।
1: हाय राम, तू क्या लड़की को ऐसे ही किसी के गले में बांध देने का इरादा है?
0: अबे तुमने उनके आखिरी फरमाइश तो सुनी ही नहीं। लिखते हैं कि उनकी पढ़ाई में उनके पिताजी ने कोई 50,000 रुपया खर्च किया है, सो उनको उनका यह 50,000 रुपया भी हमें लौटाना पड़ेगा।
1: हाय बाप रे, 50,000!
0: और मेरा तो ख्याल है कि जमाई साहब को सबसे पहले एक आईना और एक कच्चे चूने का डिब्बा भिजवा देना चाहिए।
1: क्यों?
0: चूना पोत कर आईने में अपना चेहरा देखने के लिए। जरा वो भी तो देखें कि इन सब चीजों के लायक उनका चौखटा है कि नहीं।
1: लीजिए, आप तो जमाई की भी दिल्लगी उड़ाने से।
0: अरे नहीं तो क्या, ऐसे जमाई के पैर पूजे जाएं? दहेज के मामले में तो बाप दादों के भी कान काट रहा है। लोग कहते हैं फैशन की आंधी चली है, नए विचारों का तूफान उठ रहा है। कुछ नहीं, बस केवल स्वार्थों की आंधी चल रही है और स्वार्थों का तूफान उठ रहा है।
1: ओहो, तो क्या मम्मी से कोई प्राइवेट बात कर रहे थे पापा?
0: नहीं बेटी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आओ बैठो।
1: मेरे अच्छे पापा, ला ला ला ला ला ला। देखो जी, तुम्हारी लाडली के यही लक्षण मुझे नहीं भाते।
0: वो तो मुझे मालूम है, निम्मो की कोई हरकत तुम्हें नहीं भाती और अपने लाडले साहब की हर एक हरकत तुम्हें खूब भाती है।
1: ये भी कोई बात है? माँ बाप से भी कोई गिट पिट करके बातचीत करता है?
2: अरे मम्मी, कोई क्यों, मैं ही तो करती हूँ, क्यों पापा?
1: आपका लाड इसको सर पर चढ़ा रहा है, मैं कह देती हूँ एक दिन सिर पर हाथ रखकर रोना पड़ेगा।
0: भाई तुम तो बेकार में ही बच्ची पर बिगड़ती हो, अभी तो उसके खाने खेलने के दिन है।
1: अरे राम रे, अभी खाने खेलने के ही दिन है, मैं कहती हूँ अपनी ऐसी लाडली को एरिस्टर बैरिस्टर से नहीं बांधोगे तो क्या किसी ढोर चराने वाले के पल्ले बांधोगे?
2: मम्मी, तुम जब भी देखो मुझे किसी न किसी के पल्ले बांधने की ही बात करती हो।
0: चुप हो जाओ बेटे, चुप हो जाओ। तुम्हारी मम्मी तो चली भी गई, अब चुप हो जाओ ना।
2: चली गई? चलो अच्छा हुआ। हाँ पापा, मैं आपको एक बात याद दिलाने आई थी।
0: वो तुम्हारे नेकलेस के बारे में ना, वो शाम तक आ जाएगा।
2: हाँ शाम तक पापा, वो तो बहुत देर हो जाएगी। पापा देखो ना, मुझे तो 4 बजे ही लेडीज क्लब में लेक्चर देने जाना है।
0: लेक्चर देने? तो आज के दिन वही पुराना नेकलेस पहन के चली जाना बेटी।
2: वाह पापा, सब सहेलियां बार बार एक ही नेकलेस देखेंगी तो मुझे चिढ़ाएंगी नहीं क्या? इतने बड़े राय साहब की बेटी के पास भी एक ही नेकलेस हो और मैं भाषण पर क्या खाक दे सकूंगी?
0: अच्छा बेटी, लेकिन किस विषय पर भाषण है?
2: भाषण वो तो पापा स्त्रियों की कम खर्ची और देशोन्नति इस विषय पर है।
0: वाह बेटी, तब तो खूब कम खर्ची कर रही हो। अच्छा अभी मंगवा देता हूँ।
2: और हाँ दीदी, आपको तो आज कहीं जाना नहीं है ना?
0: नहीं तो
2: आज कार मैं ले जाऊंगी। अच्छा बाय बाय पापा। ला ला ला ला ला ला ला।
0: बदतमीज नालायक, जरा कुछ हुआ नहीं टूट पड़ते हैं। देखो ना, देखो कैसी शरारत की है मर्दूदों ने।
1: क्या किया?
0: अरे निम्मो के लापता होने की बात को किस बुरी तरह तोड़ मरोड़ कर छाप दिया इन बेईमानों ने।
1: हाय राम, क्या लिखा है?
0: लिखते हैं, पता चला है कि स्थानीय सुप्रसिद्ध सेठ राय साहब बिहारी लाल की युवती कन्या कल से अपने ड्राइवर के साथ लापता है। अरे इन्होंने जरा सी बात पर मेरी नाक काट कर रख दी कम वक्तों ने, मगर इतने जल्दी पता कैसे चला? जरूर किसी की शरारत है इस बात के पीछे।
1: तो झूठ क्या लिखा है और चढ़ाओ सिर पर। कितनी बार कहती थी कि लड़की को इस तरह सिर पर न चढ़ाओ, पीछे पछताना पड़ेगा, पर कोई मेरी माँ ने तब ना।
0: मगर ये भी तो हो सकता है कि अपनी किसी सहेली के यहाँ रुक गई हो।
1: सब जगह तो आदमी भिजवा कर पता लगवा लिया, सारे शहर की खाक छनवा डाली, अब और कौन सी सहेली बाकी है?
3: I'm very sorry, राय साहब, मुझ पर तो जैसे बिजली ही गिर पड़ी।
0: ओ बैरिस्टर ब्रजकिशोर, अच्छा हुआ कि बिजली गिरकर भी आप बच गए।
3: ओ रियली, आई एम वेरी सॉरी मदर।
1: अरे नहीं नहीं बेटा, तुम इन अखबार वालों की बात पर न जाना, हमारी लड़की ऐसी नहीं है, वह किसी अपनी सहेली क्या रह गई होगी।
3: नहीं फिर भी मुझे माफ कीजिएगा, अब आपको मैं तकलीफ नहीं देना चाहता। रियली मदर, अब अगर मुझे आप एक की बजाय 2 बंगले भी देंगी तब भी मैं ऐसी बदनामी को अपने गले नहीं बांध सकता।
1: अरे बेटा, अखबार वाले तो बिल्कुल झूठे हैं बेटा। लो, अरे तुम तो खड़े खड़े ही बात कर रहे हो, बैठ जाना बेटा, जरा तो बैठो।

0: बैठो।
1: जी नहीं, मुझे बिल्कुल समय नहीं। मैं जो कहना चाहता था कह चुका। आपकी लड़की से संबंध करने के बारे में जितनी बातचीत मैंने की, उसी के कारण अब जो मेरी दोस्तों में बदनामी हो रही है, वही कुछ कम नहीं है। मेरी ओर से ये रिश्ता नामंजूर समझिए।
0: अरे आप भी चुप खड़े हैं, इन्हें कुछ समझाओ ना।
1: बस बस, मैं कह चुका, मैं अपनी इज्जत हल्की नहीं कर सकता।
2: अच्छा बच्चों, तो तुम्हें इज्जत इतनी प्यारी है? अभी ठिकाने न ला दूं अक्ल को तो कहना। बैरिस्टर साहब, अरे भाई बैरिस्टर साहब, आप तो नाक ही नाराज होकर जा रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए।
1: कहिए।
2: अरे यहाँ आओ, तरी बैठो यहाँ आराम से। बस ठीक ठीक बस। अब सुनो, हमारी निम्मो का बस घंटे दो घंटे में पता चल जाएगा।
1: मगर मुझे इससे क्या, सुबह से मेरे मित्रों के फोन पर फोन आ रहे हैं, मैं तो परेशान हो गया। बात चाहे कुछ भी हो, बदनामी तो साथ ही मेरी ही हो गई।
2: देखिए देखिए, मैंने फैसला किया है कि आप जानिए, निम्मो मेरी प्यारी बेटी है, मैं उसे अपने बेटे से भी ज्यादा चाहता हूँ। मैंने तय किया है कि अपनी आधी जायदाद और आपने जितनी फरमाइशें की हैं ना, वो अलग, इतना कुल मिलाकर अपनी बेटी को दहेज में दे दूं। और मुझे उम्मीद है कि आप इस ओर सहानुभूति पूर्वक ध्यान देंगे।
1: मगर देखिए ना, मेरी कितनी खिल्ली उड़ाई जाएगी।
2: जिंदगी में कई तरह के अनुभव होते हैं बेटा, बुढ़ापे में हमारे ही मुंह पर स्याही पुत गई तो क्या करें, आखिर डूब मरने से तो रहे।
1: सो तो ठीक है पिताजी, मगर।
2: अब मगर वगैरह कुछ नहीं, बस तुम भी इस प्रकार हमसे मुंह मोड़ लोगे तो हमारी इज्जत तो बिल्कुल धूल में मिल जाएगी। अभी अगर हमारी निमो के हाथ तुम अपने हाथ में ले लोगे बेटा, तो देखना हमें बदनाम करने वालों में कैसा तमाचा पड़ता है।
1: तो एक बात पूछूं?
2: एक नहीं चार पूछो बेटा।
1: मैं जानना चाहता था कि।
2: हाँ बेखटके पूछो, क्या जानना चाहते थे?
1: जी वैसे कुछ नहीं, यो ही एक जरा सी बात, यानी मेरा मतलब था कि आपकी जायदाद
2: कुल कितनी है। आखिर बैरिस्टर हो ना, सब जांच पड़ताल कर लेना चाहते हो कि ये सौदा महंगा पड़ेगा या सस्ता। हाँ तो सुनो बेटा, मेरी कुल जायदाद यह कोई 8-10 लाख के बीच होगी, खाने वाले कुल मिलाकर एक लड़की और एक लड़का है।
1: अब देखिए, आपने मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया। एक और तो मेरी बदनामी है और दूसरी ओर आपकी इज्जत का भी ख्याल है।
0: मंजूर कर लो बेटा, हमारी इज्जत का ख्याल करो।
1: अच्छा तो खैर, मैं अपनी इज्जत को आपकी इज्जत पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं।
2: वाह वाह, क्या कहने। मगर बेटा, अभी जो बदनामी की हवा उड़ गई उसका क्या करोगे?
1: उसका क्या है, मैं आज ही अखबारों को स्टेटमेंट दे देता हूँ कि निर्मला मेरी भावी पत्नी है और वो मेरे ही साथ सैर को गई हुई थी, बस सारी बात खत्म हो जाएगी।
2: वाह बेटा, क्या हिकमत सोची है तुमने। मिस्टर बैरिस्टर, बस 2-3 मिनट में चंद रुपयों ने तुम्हारे ख्याल इतने बदल डाले, देखते ही देखते रुपयों की आंधी में तुम्हारी इज्जत और बदनामी की बात फुर्र हो गई। मेहरबानी करके फौरन उठकर यहाँ से चल दो।
1: जी, ये आप कैसी बात करने लगे?
0: आप कैसे आदमी हैं जी?
2: कुछ नहीं, मैंने कह दिया बस यहाँ से चल दो।
1: अच्छा, बहुत अच्छा, मैं भी देख लूंगा, मेरी बेइज्जती करने का फल।
2: हाँ हाँ, तुझसे जो बने कर लेना, पहले यहाँ से तुम हुकारा कर।
0: हाय राम, तुम्हें ये क्या हो गया है?
1: बहुत अच्छा, गुड मॉर्निंग।
3: ओ पापा, मम्मी,
0: ओ हम लोग बड़ी आफत में फंस गए थे पापा।
2: बेटी निम्मो, तुम क्या हो गया था बेटी?
0: कुछ भी नहीं पापा, मुझे माफ कर दो मम्मी, अब कहीं अपनी मर्जी से घूमने नहीं जाऊंगी।
4: पहले ये तो बता कि हो क्या गया था।
0: मम्मी, हुआ कुछ भी नहीं, बस क्लब में लेक्चर दिया और शाम को 6 बजे के करीब मैं अपनी एक नई सहेली की फरमाइश पर उसे अपनी कार में घुमाने के लिए पहाड़ पर चली गई। बड़ी दूर निकल गए हम लोग और ड्राइवर बार बार लौटने के लिए कहता था, मगर हमें इतना मजा आ रहा था कि हम लोग बस आगे ही बढ़ते गए। बस फिर 8 बजे के करीब इतनी जोर की आंधी आई कि हम लोग घबरा गए, फिर जोर का पानी बरसने लगा। अरे वो तो अपना ड्राइवर ही इतना होशियार था पापा, उसने कार को खाई में गिरने से बचा लिया। हम लोग लौटने को हुए तो देखते क्या है कि रास्ते पर एक बड़ा भारी पेड़ गिरा पड़ा है। बस हमारी गाड़ी अटक गई, बरसात और तूफान के कारण हम कहीं मदद मांगने भी तो नहीं जा सके। सवेरे कुछ गांव वालों की सहायता से वे पेड़ हटाया गया, तब कहीं हम लौट सके। सच पापा, हमें रात भर गाड़ी में बैठे बैठे सांस रोके पड़े रहना पड़ा था।

0: पर बड़ा होशियार है पापा, इस बार उसकी तनख्वाह जरूर बढ़ा दीजिएगा। इसने हम लोगों की जान बाल बाल बचा ली, नहीं तो अरे बाप रे कितनी बड़ी खाई थी।
1: मगर वो तुम्हारी नई सहेली कौन थी?
0: वो पिताजी अपने वो बैरिस्टर ब्रज किशोर है ना, उनकी कोई रिश्तेदार थी।
1: बस बस बेटी सब समझ गया, अब भी कुछ समझे या नहीं?
0: मगर मैं तो नहीं समझी
1: दादी। तुम्हारे समझने की जरूरत भी नहीं बेटी, दरअसल वो आधी पानी नहीं था जिसने तुम्हें रोका, वो कोई और था। अरे वारे बैरिस्टर ब्रज किशोर।
2: तो ये था प्रहसन आंधी, इसे लिखा और निर्देशित किया भृंग तुपकिरी ने। विविध भारती की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक आवाज जिसमें है जोश।

0: आ रहे हैं महबूबा महबूबा महबूबा विविध भारती पर सुंदरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

सोनू निगम और सुनिधि चौहान को आप सुन रहे थे। फिल्म थी फना, प्रसून जोशी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था। आप सुन रहे हैं

ए आर रहमान की तर्ज थी गुलजार की रचना आपने सुनी, श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की आवाजों में फिल्म थी गुरु। आप सुन रहे हैं चित्रलोक। फिल्म चांदनी। आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, शिव हरी का संगीत है।

0: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
3: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
2: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम

0: बदल कर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
2: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
3: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
0: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से है, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
4: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव

0: ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
1: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहाँ पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को पुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। JPSC और JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान

0: सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए, वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

गुमनाम फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी शारदा की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म थी पाकीज़ा। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। फिल्म माय लव, मुकेश की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, दान सिंह का संगीत।

0: कच्चे धागे इस फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
3: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
2: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
3: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
2: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

नौशाद की तर्ज शकील बदायूनी का लिखा गीत था, आशा भोसले की आवाज में। फिल्म थी दिल दिया दर्द लिया।

रवि की तर्ज थी शकील बदायूनी का लिखा गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म थी चौदहवीं का चांद, गेटवे ऑफ इंडिया। इस फिल्म का गीत है लता मंगेशकर मोहम्मद रफी का गाया।

राजेंद्र कृष्ण की का लिखा यह नगमा था, मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाए, फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया के इस गीत के साथ ही श्रोताओं कार्यक्रम आपके लिए अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग। आज की फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
2: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जा

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

चार बरस की थी श्रीदेवी जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार थुनैवन नामक फिल्म में काम किया था और इसके बाद बतौर बाल कलाकार उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। वो बेबी श्रीदेवी के नाम से जानी गईं और केरला स्टेट का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला और आगे चलकर कई तरह के अवार्ड्स श्रीदेवी को मिले। फिर फिल्म जूली आई जिसमें श्रीदेवी ने अभिनेत्री लक्ष्मी की छोटी बहन का किरदार निभाया था। सन 1976 बतौर हीरोइन श्रीदेवी ने फिल्म संसार में कदम रखा तमिल फिल्म मुंडुरु मोडीचू के जरिए। निर्देशक थे महान निर्देशक के बालचंदर। दक्षिण भारत में श्रीदेवी का एक बड़ा ही जबरदस्त और कामयाब करियर रहा है, लेकिन यहां हम उस करियर की बातें नहीं कर रहे, हमें तो भाई हिंदी फिल्मों की बातें करनी है। तो आइए सन 1979 पर आते हैं जहां श्रीदेवी ने बतौर हीरोइन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखा। फिल्म थी सोलवा सावन।

0: इसकी 4 साल बाद श्रीदेवी ने जैसे मुंबईया फिल्म जगत में तहलका ही मचा दिया। ये फिल्म थी हिम्मत वाला। श्रीदेवी के हीरो थे जितेंद्र।
1: मैं

0: हिम्मत वाला ने जबरदस्त धमाका किया। इस फिल्म के गाने बहुत चले, ये फिल्म भी बहुत चली और इसके बाद श्रीदेवी भी हिंदी सिनेमा में खूब खूब चली। आइए उस दौर की कुछ और फिल्मों की बातें की जाएं। फिल्म तोहफा।
1: बंकर,

0: फट जाए।
1: ए पंकज।
2: इसके बाद जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी ने उस दौर की कुछ नामी फिल्मों में काम किया। एक छोटी सी झलक इन गानों की, फिल्म मवाली।

0: लव
1: मम्मा मिया
0: पम पम
1: मम्मा मिया
0: पम पम।
2: सन 1986 में श्रीदेवी ने फिल्म नगीना में काम किया। ये अपने दौर की एक बहुत ही कामयाब फिल्म बन गई।

मिस्टर इंडिया एक कल्ट फिल्म बन गई और इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने ये गाना भी गाया था पर्दे पर, जिसे असल में गाया कविता कृष्णमूर्ति ने।

जब मिस्टर इंडिया की बात हो तो एक गाने की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सरोज खान की कोरियोग्राफी वाला गाना फिल्म मिस्टर इंडिया।

0: सन 1989 में ही श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म में काम किया। इस फिल्म पर यश चोपड़ा बरसों बरस से काम कर रहे थे और आखिरकार कई हीरोइनों के नाम की संभावनाओं की खबरों के बीच ये तय हो गया कि श्रीदेवी ही हैं यश चोपड़ा की
1: चांदनी। ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
0: जब फिल्म चांदनी की बात हो तो भला इस गाने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है।

सन 1992 श्रीदेवी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण साल बन गया। इस साल श्रीदेवी अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। फिल्म थी खुदा।

साल 1993, श्रीदेवी की एक ऐसी फिल्म आई जिसे बहुत लोग आज याद नहीं करते। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही थी, रूप की रानी चोरों का राजा। इसके बाद श्रीदेवी संजय दत्त के साथ धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म गुमराह में नजर आईं। निर्देशक थे महेश भट्ट। सन 1994 में श्रीदेवी अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला में दिखी। सन 1997 फिल्म आई जुदाई। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर थे।

0: इसके बाद श्रीदेवी ने जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी रचा ली और वो फिल्म संसार से लंबे समय तक दूर हो गईं। लंबे समय तक फिल्म संसार से दूर रहने के बाद श्रीदेवी ने रुपहले पर्दे पर वापसी करने का मन बनाया। साल 2011 में आई गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश।
1: सॉरी, माय वाइफ्स इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, सो
2: मेरा केविन, दिस मैरिज

श्रीदेवी की आखिरी फिल्म बन गई फिल्म मॉम, और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। लेकिन जब तक ये घोषणा आई, श्रीदेवी इस फानी दुनिया से अलविदा कह चुकी थी।

24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का निधन हो गया। जब राष्ट्रीय पुरस्कार बांटे गए तो अपनी मां की ओर से श्रीदेवी की बेटियों ने और उनके पति बोनी कपूर ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया।

जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी अपने चाहने वालों की याद में हमेशा रहेंगी और बनी रहेंगी वैसी ही शोह, चंचल और खूबसूरत अदाकारा।

0: अभिनेत्री श्रीदेवी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छायागीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सामिन, कहते हैं प्रेम एक ऐसी आग है जो अदृश्य रूप से जलती है, एक घाव जो दर्द करता है पर महसूस नहीं होता। यूं तो प्रेम करने का दावा हम सभी करते हैं, लेकिन अपने देश की माटी से, अपनी मातृभूमि से जिसने प्रेम किया, उन्हें आज हर कोई सैल्यूट कर रहा है। गीतकार की कलम में इतनी ताकत होती है कि उनकी कलम से निकले गीतों से वतन परस्ती का सोया हुआ जज्बा जाग उठता है। आजादी के परवानों की जिंदगी में मकसद को बयां करता ये गीत आज भी सर चढ़कर बोलता है। गीतकार रामप्रसाद और प्रेम धवन ने इसे कलमबद्ध किया। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला।

नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, बच्चे की सरल और देश के प्रति अटूट प्रेम को दिखाता ये गीत हम सभी ने सुना है। मेरा जूता है जापानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, देश की संस्कृति और पहचान को दर्शाता ये प्यारा सा गीत। जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं, देश के गौरव और संस्कृति की महानता को दर्शाता ये गीत। ये आह्वान करते हैं सभी गीत कि हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, इसकी माटी को नमन करते हैं। गीतकार शैलेंद्र की कलम से निकली रचनाओं ने देश प्रेम को दर्शाया और कहा, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो उतार ला जमीन पर।

इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। सचमुच शकील बदायूनी का लिखा ये गीत केवल एक गीत नहीं था बल्कि एक आंदोलन था। आंदोलन, उनकी कलम में हर वो रंग शामिल था जिसकी समाज को दरकार है। इन गीतों को सुनकर ही देश के जाबाज सैनिकों के खून में एक उबाल सा आ जाता था। शकील साहब द्वारा रचित ये गीत नए आशावाद को प्रस्तुत करने वाला जैसे देशभक्ति गीत ही बन गया था।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अपनी मिट्टी और अपने देश के प्रति अथाह मोहब्बत ही हमें देशभक्त बनाती है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती जैसे कालजयी गीत रचने वाले गीतकार गुलशन बावरा कितने गहरे देशभक्त होंगे, ये गीत सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है। माँ धरती के गौरवगान से जुड़े गीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। गीतकार इंदिवर की कलम से निकला ये गीत भारत की संस्कृति और मूल्यों पर आधारित है। प्रेम सत्य और एकता की बात करता गीत, भारतीयों का अपनी जड़ों पर गर्व करता ये गीत, अपनी मातृभूमि से प्रेम करने का आग्रह करता गीत। इंदिवर साहब के गीतों की तासीर आज भी मोहब्बत बिखेरे हुए है, लेकिन जब उन गीतों से मिट्टी की खुशबू आने लगी तो जिंदगी और मौत का फर्क वो यूं समझा गए हमें। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जब

गीतकार साहिर लुधियानवी ने भी मातृभूमि को माँ की तरह प्यार किया। उनकी कलम ने भी देशभक्ति की भावना के बीज बोए। घनघोर अंधेरे के बीच भविष्य की चमकीली किरणें बिखेरते रहे उनके कालजयी गीत। साहिर ने दुनिया को बहुत कुछ कह दिया। वे लिखते हैं, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। कहते हैं, सच्चा देशभक्त अंजाम की परवाह किए बिना सच बोलता है। वही साहिर गीतकार ने कहा, इश्क आजाद है हिंदू न मुसलमान है इश्क, इश्क आजाद है हिंदू न मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क।

देश प्रेम और माटी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा कोई इन रणबांकुरों से सीखे। अपनी मोहब्बत का इजहार एक शहीद ये कहकर करता है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। जंग के मोर्चे पर तैनात एक फौजी के जज्बातों को गीतकार कैफी आजमी ने बहुत खूबसूरती से कागज पे उकेरा। अगर ये गीतकार ये शायर केवल इश्कबाजी पर ही अटके रह जाते तो शायद उनकी कलम ये विद्रोह कभी ना कर पाती, ये गीत कभी ना उकेर पाती।

0: और अब छाया गीत कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत, नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: FM 107.2 MHz ते आकाशवाणी ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। पेश ने मुख प्रादेशिक खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दी आत्मकथा रिलीज कीती। प्रधानमंत्री मोदी ने नौजवानों नु अपने अजीजां दियां जीवनियां पढ़न अते शॉर्टकट अपनान तो बचन दी अपील कीती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार विद्यार्थी मुद्दियां समेत किसी भी विषय ते चर्चा करन लई तैयार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नौजवान न सिर्फ देश का भविख ने सगो वर्तमान की सब तो वड्डी ताकत भी ने। नौजवान विकसित भारत के दृष्टिकोण नु साकार करन विच फैसलाकुन भूमिका निभाउणगे। श्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला तो राजपत्री HIV एड्स जागरूकता मुहिम की शुरुआत की। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने डिप्टी कमिश्नर नु राज विचों तपदिक नु पूरी तरह खत्म करन लई ठोस अते नतीजे देने वाले कदम चुकन दे निर्देश दिते। हरियाणा सरकार ने मुख खसरे की पछाण अते निशानदेही लई एक सधारण अते सुरक्षित डिजिटल प्रणाली नू मंजूरी दे दिती है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव यादव ने कहा कि एक हर्ब एक म्यारी पहल का उद्देश रवायती दवाइयां की गुणवत्ता अते भरोसेयोगता नू मजबूत करना है अते हरियाणा सरकार राज दे नागरिकां नू प्रशासकीय सुधारां की प्रक्रिया नाल सीधे तौर ते जोड़न लई अक्तूबर तो दिसंबर तक सुधार उत्सव का आयोजन करेगी। मुख प्रादेशिक खबरां खत्म हुई। यह आकाशवाणी है तो तुसी सुन रहे हो विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz से। थोड़ी ही देर तुसी सुनोगे पंजाबी गीतों का प्रोग्राम सुरसांझ।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
1: सारे सुनन वालों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम विच। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मलकीत सिंह दे इस गाए गीत तों।

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
0: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: सुरसांझ प्रोग्राम दा अगला गाना सुनवा रहे हैं दलेर मेहंदी दी आवाज़ विच।

0: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास
1: HP TDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
0: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
1: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
0: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
1: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
0: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।
2: आओ सुनने अगला गाना, आवाज है सरदूल सिकंदर दी।

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
0: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: तो हुन लेके आए अगला गाना मास्टर सलीम दी आवाज़ विच।

0: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰਸਾਂਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਦੋਸਤ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27

0: से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख पहलुओं और देश भर के विद्यार्थियों के हित में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz ते आकाशवाणी ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। इस वेले रात के 11:05 होए ने। हुण साडे केंद्र तो अज दा प्रसारण समाप्त हुंदा है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडी सेवा च फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई सानूं इजाजत दिओ। जय हिंद।